103.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 8 जून 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:59 और 8 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है।

आकाशवाणी के स्थानीय प्रसारण सेवा का ये बैतूल केंद्र है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम भक्ति धारा। कार्यक्रम में आज सुन रहे हैं लता मंगेशकर, MS सुबुलक्ष्मी, कुमार गंधर्व और किशोरी अंगुनकर की गाई हुई कुछ भक्ति रचनाएं। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं लता मंगेशकर की गाई इस भक्ति रचना के साथ।

कार्यक्रम भक्ति धारा आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से। आइए अब कार्यक्रम में सुने किशोरी अमोनकर की गाई ये भक्ति रचना।

कार्यक्रम भक्ति धारा आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए कार्यक्रम में अब सुने कुमार गंधर्व की गाई ये भक्ति रचना।

0: कार्यक्रम भक्ति धारा जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
2: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
1: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
3: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूंगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुंचते पहुंचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
2: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
4: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 9 तारीख को नजदीक

0: सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: आइए कार्यक्रम भक्ति धारा में अब सुने एम एस सुबुलक्ष्मी की गायी ये भक्ति रचनाएं।

0: लता मंगेशकर जी के गायी इस भक्ति रचना के साथ ही कार्यक्रम भक्ति धारा अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुने कार्यक्रम चिंतन।
1: हमारे यहां एक कहावत है कि व्यक्ति का धन गया तो कुछ नहीं गया, क्योंकि धन तो हाथ का मैल है, वो फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन अगर चरित्र का हनन हुआ तो समझो सब कुछ लुट गया, क्योंकि चरित्र वो अनमोल कमाई है जिसे एक बार अगर खो दिया तो दोबारा कमाना नामुमकिन है। व्यक्ति का चरित्र उसके व्यक्तित्व का आईना होता है। श्रेष्ठ व्यक्ति के आचरण का हर कोई अनुसरण करता है, जो उसे साधारण से असाधारण व्यक्ति की श्रेणी में लाकर खड़ा करता है। पवित्र धार्मिक ग्रंथ गीता में कहा गया कि चरित्रवान और श्रेष्ठ व्यक्ति के कृतित्व, व्यक्तित्व और आचरण का संसार के आम मनुष्य अनुसरण करते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य बनने के लिए न तो किसी तप की आवश्यकता है और न ही किसी साधना की, बल्कि अपने आचरण में कोमलता, शिष्टता और वाणी में मधुरता की आवश्यकता है। प्राचीन काल में हमारे आदर्श महान संत, ऋषि मुनि, समाज सुधारक और महापुरुष जो थे, उनका सच्चरित्र ऐसा था कि उनके द्वारा कही गई हर बात व्यक्ति को शिरोधारी होती थी। समाज उत्थान को जीवन का लक्ष्य मानकर चलने वाले महापुरुषों का चरित्र एक मिसाल है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे तो साधारण इंसान, किंतु उनका चरित्र बल असाधारण था। उनके अहिंसावादी सिद्धांतों में न केवल देशवासियों को प्रभावित किया, बल्कि पूरे विश्व ने उनके आदर्शों को स्वीकार किया। ब्रिटिश सरकार तो उनके आदर्श चरित्र के आगे

0: ऐसी नतमस्तक हुई कि उसे हमारे देश को आजाद करना पड़ा। गांधी जी जनहित के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे और ये उनके चरित्र बल का ही प्रभाव था कि देश ने एकजुट होकर अंग्रेजों को यहां से जाने का विवश किया। सदाचरण का अनुकरण समाज में व्याप्त कुरीतियों और रूढ़िवादिता में परिवर्तन लाने में सक्षम होता है। वर्तमान में हमारी पीढ़ी जिस पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के अंधानुकरण में भटक रही है, ऐसे हालात में उसे ऐसे महापुरुषों के आदर्श और चरित्र को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है जिससे उसे सही दिशा मिल सके। हमारे यहाँ पूर्व से सूर्य उगता है जिसे सभी नमन करते हैं और सूर्यास्त पश्चिम में होता है। कहने का तात्पर्य कि पूर्व और पश्चिम का मौलिक भेद तो रहेगा ही, सभ्यता संस्कृति में भी यही अंतर है। विकास के मामले में भी भले ही पश्चिम का अनुकरण देश हित और जनहित में उचित है, किंतु उसकी स्वच्छंद संस्कृति को अपनाकर हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हम अपनी जड़ों को आप ही खोदकर अपनी सभ्यता का अस्तित्व मिटाने पर तुले हुए हैं। जब हमारी जड़ें ही न बचेंगी तब हमारा अस्तित्व, हमारी पहचान मिटते देर नहीं लगेगी, क्योंकि व्यक्ति का चरित्र ही उसकी पहचान होता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम श्रेष्ठ व्यक्तियों और महापुरुषों के आदर्शों को आत्मसात करके उन्हीं के अनुरूप अपने चरित्र को ढाल कर आचरण करें, जिससे समाज में अपने आप स्वस्थ वातावरण निर्मित होगा और चारों ओर शांति और सुख समृद्धि का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। व्यक्ति का चरित्र बल सफलता की असल कुंजी है।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम चिंतन। साथियों, कार्यक्रम में अब सुनिए, आइए ये संदेश।
2: सुनिए कार्यक्रम महिला जगत सोमवार से शनिवार सुबह 10:30 पर, जिसमें होगी मुलाकातें नित नए मेहमानों से सोम, बुध, गुरु और शनिवार को। साथ ही किचन टिप्स, पाक विधियाँ, प्रेरक व्यक्तित्व और जीवन शैली। मंगलवार और शुक्रवार को सखियों की पसंद, जिसमें आपको सुनवाएंगे आप ही की पसंद के चंद गीत।
3: बंसी बनू उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में।
2: सुनिएगा जरूर आपका अपना कार्यक्रम महिला जगत FM 103.1 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर।
1: स्थानीय प्रसारण केंद्र का ये आकाशवाणी बैतूल है। पेश है श्री रामचरित मानस गान कार्यक्रम में। आज स्वर है ए हरिहरन और रविन्द्र साठे का।

मंदोदरी के अनुनय विनय का रावण पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसने पटरानी की नीति युक्त प्रार्थना को मात्र नारी मन का भय बताया। राज्यसभा में जब उसने मंत्रियों से मंत्रणा चाही तो सभी ने श्रीराम की सेना के लंका में उतर आने को एक ऐसी नगण्य घटना बताया जिस पर गंभीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता ही नहीं। ठाकुर सुहाती करने वालों का कहना था, जिसने देवताओं और राक्षसों पर विजय प्राप्त कर ली हो उसके लिए वानर सेना किस गिनती में है। मंत्री, वैद्य तथा गुरु, जब ये तीन भयवश अथवा लाभ की आशा में स्वामी की हां में हां मिलाएं तो सत्ता, शरीर और धर्म का नाश अवश्यंभावी होता है।

रावण के साथ भी यही हुआ। इस अवसर पर सभा में उपस्थित होकर विभीषण ने हर प्रकार से रावण को समझाने का प्रयास किया। बार बार कहा कि क्रोध, मद और लोभ ये सभी विनाश के रास्ते हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। कार्यक्रम में आज आपने सुना ए हरिहरन और रविंद्र साठे और साथियों को। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंजनी। कार्यक्रम में आज लोक गायक है पन्नालाल गुजेले और साथी।

0: که بعد.
1: रमा 9 तारीख को जा रही हूँ ना अपनी जांच के लिए।
0: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
1: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
0: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंजनी, और इस गीत के साथ ही कार्यक्रम लोक रंजनी अब यही संपन्न होता है। कार्यक्रम में आज आपने सुना पन्नालाल गुजेले और साथियों को। कार्यक्रम में चलते चलते सुनते हैं ये संदेश, उसके बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
2: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
1: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
3: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
2: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
4: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल।

0: भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY को लागू करने वाला 36वां राज्य बनने जा रहा है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में ABPMJAY योजना लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेगी। इस समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन के जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य उपस्थित होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी के अनुसार पुनर्परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित होगी। NTA ने कहा कि परीक्षा शहरों की जानकारी प्रवेश पत्र नहीं है, इसे केवल अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा केंद्र वाले शहर की जानकारी देने के लिए जारी किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉक्टर एम नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने घोषणा की कि कर्नाटक विधानसभा परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटिल्य उम्मीदवार होंगे। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा, हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर शामिल हैं। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ ये संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल चुका है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव पर बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गोरेस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: MHz पर आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। आइए जानें आज की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनेंगे क्लासिक फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों की झरोकी से। सुबह सवेरे जनोपयोगी सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम को आप सुनेगा 7:50 पर। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनेगा 8:30 पर। सुबह 9 से 10 बजे तक सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के रिले प्रोग्राम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

जिले की चिट्ठी इस कार्यक्रम को सुनेगा सुबह 10 बजे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। पत्र व्हाट्सएप मैसेज पर प्राप्त हुए श्रोताओं की पसंद के गीतों पर आधारित कार्यक्रम अनुरोध गीत आज आप सुनेंगे सुबह 10:05 पर हमारे स्थानीय प्रसारण केंद्र से। महिला श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत सुनिएगा 10:30 पर, जिसमें आज की बात का विषय होगा जल संपदा और समुद्र संरक्षण का महत्व, वर्ल्ड ओशियन डे। मुलाकात में सुनिएगा जल संरक्षण, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों की जिम्मेदारी इस विषय पर भेंटवार्ता, साथ ही होगी हेल्थ टिप्स और कुछ फिल्मी गीत। सुबह 11 बजे से शाम 5:30 तक सुनिएगा आकाशवाणी मुंबई के रिले प्रोग्राम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

कार्यक्रम युववाणी आप सुनेंगे शाम 5:30 पर हमारे स्थानीय प्रसारण केंद्र से, जिसमें आज की बात होगी समूह समुद्र और मानव जीवन का क्या है रिश्ता। मनी मंत्र में जानेंगे आय और खर्च का रखे संतुलन, होगी मुलाकात, साथ ही सुनेंगे कुछ दिलकश नगमे। शर्मा बंधु के स्वर में सुनिएगा कार्यक्रम गोधूली शाम 6:05 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनेंगे शाम 6:30 पर हमारे स्थानीय प्रसारण केंद्र से।

कार्यक्रम सबरस सुनेंगे शाम 6:50 पर। कार्यक्रम ग्राम सभा सुनेंगे 7:20 पर, जिसमें होगी विश्व महासागर दिवस पर सामायिक कृषि चर्चा। में जानेंगे धान की सुगंधित प्रजातियों की नर्सरी कैसे तैयार करें। होगी भेंटवार्ता श्रृंखला बातें खेती किसानी की। इसके अलावा जानेंगे बाजार भाव और मौसम के हाल। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, इसे आप सुनेंगे रात्रि 8:00 हमारे स्थानीय प्रसारण केंद्र से ही। कार्यक्रम हमारा बैतूल सुनेगा रात्रि 8:30 पर। कार्यक्रम में सुनेंगे विश्व खाद्य दिवस पर जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री संदीप पाटिल से सुमन जी की चर्चा। रात्रि 9:00 से 10:00 तक सुनेगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। आपके मीत ये गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10:00 आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से। रात्रि 10:25 पर सुनेगा सरकार की 12 वर्ष विज्ञान सशक्तिकरण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित विशेष श्रृंखला कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। .1 MHz पर हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में सुनेंगे

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिलने पर बधाई दी। प्रदेश में राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए भाजपा ने महेश केवट को उम्मीदवार घोषित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पूर्ण परीक्षा के केंद्रों की सूची जारी की। और प्रदेश में आज करीब 29 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। 15 से 18 जून के बीच दस्तक दे सकता है मॉनसून। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की बेटी मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिलने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उपलब्धि देश की उन बेटियों के लिए प्रेरणा है जो देश और मानवता की सेवा करना चाहते हैं। मेजर बराक भारत की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट हैं और लबनान में यौन शांति मिशन में तैनात हैं, जहां उन्होंने स्थानीय महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण और स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जोड़कर उनकी जिंदगी बदली है। प्रदेश से राज्यसभा की तीसरी सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। भाजपा ने देर रात मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश केवट को तीसरा उम्मीदवार घोषित किया है, जो कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन के सामने होंगे। दोनों आज नामांकन दाखिल करेंगे। विधानसभा में भाजपा के 164 और कांग्रेस के 63 विधायक हैं। एक सीट जीतने के लिए 58 वोट चाहिए। दो सीटें जीतने के बाद भाजपा के पास करीब 48 वोट बचेंगे, इसलिए तीसरी सीट के लिए उसे 10 अतिरिक्त वोटों की जरूरत होगी। इंदौर में कल से 13 जून तक आयोजित होने वाले ब्रिक्स कृषि सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा ने कल उच्चस्तरीय बैठक लेकर सुरक्षा, आवास, यातायात और अतिथि सत्कार की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया। इस सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि कृषि नवाचार, खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय वृद्धि जैसे विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा के केंद्रों की सूची जारी कर दी है। ये परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड पर आयोजित होगी। गौरतलब है कि 3 मई को हुई नीट परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद 12 मई को रद्द कर दी गई थी और सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर विदिशा मेडिकल कॉलेज में आयोजित 2 दिवसीय निःशुल्क कैंसर जांच शिविर का कल समापन हुआ। उन्होंने कहा कि जांच में आए हर मरीज का रिकॉर्ड तैयार कर आयुष्मान भारत योजना के तहत उपचार सुनिश्चित किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा,
1: हमारे देश में दूसरी सबसे बड़ी कैंसर की संख्या तो सर्वाइवल कैंसर, ये भी बहुत गंभीरता से फैलने वाली बीमारी। मैं जानता हूँ कि बहने बेटियां संकोच करती, यह सर्वाइकल बीमारी किसी और वजह से नहीं बल्कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होती है। और तो मैं हाथ जोड़कर सभी परिवारों से अपील करता हूँ, मीडिया के माध्यम से भी हाथ जोड़ कि अपनी 14 साल तक की बेटियों को एचपीवी टीका जरूर लगवाएं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर बैतूल जिले की रत्नी मीणा ने अपनी प्रेरक कहानी साझा की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा,
2: मैं अपने समूह की भूखीपूर्ण हूँ, जिसका भी मुझे मानदेय मिलता है। पहले मेरे घर छोटी सी किराना दुकान थी, लेकिन समूह से लोन लेकर अब उसने अधिक सामान रख लिया है और दुकान भी बड़ी हो गई है। समूह से जुड़ने के बाद मेरा जीवन सुखमय हो गया है, किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना पड़ता है। पैसे के लिए स्वयं की पूर्ति स्वयं के द्वारा ही हो जाती है।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। सीहोर के बुधनी क्षेत्र में दूधी लकड़ी से बनी पारंपरिक खिलौनों को भारत सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना ने राष्ट्रीय पहचान दिला दी है। अधिक जानकारी दे रहे हमारे सीहोर संवाददाता प्रदीप सिंह चौहान।
4: बुद्धनी की पहचान विशेष रूप से रंग बिरंगे लकड़ी के खिलौनों हस्तशिल्प उत्पाद के लिए है। कारीगर मुलायम लकड़ी विशेषकर दूधी तथा अन्य स्थल लकड़ियों का उपयोग करके खिलौने तैयार करते हैं। इन वस्तुओं को पारंपरिक खराब मशीन पर आकार दिया जाता है और प्राकृतिक रंगों का लाख से आकर्षक रूप दिया जाता है। इससे स्थानीय कारीगरों को विपणन प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने लगा है।
5: मेरा नाम सुनीता विश्वकर्मा है। सरकार की मदद से अब मैं और मेरा परिवार इन लकड़ी के खिलौनों का व्यवसाय कर रहे हैं। सरकार के सहयोग से हमारे खिलौना उत्पाद को एक जिला एक उत्पाद में मान्यता मिली है। आज हमारा यह व्यवसाय हमें आर्थिक समर्थन प्रदान कर रहा है।
6: मेरा नाम रमेश विश्वकर्मा है। पहले तो पारंपरिक उपकरणों से हम ये खिलौने बनाते थे, लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लकड़ी के खिलौने उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया है, जिसके चलते अब हम नवीनतम उपकरणों का प्रयोग खिलौने बनाने में कर रहे हैं। इससे अब खिलौने आकर्षक और कम समय में तैयार हो रहे हैं।
4: बिजली के खिलौने पर्यावरण के अनुकूल इको फ्रेंडली माने जाते हैं, क्योंकि इनमें प्लास्टिक का प्रयोग नहीं होता है। यही कारण है कि देश विदेश में इनकी मांग बढ़ रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए सीओर से मैं प्रदीप सिंह चौहान।
0: भोपाल के भारत भवन में आयोजित सदानुग्रह समागम में साइप्रस, फिजी, मैक्सिको, नेपाल, त्रिनिदाद और इक्वाडोर की राजनयिकों ने प्रदेश के जल संरक्षण मॉडल की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर शुरू हुआ जल गंगा संवर्धन अभियान अब जन आंदोलन बन चुका है। प्रदेश में अब तक 2,12,000 से अधिक जल संरचनाएं बनाई जा चुकी हैं और 3,66,000 तक पहुंचने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि 12 से 18 जून के बीच प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड और नगरीय निकाय मुख्यालय पर 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में आयुष्मान भारत, पीएम स्वनिधि और लखपति दीदी सहित केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित पात्र नागरिकों का पंजीयन और लाभ वितरण किया जाएगा। भोपाल के रविन्द्र भवन में आज से 12 जून तक 22वां हबीब रंग आलाप नाट्य महोत्सव आयोजित होगा। ये महोत्सव रंगमंच के शिखर पुरुष हबीब तनवीर की पुण्यतिथि में हर साल मनाया जाता है। प्रदेश में मानसून आने से पहले ही जून महीने में कोटे से 65% अधिक बारिश हो चुकी है। भोपाल, आगरमालवा और शाजापुर में 2 इंच, नीमच में 2.5 इंच पानी गिर चुका है। कल मानसून महाराष्ट्र पहुंच गया और अब अनुमान है कि प्रदेश में ये 15 से 18 जून के बीच दस्तक दे सकता है। आज ग्वालियर, जबलपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, खंडवा सहित करीब 29 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर की मझौली में आयोजित गौंड समाज के जनजातीय महासम्मेलन में कल जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आगरमालवा जिले के 20 गांवों में पेयजल संकट से निपटने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को 20 गांवों में नलकूप खनन की स्वीकृति मिली है। नर्मदापुरम जिले के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 11 जून को शासकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर इंदौर में खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। दतिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अंतर्गत जिले में योग जागरूकता से संबंधित विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। शाजापुर में कल विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। वहीं कटनी जिले में भी ग्राम पंचायतों में विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर युवाओं द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया। शिवपुरी जिले के करैरा में नवीन एसडीओपी कार्यालय भवन का लोकार्पण समारोह कल संपन्न हुआ। प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ई प्रवेश प्रक्रिया के द्वितीय चरण की आवंटन सूची जारी हो गई है। इस चरण में 1,25,917 विद्यार्थियों को विभिन्न महाविद्यालयों में सीट आवंटित की गई है। आवंटित विद्यार्थियों को 7 से 13 जून के बीच प्रवेश शुल्क जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा सीट निरस्त हो जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है क्लासिक फिल्मी गीतों का प्रोग्राम यादों के झरोके से। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं मोहम्मद रफी जी के स्वर से। फिल्म का नाम है संगम, बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और गीत की धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: क्षमा, 9 तारीख को जा रही हूँ ना अपनी जांच के लिए।
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी है। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती है।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: कार्यक्रम यादू के झरोके से आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से। लीजिए श्रोताओं, अब सुनते हैं अपना देश इस फिल्म का गीत, जिसे किशोरदा और लता मंगेशकर जी ने अपनी युगल स्वर दिए हैं। आनंद बख्शी के लिखे बोल है, आर डी बर्मन साहब का संगीत निर्देशन है और ये गीत पेश है आपके रेडियो सेट तक।

कार्यक्रम यादों के झरोके से आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से। आइए श्रोताओं अब सुनते हैं संघर्ष फिल्म का गीत, जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी साहब ने, शकील बदायूनी के लिखे हुए बोल हैं और नौशाद साहब का संगीत निर्देशन है।

अखियों हाय हाय कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर मैं

0: कार्यक्रम यादों की झरोके से जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: 9 तारीख को जा रही हूँ ना अपनी जांच के लिए।
2: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
1: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
3: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूंगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुंचते पहुंचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी है। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती है।
2: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
4: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: आइए कार्यक्रम यादों के झरोके में सुने अब यहूदी फिल्म का गीत, जिसे मुकेश ने अपनी आवाज दी है और शैलेंद्र के लिखे बोल हैं। शंकर जयकिशन ने इस गीत की धुन बनाई है।

आइए कार्यक्रम में अब सुने फागुन फिल्म का गीत, जिसे आवाजें दी हैं मोहम्मद रफी और हर्षा भोसले जी ने। कमर जलालाबादी के लिखे बोल है और ओपी नैयर साहब का संगीत निर्देशन है। आइए सुने फागुन फिल्म का ये गीत।

0: रमा।
1: कार्यक्रम यादों के झरोके से आइए अब सुने कार्यक्रम की अंतिम पेशकश, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने और गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने। शंकर जयकिशन का संगीत निर्देशन है। फिल्म का नाम है चोरी चोरी।

0: लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में अभी आपने सुना चोरी चोरी इस फिल्म का गीत, और इस गीत के साथ ही कार्यक्रम यादों के झरोके से अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे।
1: सुबह सवेरे
0: कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, कार्यक्रम सुबह सवेरे जनोपयोगी सूचनाओं पर जानकारी पर आधारित ये कार्यक्रम है, और आइए कार्यक्रम में सबसे पहले सुने कार्यक्रम संबंधी ये सूचना। जी हां, आकाशवाणी बैतूल के लोकप्रिय कार्यक्रम किसानवाणी में एक विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण दिनांक 11 जून 2026 गुरुवार को शाम 7:20 से 8 बजे के मध्य किया जाएगा, जिसमें सवालों के जवाब देने के लिए विषय विशेषज्ञ स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का विषय होगा खेत बचाओ अभियान की जानकारी, और विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुरेंद्र परहाते, उप संचालक कृषि विभाग बैतूल। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं, वे दिनांक 11 जून 2026 को गुरुवार को शाम 7:20 से 8 बजे के मध्य आकाशवाणी बैतूल के फोन नंबर 07141, जो कि बैतूल का एसटीडी कोड है, और हमारा फोन नंबर है 2347222 या 2319944, इस पर फोन करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन, समय और फोन नंबर एक बार पुनः सुने। 11 जून 2026 गुरुवार को शाम 7:20 से 8 बजे के मध्य, और फोन नंबर है 2347222 या 2319944, और बैतूल का स्टडी कोड है 07141। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई। आइए कार्यक्रम में अब सुने एक देशगान।

0: इस देशगान के साथ ही कार्यक्रम सुबह सवेरे अब यही संपन्न होता है।
1: सुबह सवेरे

0: आकाशवाणी बैतूल पर दे विज्ञापन और पाएं अपने उत्पाद या सेवाओं का अभिवादन।
1: जन्मदिन, रिटायरमेंट, शादी की सालगिरह या हो कोई शैक्षिक उपलब्धि या किसी दिन विशेष की देना हो बधाई, तो आकाशवाणी बैतूल है ना भाई। मेरे साथ साथ
0: ये बात ना जाना भूल कि विज्ञापनों के लिए आना आकाशवाणी बैतूल।
1: अपने विज्ञापन, प्रायोजन या प्रचार प्रसार के लिए हमसे संपर्क करें और पाए विज्ञापनों की डायरेक्ट बुकिंग पर आकर्षक छूट और बोनस विज्ञापन।

0: हमारी विज्ञापन पर। और
1: अब वो वक्त आ गया। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। समाचार प्रभात आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लागू होने जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार होगा।
1: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज के इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने 2018 से आयुष्मान भारत परियोजना शुरू की थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसे राज्य में लागू नहीं किया। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद राज्य के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में बाद दोपहर 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
3: NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। NTA ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र के शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने कल नई दिल्ली में बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
4: विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहन सभ्यतागत संबंधों पर आधारित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों नेताओं ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की।

0: रक्षा सुरक्षा समुद्री व्यापार सहयोग व्यापार और निवेश औषधि निर्माण स्वास्थ्य देखभाल ऊर्जा परिवहन अंतरिक्ष शिक्षा काउंसलर मामले सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों पर बातचीत की। इससे पहले दिन में श्री सुगियोनो ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इंडोनेशिया यात्रा के लिए उत्सुक हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों किसानों और महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
3: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन नदी तट उपचार वृक्षारोपण जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
2: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
4: हमने जो पौधा लगाया उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
2: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों से लगभग 4800 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध आप्रवासन एक गंभीर समस्या है और उनकी सरकार इसके लिए समन्वित प्रयास कर रही है। जम्मू के पर्यटन निदेशालय ने रामबन जिला प्रशासन के सहयोग से रविवार को गोल उपमंडल के सुरम में नरसिंहा क्षेत्र में एक दिन के गोल मेले का आयोजन किया। इसमें रामबन और रियासी जिलों के 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 2 दिन का मेगा लेवेंडर महोत्सव कल संपन्न हुआ। डोडा जिले में चौथी बार हुए इस महोत्सव में लेवेंडर और सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों विद्यार्थियों वैज्ञानिकों औद्योगिक भागीदारों खरीदारों विक्रेताओं और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसराइल के रक्षा बलों के अनुसार ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। एक रिपोर्ट।
5: 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद इसराइल पर यह ईरान का पहला हमला है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहेंगे कि वे जवाबी हमला ना करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वह चाहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए सामने आए। इसराइल ने बताया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने 2 मिसाइलों को रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब इसराइल ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। उधर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। ईरान के संसद

0: मोहम्मद बगीर गालिबाफ ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने अमरीका पर युद्ध विराम और बातचीत के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान के सशस्त्र बल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके दबाव के कारण ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए फिर से तैयार हुआ है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरसोर में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेविया कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने कहा है कि मॉनसून के आगे बढ़ने के साथ देश कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आज लू की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: मुकेश, राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने संसदीय समिति के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पेपर लीक किस मामले पर सवाल पूछने पर लिखा है, संसदीय समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पूछा कि पेपर लीक किसे माना जाए। जनसत्ता इसी खबर पर लिखता है, संसदीय समिति ने पूछा क्या है पेपर लीक की परिभाषा। पत्र ने घरेलू एलपीजी

0: दैनिक जागरण ने विपक्षी मोर्चे में खींचतान शीर्षक से संपादकीय आलेख में लिखा है, वर्तमान में इंडिया गठबंधन पहले जितना एकजुट और मजबूत नहीं दिख रहा है। वहीं लोकसत्य ने नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की भारत यात्रा के दौरान उनका बयान प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने मौसम का मिजाज बताते हुए लिखा है, गर्मी उमस ने बढ़ाई चुभन, आज से बारिश कर सकती है तपिश।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे और नयन पांडे जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, अपनों के बिना अधूरी लगती है।
0: बहुत सुंदर संदेश आपका, इसके लिए हमारा आभार स्वीकार कीजिए। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखते हैं,
2: ये भी जाने श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार चार दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। इस बात की जानकारी को बहुत ही सरल और सहज ढंग से बताया गया। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों पर अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
0: कृष्ण कुमार गुप्ता जी आगे लिखते हैं, करगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बखान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी हासिल हुई। इस अप्रतिम प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
2: धन्यवाद कृष्ण कुमार जी, आपकी प्रतिक्रियाओं से हमारा उत्साह बढ़ता है।
0: साथ ही साथ हम अन्य सभी श्रोताओं से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें, सिर्फ सुविचार भेजकर ही संतुष्ट न हो जाएं।
2: जी, और अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
0: लिखते हैं, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। सोमवार से शुक्रवार तक हम रोज सुनते हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे भी सुनते हैं
2: जी।
0: एक सुझाव है कि यदि सब्जी, फूल, फल व मोटे अनाज पर भी जानकारी सुनवाई जाए तो हम सबों को बड़ा लाभ होगा।
2: दिनांक 12 मई को भीषण गर्मी के उपाय, बचाव, नवतपा, थर्मल लैग जैसी बेहद उम्दा जानकारी हमने सुनी, परिवार के सभी को बेहद पसंद आई। अब उमंग कार्यक्रम में 17 सदस्य और जुड़ गए हैं। दिन पे दिन संख्या बढ़ रही है, कार्यक्रम की उपयोगिता सबको जोड़ती जा रही है। ये ज्ञान का भंडार है, इसलिए हम हृदय से उमंग टीम को आभार, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल, अंजलि जंघेल, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
2: गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी का।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का नाम क्या था?
2: इसका उत्तर है साथियों, 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था। इसे बर्लिन वॉल कहा जाता है।
0: जी, हमारा दूसरा प्रश्न था, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी।
0: और अब सुनिए हमारे द्वारा पूछा गया तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। हमारा प्रश्न था, गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकते हैं?
2: गोबी के शीत मरुस्थल में बनाए जाने वाले मोबाइल घरों को यर्ट कहते हैं।
0: जी, और अब हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं।
2: इसका उत्तर है साथियों, लद्दाख क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में पाए जाने वाले पेड़ को विलोवुड ट्री कहते हैं, जिनसे क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के किस गांव में पड़ता है?
2: इसका उत्तर है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के स्पीति घाटी के हिक्किम गांव में पड़ता है।
0: तो श्रोताओं, ये थे हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। उन सभी श्रोताओं को हमारा शुक्रिया जिन्होंने भाग लिया और उत्तर भेजे। अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है,
2: भारत की किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? श्रोताओं, आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आईडी यानी audio@cit.nic

0: sc.in पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भी।
1: प्रश्न एक बार मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप कृपया CIIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए।
0: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
1: एक चिर परिचित लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि यदि कोई प्रशंसा करे तो हमें तुरंत प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमें तथ्यों की जांच करनी चाहिए कि कहीं प्रशंसा किसी स्वार्थ के कारण तो नहीं की जा रही है।
0: जी,
2: प्यारे बच्चों नमस्ते। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक कहानी। कहानी का नाम है चालाक लोमड़ी। इस कहानी में लोमड़ी एक कौवे से रोटी का टुकड़ा छीन लेती है। कैसे छीनती है? बात यूं है कि एक बार एक कौवे को रोटी का टुकड़ा मिला। रोटी का टुकड़ा उसने अपनी चोंच में दबा लिया। एक लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा जब कौवे के मुंह में देखा तो सोचा, यदि ये रोटी मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। जानते हो फिर लोमड़ी ने क्या किया? नहीं भाई, आगे क्या हुआ ये तो मैं नहीं बताऊंगी। तो सुनो ये पूरी कहानी इस गीत में।

0: बेचारा कौआ अपनी रोटी गंवा बैठा ना। क्यों भला? क्योंकि उसने लोमड़ी से जब अपनी झूठी प्रशंसा सुनी तो वो घमंड में आकर गाने लगा और रोटी मुंह से गिर गई।
1: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
2: जनजातीय समुदाय की प्रगति, आकांक्षा और विकसित भारत की यात्रा के जनजातीय गरिमा उत्सव में आइए, हम सब साथ जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर जनजातीय समुदाय आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 10 मई से 9 जून तक हर पीढ़ी की प्रगति को प्रदर्शित करता ये आयोजन एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
3: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम,
1: राजा रवि वर्मा।
3: ये कार्यक्रम भारत के महान चित्रकार राजा रवि वर्मा की जीवनी को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करता है और बताता है कि किस तरह से उन्होंने कैनवस पर अपने पेंट ब्रश से भारतीय चित्रकला को एक नया आयाम दिया, जिसका शाश्वत प्रभाव आज भी उसी प्रकार से बना हुआ है।

0: अरे अरे तुम लोगों ने ये क्या किया? कोचू मंगला, तुमने तो मंदिर की दीवार ही गंदी कर दी। कोयले से ये क्या चील बिलाऊ बना दिए? अभी तो मंदिर सफेदी से पुतवाया था, तुमने उसे ही गंदा कर दिया। ठहरो ठहरो, मैं अभी राजा साहब से तुम्हारी शिकायत करता हूँ।
1: लगभग 150 साल पुरानी बात है। उस समय देश पर अंग्रेजों का राज्य था और छोटी बड़ी ढेर सारी रियासतें थीं जिनके राजा हुआ करते थे। ऐसी ही एक रियासत थी त्रावणकोर और उसकी राजधानी थी त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम को अब तिरुवनंतपुरम कहा जाता है और अब ये केरल राज्य की राजधानी है। उस समय त्रिवेंद्रम के राजा थे आयिल्यम तिरुनाल। उनकी ही रियासत में एक गांव था किलिमानूर, जहां का प्रबंध राजवर्मा देखते थे और उन्हें भी राजा कहा जाता था।
2: उनका एक हरे भरे बाग में मंदिर था। मंदिर को अभी हाल ही में सफेदी से पुतवाया गया था। राजा राजवर्मा की बहन थी उमा अंबाबाई, उनके बड़े बेटे थे कोच्चू। कोच्चू उनका घर का नाम था। वैसे उनका नाम रवि वर्मा था। रवि वर्मा की बहन थी मंगला। दोनों एक दिन बगीचे में खेल रहे थे। खेल खेल में कोच्चू ने कहा,
3: मंगला
4: हाँ?
3: देख, मैं तुझे इस सफेद दीवार पर घोड़ा बनाकर दिखाता हूँ।
4: ठीक है।
3: अच्छा देख, वो कोयले का टुकड़ा पड़ा है ना?
4: हाँ हाँ।
3: उठाकर मुझे दे।
4: अच्छा, ये लो कोयले का टुकड़ा।
3: हाँ।
4: अब बनाकर दिखाओ घोड़ा।
1: कोच्चू ने कोयले से लकीरें खींचनी शुरू की और देखते ही देखते घोड़े का चित्र बना दिया।

0: ये हाँ ऐसे ये मैंने बना दी घोड़े की टांग।
1: अरे वाह।
0: और ये इसकी पूंछ।
1: अरे तुमने तो बिल्कुल सही घोड़े का चित्र बना दिया। पूंछ उठाकर भागते हुए घोड़े का चित्र बहुत सुंदर है।
0: अच्छा ले कोयला ले और अब तू भी बना सुंदर सा चित्र।
1: लेकिन मुझे तो अरे मगर
0: बना तो सही। ले पकड़ कोयला पकड़।
1: ठीक है
0: अब बना।
2: मंगला चित्र बनाने जा ही रही थी कि उधर से गुजरते हुए माली की निगाह उन पर पड़ गई। माली ने डांटा, तुमने दीवार खराब कर दी, और फिर राजा साहब से शिकायत करने चला गया। इस पर मंगला बोली,
1: भाई अब क्या होगा, माली गया है शिकायत करने, मामा देखेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे।
0: तू चिंता मत कर। अच्छा चल हम दोनों झाड़ियों में छुप जाते हैं।
1: ठीक है
0: चल चल चल चल, चल। हम दोनों झाड़ियों में छुप जाते हैं।
3: कोच्चू और मंगला झाड़ियों के पीछे छिप गए और तभी माली राजा साहब को लिए हुए वहां पहुंचा।
4: अरे ये तो घोड़े का हूबहू चित्र बना दिया है कोच्चू ने। देखो तो सही, पूंछ उठाए घोड़ा कैसा भाग रहा है।
2: माली परेशान, राजा तो चित्र की तारीफ कर रहे हैं, मंदिर की दीवार खराब कर दी, इस बारे में कुछ कह ही नहीं रहे।
5: कहा है कोच्चू और मंगला है?
6: मालिक मैं अभी तो उन्हें छोड़कर गया था, आप उन पर नाराज होंगे ये सोचकर कहीं इधर उधर भाग गए होंगे।

राजा साहब ने पहचान लिया कि कोच्चू में चित्रकार बनने की क्षमता है। राजा साहब स्वयं एक अच्छे चित्रकार थे, विद्या प्रेमी थे। उन्होंने कोच्चू को प्रोत्साहित किया, उसे चित्र बनाना सिखाने लगे। लेकिन कोच्चू के पिता नीलकांतन भट्टा तिरपड़ को यह पसंद नहीं था कि उनका बड़ा बेटा कोच्चू बड़ा होकर एक चित्रकार बने। नीलकांतन वेदों के ज्ञाता, संस्कृत के विद्वान थे। वो चाहते थे कि कोच्चू उनकी तरह संस्कृत का विद्वान बने। केरल की अपनी एक प्रथा रही है कि शादी के बाद दुल्हन दूल्हे के घर रहने के लिए नहीं जाती, बल्कि दूल्हा ही दुल्हन के परिवार में रहने के लिए आता है। नीलकांतन भी अंबाबाई के भाई राजा साहब के यहां रहते थे। उन्हें राजा साहब की बात माननी पड़ी, लेकिन यह भी तय रहा कि कोच्चू संस्कृत भी सीखेंगे। कोच्चू अपने पिता से संस्कृत भी सीखने लगे, मां से संगीत और मामा राजा साहब से चित्रकला। इस प्रकार साहित्य, कला और संस्कृति के धार्मिक और कलात्मक परिवेश में उनका पालन पोषण हुआ। तरुणावस्था आते आते वो सभी में सिद्धहस्त होते चले गए। तभी त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया।

0: बहन अम्बा
1: जी,
0: त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया है। उन्होंने कहना भेजा है कि घराने में कोई अच्छा सा विवाह योग्य युवक हो तो उसे भी साथ लेते आए।
1: फिर
0: क्या, राजा का बुलावा आया है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। सोचता हूँ कोचू को साथ ले जाऊं। यहाँ वो जो कुछ लिख पढ़ सकता था, जितना कुछ सीख सकता था
1: जी,
0: सीख ही चुका है। आगे सीखने के लिए उसका त्रिवेंद्रम जाना ही ठीक रहेगा।
1: तो फिर
0: तुम कहो तो उसे त्रिवेंद्रम ले जाऊं?
1: ले जाओ, मैं क्या मना करती हूँ। हाँ, उसके पिताजी से भी पूछ लो।

पिता नीलकांतन ने भी स्वीकृति दे दी। भला उन्हें क्या आपत्ति होती। त्रिवेंद्रम जाकर कोच्चू आगे ही बढ़ेगा, वहाँ के विद्वानों, गुणियों और कलाकारों से उच्च शिक्षा पाएगा, और सबसे बड़ी बात कि त्रिवेंद्रम के राजा का उसे आश्रय मिलेगा। और इस प्रकार कोच्चू त्रिवेंद्रम के राज दरबार में पहुंच गए।

0: राजा राजवर्मा, हमारा संदेशा पाकर आप आए, अच्छा किया जो आप आए। आपका स्वागत है। आपके यहां सब कुशल क्षेम तो है?
1: जी हाँ, ईश्वर की कृपा से सब ठीक है।
0: आपके साथ ये नवयुवक कौन है?
1: महाराज, ये रवि है, मेरी बहन अंबाबाई और बहनोई विद्वान नीलकांतन भट्टाचार्य पद का बड़ा बेटा। इसे भी मैं आपके दर्शनों के लिए अपने साथ ले आया हूँ। इसने तमिल और संस्कृत का अध्ययन किया है महाराज। गायन, वादन और कथकली में निपुण है और चित्रकला का अभ्यास करता है।
0: अरे, तब तो ये नवयुवक बहुत अच्छा है, बहुत गुणवान है।
1: महाराज, इसमें आगे बढ़ने की बहुत ललक है, लेकिन हम किलिमानूर में रहकर इसे जितना सिखा सकते थे उतना सिखा दिया है। आगे की शिक्षा तो उसे आपके आश्रय में ही मिल सकती है।
0: इसमें क्या परेशानी है? इसकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था हम यहीं करा देंगे। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े गुणी और ज्ञानी विद्वान हैं। राज चित्रकार रामास्वामी नायकर हैं। हम इसे चित्रकला की शिक्षा रामास्वामी नायकर से दिला देंगे।
1: आप ऐसी व्यवस्था करा दें तो बड़ी कृपा होगी।
0: आप निश्चिंत हो जाएं। समझ लीजिए कि इसकी व्यवस्था हो गई।

0: राजा तिरुनाल ने दरबार में उपस्थित राज चित्रकार रामस्वामी नायकर को संबोधित करते हुए कहा,
1: नायकर जी, आज से ये नवयुवक आपका शिष्य है। इसे आप राज्य की रंगशाला में चित्रकला की उच्च शिक्षा दें। ये हमारे राजा राजवर्मा का भांजा है और होनहार नवयुवक है, और अब ये हमारे संरक्षण में है।
2: रामस्वामी नायकर ने देखा कि नव युवक का हाथ तो उनसे भी कहीं अधिक सधा हुआ है। ऐसे में इसे कुछ सिखाने का मतलब होगा अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। इसलिए उन्होंने उसे कुछ नहीं सिखाया, बल्कि उसे डांटता फटकारता रहा। तिरुनाल को पता चला कि रामस्वामी उसे कुछ नहीं सिखा रहे, तो उन्होंने रवि को रंग दिए, विदेशी चित्रकारों के चित्रों के एल्बम दिए और कहा,
1: रवि
3: जी,
1: तुम इन चित्रों को देख देख कर चित्र बनाना और रंग भरना सीखो, बराबर अभ्यास करो।
3: जी।
0: रवि वर्मा यही करने लगे, तभी दरबार में राज परिवार के लोगों के चित्र बनाने के लिए एक विदेशी चित्रकार आया। नाम था उसका थियोडोर जेनसन। राजा तिरुनाल ने उससे कहा कि वो रवि वर्मा को अपनी कला सिखाए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इस पर राजा तिरुनाल ने कहा,
1: मिस्टर जेनसन,
4: यस,
1: जब आप चित्र बना रहे हों, तब इसे अपने पास खड़ा रहने दें।
4: नहीं नहीं, ऐसा करने से मेरा ध्यान भंग होगा, मैं इसे अपने पास भी खड़ा रहने नहीं दे सकता।
1: तो फिर हमें आपसे चित्र नहीं बनवाने हैं, आप जा सकते हैं।
2: राजा तिरुनाल की ये बात सुनकर जेनसन घबरा गया। घबराता क्यों ना, इससे उसे मिलने

0: वाले भरपूर धन और मान सम्मान खोने का डर जो पैदा हो गया। वो सोचने लगा,
1: राजा साहब की बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी। अगर नहीं मानता तो मेरी इज्जत और मान खत्म हो जाने का डर है। अच्छा, सिखाऊंगा उसे चित्र बनाना। ऐसा सिखाऊंगा कि उसे कभी कुछ समझ नहीं आएगा। पर मैं राजा साहब को ना क्यों करूं?
0: इस तरह हार कर उसने राजा तिरुनाल की बात मान ली। लेकिन उसने भी यही कोशिश की कि रवि वर्मा उसे काम करता देखकर भी कुछ न सीख सके। लेकिन रवि वर्मा तो उसके कुछ ना सिखाते हुए भी बहुत कुछ सीख गए। वो बराबर चित्र बनाते रहे। उन्हीं दिनों मद्रास में आयोजित चित्र प्रदर्शनी में उन्होंने अपना एक चित्र भेजा। इस चित्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया और उन्हें मद्रास के गवर्नर की ओर से स्वर्ण पदक पुरस्कार में दिया गया। इस स्वर्ण पदक से शुरू हुआ उन्हें सम्मान और पुरस्कारों के मिलने का सिलसिला, जो बराबर जारी रहा। उन्हें देश और विदेश के अनेक सम्मान मिले। अंग्रेजों ने उन्हें हिंद केसरी सम्मान और राजा की उपाधि दी। उन्होंने अनेक राजा महाराजाओं और बड़े बड़े लोगों के व्यक्ति चित्र बनाए, जो अंग्रेज चित्रकारों द्वारा बनाए चित्रों से कहीं अधिक उत्तम थे। उन्हें अनेक राजा महाराजाओं ने आमंत्रित किया और अपने महलों में लगाने के लिए चित्र बनवाए। इन चित्रों के बदले में उन्होंने रवि वर्मा को खूब धन मान सम्मान दिया। यहां तक कि मैसूर के महाराज ने तो उन्हें इनाम में 2 हाथी तक दिए।
2: राजा रवि वर्मा ने केवल राजा महाराजाओं के चित्र ही नहीं बनाए, बल्कि आम लोगों के चित्र भी बनाए और सबसे अधिक चित्र बनाए देवी देवताओं के, भागवत और पुराणों के। कवि कालिदास की कृति शाकुंतलम पर आधारित उन्होंने कई चित्र बनाए, जिनमें से एक चित्र को तो विदेशों में भी खूब प्रशंसा मिली। ये चित्र था राजा दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का। इस चित्र को अंग्रेज विद्वान सर मोनियर विलियम्स ने देखा तो वो बहुत प्रभावित हुए। सर मोनियर विलियम्स ने कवि कालिदास के नाटक शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वो इस चित्र को अपने अनुवाद के मुख पृष्ठ पर छापना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रवि वर्मा से अनुरोध किया कि इस चित्र को छापने की उन्हें अनुमति दें। रवि वर्मा ने अनुमति दे दी। इस चित्र के मुख पृष्ठ पर छपने से इसकी देश विदेश में खूब प्रशंसा हुई और किताब भी खूब बिकी।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजा रवि वर्मा, और अब इसी के साथ हम आज के उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
4: और विंगलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।

103.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

0: दोस्तों, आज 8 जून है, वर्ल्ड ओशंस डे, विश्व महासागर दिवस। आज पूरा विश्व महासागर दिवस मना रहा है। कहा जाता है यदि पृथ्वी का हृदय कहीं धड़कता है तो वो महासागरों में धड़कता है। पृथ्वी का लगभग 70% भाग महासागर से घिरा है। ये महासागर हमें वर्षा, जलवायु, भोजन और ऑक्सीजन का संतुलन प्रदान करते हैं। आज महासागरों में बढ़ता प्रदूषण, खासतौर से प्लास्टिक, एक गंभीर समस्या बन चुका है। जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक मछली पकड़ने जैसी बहुत सारी इस तरह की समस्याएं हैं जो महासागरों के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुकी हैं। विश्व महासागर दिवस मनाने का ये उद्देश्य है लोगों को महासागरों के संरक्षण के प्रति जागरूक करना, लोगों को ये याद दिलाना कि समुद्री संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग ना करें, प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदाराना व्यवहार अपनाकर हम महासागरों को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। आइए संकल्प लें कि प्रकृति की इस अनमोल धरोहर को आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम सुरक्षित रखेंगे। चित्रलोक कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं अब एक और संदेश।
1: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले और एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
2: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
2: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम।

रेखा भारद्वाज की आवाज में डेढ़ इश्किया फिल्म का गीत भी आप सुन रहे थे। गीतकार थे गुलजार और संगीतकार थे विशाल भारद्वाज। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। चित्रलोक कार्यक्रम में अब वक्त है कि एक बहुत छोटा सा एक और ब्रेक लिया जाए।

कारी से लाखों दिलों पर राज करने वाली लोकप्रिय अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी जी को जन्मदिन की विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको फिर से याद दिला दें, रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा सुप्रसिद्ध अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी पर।

आज अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का जन्मदिन है। शिल्पा शेट्टी अपनी खूबसूरती, फिटनेस और बेहतरीन अदा

उत्तराखंड फिल्म का गीत अलका याग्निक सोनू निगम की आवाजों में आप सुन रहे थे। समीर ने इस गीत को लिखा था और नदीम श्रमण ने धुन बनाई थी।

अभी आप सुन रहे थे मलाल फिल्म का गीत ऋत्विक तलाशी घर की आवाज थी। प्रशांत इंगोले ने इसे लिखा था, संजय लीला भंसाली का संगीत था। इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए सविता सिंह को इजाजत। नमस्कार।

विविध भारती आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कुमार साहब कह रहे थे कयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है।

0: बन मिर्जा साहब बुलाया, उनको सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को। तो मिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: दोस्तों नमस्ते, और आज की फनकार हैं खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा डिंपल कपाड़िया।
1: मुझे कुछ कहना है।

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप घर से निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुक न चले जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ।

0: कुछ कहना है,
1: मुझे भी कुछ कहना है,
0: पहले तुम।
2: हाँ, मुझे भी कुछ कहना है। सबसे पहले तो ये कहना है कि आज है डिंपल कपाड़िया का जन्मदिन। उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी बर्थडे।

0: 8 जून सन 1957 को एक गुजराती परिवार में जन्मी डिंपल कापाड़िया को सिर्फ 16 साल की उम्र में फिल्म बॉबी में हीरोइन का टाइटल रोल प्ले करने का मौका मिल गया और इस फिल्म ने डिंपल को रातों रात स्टार बना दिया।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, सोचो कभी ऐसा

जिस तरह रातों रात उन्हें शोहरत मिली, उसी तरह अचानक ही डिंपल ने इस चमक दमक और स्टारडम को नमस्ते कह दिया और उस वक्त के सुपरस्टार राजेश खन्ना से शादी करके फिल्मों को अलविदा कह दिया।

राजेश खन्ना के साथ अपने वैवाहिक जीवन में डिंपल को दो बेटियां मिली, ट्विंकल और रिंकी। लेकिन डिंपल का वैवाहिक जीवन ज्यादा लंबा नहीं चल सका।

डिंपल के पिता चुन्नी भाई कपाड़िया मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन थे, लेकिन फिर भी डिंपल को अपनी दोनों बेटियों के साथ एक अच्छे जीवन के लिए कोई न कोई फैसला तो करना ही था। सो स्वाभिमानी डिंपल ने खुद अपने ही बलबूते पर कुछ करने की ठानी और उनके इस फैसले का स्वागत किया फिल्म इंडस्ट्री ने, निर्देशक रमेश सिप्पी ने और उनकी पहली फिल्म के को स्टार ऋषि कपूर ने। 1985 में उनकी कमबैक फिल्म आई सागर।

इस फिल्म के बाद डिंपल कपाड़िया ने अपनी उपस्थिति को फिल्म इंडस्ट्री में मजबूती से दर्ज किया और हर तरह की फिल्में स्वीकार करने लगी। यानी उस दौर में भी डिंपल ने अपनी फिल्मों में बोल्ड सीन करने में कोई

डिंपल को 1973 में बॉबी और 1985 में फिल्म सागर के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड और 1991 में फिल्म दृष्टि के लिए बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन का अवार्ड मिला। और फिर 1993 में डिंपल ने साबित कर दिया कि उनके अंदर कितनी सशक्त अभिनेत्री छिपी है। फिल्म आई रुदाली।

सिंबल की उल्लेखनीय फिल्में हैं क्रांतिवीर, गर्दिश, दिल आशना है, अजूबा, अर्जुन, आज की औरत, काश, जख्मी औरत, लावा, राम लखन।

0: डिंपल कपाड़िया ने हीरोइन के रूप में अपनी अदाकारी और अपनी खूबसूरती से जो जादू अपने दर्शकों पर चलाया उससे तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता, लेकिन 2009 से उन्होंने जो पारी शुरू की चरित्र अभिनेत्री के रूप में वो भी कम दमदार नहीं है। लक बाय चांस, तुम मिलो तो सही, दबंग, पटियाला हाउस और कॉकटेल। तो ये था आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था डिंपल कपाड़िया पर। रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के लिए आलेख और स्वर अमरकांत का था। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों तुम्हें दिखाए जाती हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की,
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी। जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और सामाजिकता भी।
2: परीक्षा क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धति से सर्वेक्षण किया गया, पहले दिन 306, दूसरे दिन 333, तीसरे दिन 263 गिद्ध दर्ज किए गए। सर्वेक्षण में भारतीय गिद्ध, सफेद पीठ वाले गिद्ध और राज गिद्ध की पहचान हुई।

मार्च 2028 की तैयारियों के तहत मंडला पुलिस ने 1 से 6 जून तक 6 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया। इसमें पुलिसकर्मियों को भू प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था और यातायात नियंत्रण का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण का शुभारंभ DIG विनोद जैन ने किया। कार्यक्रम में व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों प्रकार की जानकारी दी गई। विश्व पर्यावरण दिवस पर जन शिक्षण संस्थान मंडला ने मां नर्मदा घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। अधिकारियों, प्रशिक्षकों और प्रशिक्षणार्थियों ने घाट की सफाई कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश लिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा, पर्यावरण विशेषज्ञ राजेश क्षत्रिय और निदेशक अखिलेश पांडे ने जल संरक्षण और जन भागीदारी पर जोर दिया। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिले में 25 से 31 मई तक नो टोबैको सप्ताह मनाया गया। स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को तंबाकू सेवन के दुष्परिणाम बताए। जिला नोडल अधिकारी डॉ रानी महरावी ने तंबाकू से होने वाली बीमारियों और कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। जिस शोभा संस्था ने गुंडी पब्लिक ट्रस्ट भवन में आयोजित समारोह में हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा की मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया। विद्यालय के टॉपर्स और प्रावीण्य सूची स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र दिए गए। विश्व साइकिल दिवस पर 148वीं वाहनी CRPF ने मंडला साइकिल क्लब के सहयोग से साइकिल रैली निकाली। कमांडेंट विक्रांत सारंग पाणी के निर्देशन में आयोजित रैली का उद्देश्य स्वास्थ्य जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना था। रैली में CRPF जवानों, स्कूली बच्चों, स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। रामनगर में आयोजित 2 दिवसीय आदि उत्सव में जनजातीय संस्कृति, इतिहास और गोंडवाना साम्राज्य की विरासत को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल रमन देखा, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और अन्य जनप्रतिनिधियों ने संबोधित किया। लोक नृत्य, संगीत प्रदर्शनी और संगोष्ठियां कार्यक्रम का आकर्षण का केंद्र रही। चिटका परमाणु परियोजना से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास कौंची माल स्थित R&R कॉलोनी में शुरू हो गया है। मंत्री संपतिया उइके ने परिवारों का गृह प्रवेश कराकर प्रतीकात्मक चेक वितरित किए। प्रभावित 330 परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से नए आवास दिए जा रहे हैं। साथ ही पशुपालन और डेयरी व्यवसाय के माध्यम से रोजगार बढ़ाने की पहल भी की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून की तैयारियों के तहत महिष्मती घाट पर विशेष योग अभ्यास सत्र आयोजित किया जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस पर कलेक्टर राहुल नामदेव धोते सहित अन्य अधिकारियों ने योगाभ्यास किया और औषधीय पौधे लगाए। आयुष विभाग द्वारा 1 जून से योग प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। यह अभ्यास सत्र 21 जून तक प्रतिदिन जारी रहेगा। मध्य प्रदेश वित्त विकास निगम MP सदमेप और परम फाउंडेशन द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग की विधवाओं, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिलाओं के लिए केयर थेरेपिस्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण ITI उत्कृष्टता केंद्र दिशा में दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद रोजगार और प्लेसमेंट सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। नगर पालिका परिषद मंडला ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 5 हितग्राही ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना के तहत घर बनाने, खरीदने, ऋण पर ब्याज अनुदान जैसी सुविधाएं दी जाएंगी और अधिक जानकारी तथा मार्गदर्शन के लिए हितग्राही नगर पालिका की प्रधानमंत्री आवास योजना शाखा से संपर्क कर सकते हैं। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे मंडला जिले की चिट्ठी। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं, कृपया हमारे
1: 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। लीजिए पेश है श्रोताओं की पसंद के गीतों पर आधारित प्रोग्राम अनुरोध गीत, और कार्यक्रम का सफर आज आप तय कर रहे हैं सुरभि जैन के साथ। तो आइए श्रोताओं, प्रोग्राम का पहला अनुरोध गीत जिसे पसंद किया है शामिल करते हैं, और ये पसंद किया है इन सभी श्रोताओं ने। इनके नाम है संबलपुर काकी से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, साथ ही ये गीत सुनवा रहे हैं इन श्रोताओं को भी। छत्तीसगढ़ के दंतारेगी से भागवत शर्मा, शांति वर्मा, लीलावती, विनीत वर्मा और रुद्र वर्मा, इन्होंने सुनना चाहा है जानी दुश्मन फिल्म का गीत, जिसे स्वर दिए हैं किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल ने। वर्मा मलिक ने इस गीत के बोल लिखे हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत निर्देशन है।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
3: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
2: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
4: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं

0: इस सेवा का लाभ उठाएं ताकि 9वें महीने तक पहुंचते पहुंचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
2: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: कार्यक्रम अनुरोध गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से। आइए श्रोताओं, अगली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं। अगला अनुरोध गीत आया है, हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज मिला है हीरा बन्ना इस फिल्म के गीत के लिए, और फरमाइश करने वाले हमारे ये सभी श्रोता हैं पद्मा टॉगिल, नेपा नगर मध्य प्रदेश के हैं ये। इन्होंने नाम लिखा है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। इसी गीत को सुनना चाहते हैं और इन सभी श्रोताओं को हम सुनवा रहे हैं। एमपी छिंदवाड़ा से रानी कामत, उदयभान ठाकरे, चंद्रभागा ठाकरे, दीपक ठाकरे, नवीन ठाकरे, शिखा ठाकरे और ग्रंथ ठाकरे। तो लीजिए श्रोताओं, आप सभी के रेडियो सेट पर हम पहुंचा रहे हैं हीरा पन्ना फिल्म का गीत, और इस गीत को युगल स्वर दिए हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी ने आनंद बख्शी के लिखे बोले। आर डी बर्मन साहब का संगीत निर्देशन है।

0: स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: कार्यक्रम अनुरोध गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं बाजीगर फिल्म का गीत, जिसे सुनना चाहा है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, रितु, मुकेश और जगताप, इन सभी ने हमें व्हाट्सएप पर इस फिल्म के गीत के लिए मैसेज किया है। इसके अलावा ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। इन सभी श्रोताओं को भी वरुण जरूर से बाबा साहेब वड़ोदे, मीनाक्षी चरपे और प्रियंका आर्य, पंकज वाड़ोदे। श्रोताओं, बाजीगर फिल्म का गीत, इस गीत को युगल स्वर दिए हैं विनोद राठौर और आशा भोसले जी ने। जफर ने इस गीत के बोल लिखे हैं और जतिन ललित का संगीत निर्देशन है।

0: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: कार्यक्रम अनुरोध गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से। आइए श्रोताओं, अब सुने कार्यक्रम का अंतिम अनुरोध गीत, जिस गीत को सुनना चाहा है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलस डिकेस्ट्रो ने। साथ ही ये गीत हम आपको सुना रहे हैं, इन सभी श्रोताओं को भी, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर। इन सभी ने सुनना चाहा है महबूब की मेहंदी इस फिल्म का गीत, जिसे मोहम्मद रफी ने अपनी आवाज दी है, आनंद बख्शी के लिखे बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत की धुन बनाई है।
5: ये जो चिलमन है

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम अनुरोध गीत अब यहीं संपन्न होता है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे महिला श्रोताओं का अपना कार्यक्रम महिला जगत।

नया सप्ताह नई उम्मीदों, नए सपनों और नए अवसरों का संदेश लेकर आया है। आइए मुस्कान और उत्साह के साथ इसकी शुरुआत करें। रेडियो सुन रहे सभी सखियों श्रोताओं को आपकी सखी सीमा का प्यार भरा नमस्कार। हर दिन की तरह आज भी हम हाजिर हैं आपका अपना कार्यक्रम महिला जगत को लेकर। श्रोताओं, समंदर सिर्फ पानी नहीं, धरती की धड़कन है। इसे स्वच्छ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। समुद्र की हर लहर कहती है, प्रकृति का सम्मान करो, स्वच्छ जल स्वच्छ कल, यही संदेश स्वीकार करो। श्रोताओं, इस संदेश से तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ सखियों, आज है विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे। इस पर करेंगे बातें जल संपदा और समुद्री संरक्षण का महत्व को लेकर। करवाएंगे मुलाकात जल संरक्षण, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों की जिम्मेदारी पर जल संवर्धन से जुड़ी समाज सेवी महिला नवांकुर प्रदीपन संस्था की डायरेक्टर रेखा गुजरे जी से, और बताएंगे कुछ उपयोगी किचन टिप्स। इसी के साथ में मनोरंजन के लिए होंगे सुमधुर गीत। श्रोताओं, जल संपदा प्रकृति का अनमोल उपहार है जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जल प्रकृति की सबसे मूल्यवान संपदाओं में से एक है। नदियां हैं, समुद्र, तालाब, झीलें, कुएं, भूजल और वर्षा जल हमारी जल संपदा है। इसके बिना मानव जीवन, कृषि, पशु पक्षी और पर्यावरण का संतुलन संभव नहीं है। श्रोताओं, विश्व महासागर दिवस हर वर्ष 8 जून को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का पहली बार 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा द्वारा प्रस्तावित किया गया। अंततः 2008 में संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक तौर पर इसे नामित किया। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य महासागरों से प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना, अत्यधिक मछली पकड़ने पर रोक लगाना, लोगों को जल स्रोतों के महत्व के प्रति जागरूक करना तथा समुद्री जीवन की रक्षा और जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करना है। श्रोताओं, महासागर पृथ्वी के लगभग 70% भाग

प्रकृति का अनमोल उपहार है जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जल प्रकृति की सबसे मूल्यवान संपदाओं में से एक है। नदियां हैं, समुद्र, तालाब, झीलें, कुएं, भूजल और वर्षा जल हमारी जल संपदा है। इसके बिना मानव जीवन, कृषि, पशु पक्षी और पर्यावरण का संतुलन संभव नहीं है। श्रोताओं, विश्व महासागर दिवस हर वर्ष 8 जून को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का पहली बार 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा द्वारा प्रस्तावित किया गया। अंततः 2008 में संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक तौर पर इसे नामित किया। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य महासागरों से प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना, अत्यधिक मछली पकड़ने पर रोक लगाना, लोगों को जल स्रोतों के महत्व के प्रति जागरूक करना तथा समुद्री जीवन की रक्षा और जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करना है। श्रोताओं, महासागर पृथ्वी के लगभग 70% भाग

इसके साथ ही इस वर्ष समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के विस्तार पर भी विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। श्रोताओं, हमें महासागरों के साथ संतुलन बनाना होगा ताकि प्राकृतिक संपदा का न केवल दोहन हो बल्कि इसकी जीवंतता को भी संरक्षित किया जा सके। आइए श्रोताओं, विश्व महासागर दिवस पर हमें संकल्प ले कि हम समुद्रों, नदियों और जल स्रोतों की रक्षा करें।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
2: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
1: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
3: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूंगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुंचते पहुंचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
2: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
4: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम महिला जगत में। इस प्यारे से गीत के बाद अब बात करते हैं जल संरक्षण, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों की जिम्मेदारी पर। बहनों, जल जीवन का आधार है। पृथ्वी पर मौजूद जीव जंतु और मानव का जीवन जल पर निर्भर करता है। आज जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, पेड़ों की कटाई और जल के अत्यधिक उपयोग के कारण जल संकट लगातार बढ़ रहा है। बढ़ती आबादी और प्रदूषण के बीच जल संकट से बचने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और

0: आज जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, पेड़ों की कटाई और जल के अत्यधिक उपयोग के कारण जल संकट लगातार बढ़ रहा है। बढ़ती आबादी और प्रदूषण के बीच जल संकट से बचने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और भावी पीढ़ियों के जीवन की रक्षा के लिए जल संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। श्रोताओं, पर्यावरण और जल एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। स्वच्छ नदियाँ, तालाब, वर्षा और हरियाली स्वस्थ पर्यावरण की पहचान है। जब हम जल बचाते हैं तब हम प्रकृति और पर्यावरण दोनों की रक्षा करते हैं। वर्षा जल संचयन कर, पानी का सीमित उपयोग कर, वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर, सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार करके तथा जल स्रोतों को स्वच्छ रखकर बड़े बदलाव ला सकते हैं। बहनों, हम भी अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके कुछ सावधानियां रखकर सैकड़ों लीटर पानी बचा सकते हैं। जैसे कि सुबह से शुरुआत करें तो ब्रश करते समय या फिर शेविंग करते समय नल को खुला न छोड़ें, नहाते समय शावर की बजाय मग व बाल्टी का उपयोग करें, आरओ का वेस्ट पानी इकट्ठा करके पौधों में डालें या फिर पोछा लगाने में ले या सफाई के अन्य कामों में भी ले सकते हैं। बहते पानी के नीचे बर्तन और कपड़े ना धोएं और नल के लीकेज पर विशेष ध्यान दें, पानी को टपकने ना दें। श्रोताओं, आज की पीढ़ी को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने की बहुत जरूरत है। स्कूलों में, कॉलेजों में इको क्लब का गठन किया गया है जिसके माध्यम से पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा मिल सके। इसी के साथ सखियों, हम सभी के लिए भी जन जागरूकता अभियान चलाकर जिसमें नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, रैलियों का आयोजन कर, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके स्थानीय लोगों को पानी को संरक्षित करने के बारे में जागरूक किया जा सकता है। सखियों, जल संरक्षण पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों की जिम्मेदारी, इस विषय पर और अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ बातें की है नवांकुर प्रदीपन संस्था बैतूल की डायरेक्टर रेखा गुजरे मैम ने। ये लगातार 30 वर्षों से बैतूल जिले में जल, जमीन और जंगल, पर्यावरण के बचाव के लिए जागरूकता के कार्य में कार्यरत है। आइए इनसे मिलते हैं। नमस्कार मैम।
1: नमस्ते,
0: आपका स्वागत है आकाशवाणी के महिला जगत कार्यक्रम में। मैम, आज हम जल संरक्षण, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों की जिम्मेदारी, इस विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। मैम, जल संरक्षण आज इतना महत्वपूर्ण क्यों बन गया है? आपने जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने की जो प्रेरणा है वो कहाँ से ली?
1: मैम, मुझे जल संरक्षण के कार्य की जो प्रेरणा है वो दो जगह से मिली।
0: जी,
1: एक तो मिली है कि मुझे जो पूरे भारत में जिसको हम जल पुरुष के नाम से जानते हैं, राजेंद्र जी करके जो है
0: जी,
1: वो तरुण भारत संघ के हैं।
0: हाँ।
1: और हमारे समाज में, खास करके आदिवासी समाज में जो है
0: जी,
1: अपने क्षेत्र में, अपने गांव में जो परंपरा थी, जल संरचनाएं थी, जैसे नदी है, बावड़ी है, कुएं हैं, तो वो क्या करते थे, मिलके जो है अपने पीने के पानी के लिए कुओं में से पूरा गाद निकाल लेते थे जिससे कि वो पीने लायक वहाँ पानी हो सके। तो वो भी हमें, जब हम आदिवासियों के बीच में काम करने लगे तो हमें भी ये समझ और सीख मिली कि ये जो लोगों की अपने आप में कल्चर है, उनका एक संस्कृति है, उनकी उनकी समझ है पानी के संरक्षण पे, तो मतलब इसको पुनर्जीवित हम कैसा करें और कैसे लोगों को इसमें और हम जोड़ सके, ताकि हमारे यहाँ जो पानी है उस जल को लोग सुरक्षित करने के लिए, उसके संवर्धन करने के लिए स्वयं आगे आए, उसमें सहभागिता सुनिश्चित अपनी कर सके।
0: जी मैम, आपके जो सुझाव है वो भी बहुत अच्छे हैं।
1: एक चीज मैं और आगे बता देना चाहती हूँ मैं, कि हमने जब राजस्थान में, मैंने जैसे कहा था कि तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह जी जो है
0: जी,
1: और जल भागीरथ एक फाउंडेशन है राजस्थान का, उन्होंने भी पानी के ऊपर बहुत काम किया, एक अभियान के रूप में काम किया। उन्होंने जो नदियाँ थी वो नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, जो देश में आज माने जाने जाते हैं, इनको जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। हमारे मध्य प्रदेश में भी यदि हम बात कहें कि बैतूल की यदि हम बात करते हैं, तो पिछले जो है लगातार 3 सालों से जल गंगा संवर्धन का काम हमारे यहाँ

0: और यहाँ के जितने नदी है नाले हैं की स्वच्छता को लेके उनके गहरीकरण को लेके लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें जो है यहाँ के जिले के निःशुल्क निस्वार्थ के साथ में जल की महत्ता को समझते हुए सब लोग जो सामाजिक संगठन है, अशासकीय संस्थाएं हैं और जो वरिष्ठ ऐसे नागरिक है, उसमें युवा है, महिला स्व सहायता समूह की दीदियां हैं, ये सब हमारे साथ मिलकर ये जो है जल गंगा संवर्धन का काम करती है। इसमें एक जन अभियान परिषद जो है, जो मध्य प्रदेश सरकार की एक शाखा है, और वो भी इसमें नेतृत्व अपना सुनिश्चित कर रही है। और ये सिर्फ बैतूल नहीं बल्कि पूरे हमारे मध्य प्रदेश सरकार के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में जल संवर्धन का काम लगातार जल गंगा संवर्धन के नाम से किया जा रहा है।
1: जी मैम, बहुत अच्छी जानकारी दी है मैम आपने। ये तो मैम, जल संवर्धन में महिलाओं की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है?
0: मैम, महिलाएं जो है एक समाज की एक धुरी है
1: जी,
0: और महिलाएं जो है पूरे परिवार में एक जो विशेष करके पूरे घर के कामकाज में महिलाओं का योगदान पूर्णतः रहता है
1: जी हाँ।
0: और खास करके यदि हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा यदि पानी की कमी होती है, उसका असर महिलाओं के ऊपर और बच्चों के ऊपर होता है
1: जी।
0: चाहे हमारा भोजन बनाने का काम हो, चाहे हमारा सफाई का काम हो, या कपड़े धोने का काम हो, या पशुओं को पानी पिलाने का काम हो, बहुत सारा काम जो है महिलाएं ही लगातार उसको करती है।
1: मैम, आपके कार्य का कोई ऐसा अनुभव जो आपको सबसे अधिक प्रेरित करता हो?
0: जी मैम, मैं बताना चाहूंगी
1: जी
0: कि 98 में
1: जी
0: प्रदीपन संस्था की ओर से
1: जी हाँ
0: एक ग्राम सोत खेला है, जो चिखली पंचायत का एक गांव है, छोटा गांव है
1: जी।
0: और जहां पूरे कोरकू आदिवासी थे, करीब 100 मकान के आदिवासी वहां निवास करते हैं
1: जी।
0: और उस गांव में पेयजल व्यवस्था कुछ भी नहीं थी
1: हाँ।
0: लेकिन उसके गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर जो है एक बड़ी नदी बह रही थी
1: जी।
0: और वो नदी से ही लोग जो है वहाँ झेरिया खोद खोद कर पानी निकाल के और फिर पानी लेके आती थी महिलाएं, जिनके घर में 2 छोटे छोटे मटके होते थे, और जब भी वो 2 मटके का पानी खत्म हो जाए तभी महिलाएं जो है उस नदी में फिर पानी लेने के लिए जाती थी। और वो दोपहर में महिलाओं को नंगे पहरी जाती थी, उस समय बिचारिया गर्मी के दिन में फिर पानी लेकर आती थी। तो ये जो समस्या महिलाओं के लिए बहुत भारी थी
1: जी।
0: और महिलाएं बहुत परेशान थी कि इतने दूर से महिलाएं पानी ले लेके गर्मी में भी आना पड़ता था। तो वहाँ पे हम लोग गांव में बैठे और गांव का हमने एक जो समस्याओं को लेके हमने एक नीड असेसमेंट किया, जिसमें गांव के लोगों में से एक व्यक्ति ऐसे लोला सिंह करके जो थे, उन्होंने कहा मैम सारे काम हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन हमें आप हमारी एक समस्या का समाधान कर दीजिए, वो है पेयजल संकट हमारे यहाँ बहुत बड़ा है
1: जी।
0: क्योंकि हमारी महिलाएं बहुत दोपहर में जो है महिलाएं पानी के लिए जाती है, यहाँ से 2 किलोमीटर करीब उनको जाना पड़ता है, या पानी की कोई भी सुविधा नहीं, या हैंडपंप नहीं है, या कोई दूसरा सरकारी कुआं नहीं है
1: जी।
0: तो यदि आप एक कुआं हमारे लिए बना देंगे तो हम जो है आपके बहुत आभारी होंगे। और तो संस्था ने जो है वो प्रश्न रखा कि हाँ हम इस काम को करने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक यदि गांव के लोग हमें 50% यहाँ मदद नहीं करेंगे तो हम इस काम को नहीं कर पाएंगे। तो लोगों ने ये स्वीकार किया और ये किया कि हम 50% मतलब अपना श्रमदान हम करेंगे। दोनों संस्था और गांव के लोगों ने मिलकर वहाँ एक कुआं खोदा, जिससे पानी पीने के लिए लोगों को सुविधा हुआ। अब जो वो सिर्फ पेयजल के लिए नहीं बल्कि वो सिंचाई के लिए भी उसका उपयोग किया जा रहा है। इसी तरह से 4 गांव में हमने 4 कुएं बनाए थे, जहाँ पे पेयजल की बहुत समस्या थी, और उसको हमने 4 गांव में हमने लोगों के सहभागिता से 4 कुओं का हमने निर्माण किया, जो पेयजल के भी काम में और आज वो सिंचाई के काम में आ रहा है
1: जी। बहुत ही प्रेरित करने वाली आपकी कहानी है मैम। मैम आपने बहुत अच्छी जानकारी दी इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोताओं को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैम। थैंक यू
1: मैम। हमारे कार्यक्रम के माध्यम से कोई गीत सुनना चाहते हैं तो उसे?
0: मैम मुझे बहुत पसंद है और पानी के ऊपर बहुत

0: 9 तारीख को जा रही हूँ ना अपनी जांच के लिए।
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: सखियों, कार्यक्रम में अब समय है किचन टिप्स का। हम सब जानते हैं कि साफ सुथरा

भंडारण और सही रखरखाव न केवल खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है बल्कि परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा भी करता है। खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए भोजन को साफ, सूखे और पैक ढक्कन वाले बर्तनों में रखना चाहिए। सखियो, बरसात के मौसम में हम जिन अनाज को स्टोर कर रखने वाले हैं उन्हें अच्छी तरह से सुखा कर ही रखें। दालों को स्टोर करने से पहले नमक, हल्दी मिला पानी लगाकर 2 से 3 दिनों तक धूप में अच्छे से सुखाकर स्टोर करें। इससे दालों में कीड़े नहीं पड़ेंगे। पर सखियो, याद रखें कि ये नमक और हल्दी वाला पानी जो है वो बस दालों को चिपकना चाहिए, ज्यादा गीला नहीं करना है, नहीं तो फिर दाल में नमी पड़ जाएगी। सखियो, चावल को स्टोर करते समय इसमें डली वाला नमक डाल दें और चावल को पैक बंद करके रख दें, हवा न लगने दें, चावल सुरक्षित रहेंगे। और गेहूं को स्टोर करते समय इसमें सूखी कड़वी नीम की पत्तियां तो डालें ही, साथ में एक माचिस की डिब्बी जो तीलियों से भरी हो उसे भी गेहूं में दबा दें और ढक्कन बंद करके रख दें। गेहूं साल भर खराब नहीं होगा। दोनों अक्सर हम इसी मौसम में मसालों को भी स्टोर करके रखते हैं, जिसमें हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर ये सब रखते हैं और इनके अंदर कीड़े लगने की समस्या आती है। तो बहनों, इन मसालों के डिब्बों में टिश्यू पेपर के अंदर खड़ी हींग या फिर पिसी हींग को रखकर पुड़िया बना ले और उन्हें इन डिब्बों के अंदर रख दें। यकीन मानिए सखियों कि मसाले साल भर सुरक्षित तो रहेंगे ही, इनमें खुशबू भी बरकरार रहेगी। सखियों, आपको ये आसान किचन टिप्स जरूर पसंद आए होंगे। अब कार्यक्रम में अगले प्रसारण की जानकारी देते हैं। कल दिन मंगलवार होती है श्रृंखला सखियों की पसंद, जिसमें बातें होगी परिवार में संवाद से सौहार्द कैसे बढ़ाएं इस विषय पर। साथ ही जानेंगे तनाव मुक्त जीवन कैसे जिए और मानसिक स्वास्थ्य कैसे रखें। तो सखियों, आज ही आप अपने विचार और अपने सुझाव इस विषय पर लिखकर भेज सकते हैं आपके पसंद के गीत के साथ। पत्र लिखने के लिए पता नोट करें, कार्यक्रम महिला जगत, श्रृंखला सखियों की पसंद, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी केंद्र बैतूल, पिन है 460001। व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप अपना मैसेज हमें लिख भेज सकती हैं, जिसके लिए नंबर है 7141234722। तो श्रोताओं, शब्दों का ये सफर यही विराम लेता है, लेकिन उम्मीदों और मुस्कानों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिर मिलेंगे कल सुबह 10:30 बजे एक नई सोच, नई ऊर्जा और नए विषय के साथ हमारी रेडियो हम सफर प्रीति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला श्रोताओं का अपना कार्यक्रम महिला जगत 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, एक कार्यक्रम संबंधी सूचना हम आपको दे रहे हैं, सुनिए। आकाशवाणी बैतूल के लोकप्रिय कार्यक्रम किसान वाणी में एक विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण दिनांक 11 जून 2026 गुरुवार को शाम 7:20 से 8 बजे के मध्य किया जाएगा, जिसमें सवालों के जवाब देने के लिए विषय विशेषज्ञ स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का विषय होगा खेत बचाओ अभियान की जानकारी। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुरेंद्र परहाते, उप संचालक कृषि विभाग बैतूल। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं, वे दिनांक 11 जून 2026 गुरुवार को शाम 7:20 से 8 बजे के मध्य आकाशवाणी बैतूल के फोन नंबर, जिसमें एसटीडी कोड है 07141 और फोन नंबर है 2347222 या 2319444 पर फोन करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन समय और फोन नंबर एक बार फिर सुनिए।

11 जून 2026 गुरुवार को शाम 7:20 से 8 बजे के मध्य। फोन नंबर है 2347222 या 2319944। बैतूल का स्टडी कोड है 07141। सूचना समाप्त हुई। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनाने जा रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज में गजल। शायर हैं राजेश रेड्डी, संगीत जगजीत सिंह का, एल्बम खामोशी।

0: नया आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है। जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन के साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
1: प्यार का राग सुनूं
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की आवाज़ें, इन्हीं का संगीत, शब्दकार आर एस हरियाणवी रतन, एल्बम का नाम तस्वीर।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, चुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है रंग तरंग। यूफोरिया की आवाज पलाश और दीक्षांत का लिखा हुआ गाना, संगीत पलाश और डीजे का,

पंकज उधास की आवाज है, शब्दकार अंजुम रैबर, संगीत पंकज उधास का, एल्बम मुस्कान।

आज के रंग तरंग कार्यक्रम की अगली और अंतिम प्रस्तुति। कमाल खान की आवाज, संगीत साजिद वाजिद का एल्बम कल रात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने इसे आवास क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव बताया, जिससे लाखों गरीब परिवारों के लिए सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित हुआ है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आज से पश्चिम बंगाल में भी लागू होने जा रही है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में इस योजना को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज के इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
0: आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशेष अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और

0: 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनमें 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
1: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। इस जांच से म्यांमार से मादक पदार्थ की तस्करी और आपूर्ति करने वाले संगठित गिरोह का पता चला है। पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर उत्तर कोरिया पहुंच गए हैं। ये पिछले 7 वर्ष में उनकी पहली उत्तर कोरिया यात्रा है। चीन का उद्देश्य लंबे समय से सहयोगी रहे और हाल के वर्षों में रूस के अधिक निकट हो रहे उत्तर कोरिया के साथ संबंध मजबूत करना है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत कार्यक्रम यादों की महफिल। धड़कन फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू की आवाजों में, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।
3: दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे।
2: अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का जन्मदिन है, बहुत सारी शुभकामनाएं।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार।

0: है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

यादों की महफिल ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश के सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम के बाकी गाने हम आपको सुनाएंगे एक अंतराल के बाद।

यादों की महफिल ये कार्यक्रम विविध भारती से आप सुन रहे हैं। लीजिए अब सुनिए मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। इस फिल्म का गाना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में रानी मलिक का लिखा हुआ गाना। हमने आपको बताया कि आज अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का जन्मदिन है, उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस कार्यक्रम की शुरुआत ही कुछ गाने उन्हीं की फिल्मों से लिए गए हैं।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3:03।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखी ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आज अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया का भी जन्मदिन है, तो हम उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। उन्हीं की फिल्मों के कुछ गाने अब आपको सुनवाएंगे। यह है बॉबी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजें, विट्ठल भाई पटेल का लिखा हुआ गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखी ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आज अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया का भी जन्मदिन है, तो हम उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। उन्हीं की फिल्मों के कुछ गाने अब आपको सुनवाएंगे। ये है बॉबी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजें, विठल भाई पटेल का लिखा हुआ गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

अब आपको सुनवाते हैं रुदाली फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, बोल हैं गुलजार के, संगीत भूपेन हजारिका का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन प्रस्तुत कार्यक्रम सुरीला सफर कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

फिल्म का गाना सुनवाते हैं। शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, शंकर जयकिशन का संगीत, नूतन और बलराज साहनी पर फिल्माया गया गाना है। आवाज किसकी है आप हमें बताइए।

मन्ना डे की आवाज में सीमा फिल्म का ये गाना आपने सुना। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि सागर महासागर के कई ऊंच नीच लहरों में छिपी अनगिनत यादों को, मन की भावनाओं को दिल की गहराइयों से सलाम। मिटने वाली सभी निशानियों का कभी अंत नहीं, सूरज को अपने भीतर समाने वाला सागर अथांग तेर में बंदिस्त होकर भी सभी नदियों का पानी पीकर सीमा नहीं छोड़ता है। ये उसकी खासियत है, अपनी सीमाओं से वो बंधा होता है। एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि समुन्द्र शोर भी करता है और सुकून भी देता है, ऊपर से नीला शांत और अंदर मूंगा मोती तूफान सब छुपाए बैठा है। समुन्द्र की हर लहर आती है, वापस जाती है और कहती है कि फिर आऊंगी। वो बना तो बूंद बूंद से है पर बड़े बड़े जहाजों को भी डुबो देता है। फिर भी न छोटा होने का गम और न बड़ा होने का घमंड, वो हजारों नदियों का दर्द पीकर भी गमगीन नहीं होता। इसलिए अक्सर टूटे हुए लोग समुन्द्र के किनारे जाते हैं और उससे सीखते हैं कि दर्द पीकर भी कैसे मुकम्मल रहा जा सकता है। बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, बारूद फिल्म का गाना आपको सुनवाएंगे। इसमें जो आवाज है वो लता मंगेशकर की है, आनंद बख्शी का।

की हद है कहाँ तक, जी हाँ, इस बात को हमें याद जरूर रखना चाहिए कि हमारी हदें कहाँ तक है। सागर के किनारे हम जाते हैं, अटकेलियां करते हैं, आनंद लेते हैं पानी के आने और जाने का, लहरों का आनंद लेते हैं, वहां की जो ठंडक होती है उसको महसूस करते हैं। दूर तक दिखता हुआ सागर, जहां उसका कोई किनारा नहीं दिखता है, सूरज डूबता रहता है, वो जो मंजर होता है बहुत खूबसूरत होता है। क्या हमें

खूबसूरती को बरकरार नहीं रखना चाहिए, ये प्रश्न अभी हमारे सामने है। जब हम समुद्र किनारे जाते हैं, बहुत सारी गंदगी फैला करके आते हैं, उसे गंदा करते हैं, पानी को गंदा करते हैं, तो इन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, ये हमारी हदें हैं। तो इस बात को बताता हुआ ये गाना आपने सुना। मैंने आपको बताया कि ऋषि कपूर और शोमा आनंद पर फिल्माया गया ये गाना है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि समुन्द्र सिर्फ पानी का विशाल संग्रह नहीं बल्कि हमारी भावनाओं का आईना है। उसकी खामोशी में भी एक शोर महफिल है, इसकी हर लहर में एक रहस्य छुपा हुआ है, तो गहराइयों में दबी है एक असीम दुनिया, सदियों से बहता फिर भी ताजा लगता है। उसकी गहराइयों में कितने रहस्य दफन है, उसके हर मोती में कितने ख्वाब छुपे हैं। समुन्द्र के शरण में जिंदगी मुस्कुराती है, उसकी विस्तृतता में एक आजादी का एहसास है। देखने में अथाह और शक्तिशाली समुन्द्र फिर भी कितना बेबस है। यह बेबसी इंसानी फितरत और भावनाओं से भी मेल खाती है, जहां हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम कुछ खास चीजों के लिए लाचार होते हैं। अब आपको हम आगे जो गीत सुनाने वाले हैं, ये झुक गया आसमान इस फिल्म का गाना है। लता मंगेशकर की आवाज है, शैलेंद्र के बोल है और संगीत है शंकर जयकिशन का।

आज की इबारत में विशाल अनंत कभी शांत चित्त तो कभी विकराल रौद्र रूप सिंधु की महिमा बखान है, कभी अटखेलियां करते लहरों और ज्वार भाटा से पर्यटकों को आनंदित करती है तो कभी पर्यावरण असंतुलन से असंतुष्टि का प्रदर्शन अपने रौद्र रूप चक्रवातों और सुनामी से करती है। समंदर मानव कल्याण के लिए खनिज, जीव जंतु, संचार, परिवहन, देश सुरक्षा का प्रमुख स्तंभ भी है। अनेकों रहस्यों को समेटे सिंधु आज भी दहाड़ते हुए आकर्षण की प्रधानता स्वयं प्रमाणित करती है। सागर की लहरों संग का मनोरंजक सफर का हमें इंतजार है। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि आज बातें हमने समुद्र की, जिसे हम सागर, जल्धि, पयोधि, रत्नाकर, अर्णा आदि नामों से भी जानते हैं। पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा जल से ढका है, जिसमें महासागरों की हिस्सेदारी सबसे बड़ी है। ये सूर्य की हानिकारक और तीव्र गर्मी को सोखकर वैश्विक तापमान को संतुलित रखता है। अगर समुद्र न हो तो पृथ्वी का तापमान इतना अधिक हो जाएगा कि यहां जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाले सबसे बड़े सिंक के रूप में काम करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, सागर फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। गाना है सागर जैसी आंखों वाली। अभिनेत्री कौन है, उनका आज जन्मदिन भी है तो उन्हें हम जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं और उनकी फिल्म का ये गाना सुनते हैं। किशोर कुमार की आवाज से जावेद अख्तर के बोल संगीत आर डी बर्मन का।

झुक गया आसमान फिल्म का गाना हमने आपको सुनाया, राजेंद्र कुमार और सायरा बानो पर फिल्माया गया ये गाना है। एक हमारे साथी ये बात लिख रहे हैं कि

ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया पर फिल्माया गया ये गाना है। सागर जैसी आंखों वाली अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया, आज उनका जन्मदिन भी है, तो एक बार फिर हम उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देते जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि समुद्र केवल खारे पानी का अथाह विस्तार नहीं बल्कि पृथ्वी का धड़कता हुआ हृदय है। दूर तक फैला उसका नीला कैनवास जितना मनोहारी है उतनी ही गहरी उसकी संवेदनाएं हैं। उसकी लहरें तट से मिलने की उत्कंठा में दौड़ती है, टूट जाती है, फिर भी जाते जाते सीप शंख और मोतियों जैसी अनमोल सौगातें दे जाती है। मानव की उपेक्षा प्रदूषण और प्रकृति की चुनौतियों को सहते हुए भी वो एक महान तपस्वी की तरह बिना किसी शिकायत के सब कुछ न्योछावर कर देता है और सृष्टि के लिए जीवन संतुलन तथा समृद्धि का आधार बना रहता है। अनंत गहराइयों, असीम धैर्य और मानवीय भावनाओं के इस जीवंत दर्पण में अनगिनत कहानियां, रहस्य और जीवन के सूत्र समाये हुए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अनोखी रात फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। मुकेश की आवाज, इंदिवर के बोल, रोशन का संगीत, संजीव कुमार पर फिल्माया गया ये गाना है। संजीव कुमार इस गाने में एक वाहन चलाते हुए दिखाई देते हैं, वो वाहन कौन सा है आप हमें बताइए।

अनोखी रात फिल्म का ये गाना संजीव कुमार पर फिल्माया गया है और इस फिल्मांकन में वो बैलगाड़ी चलाते हुए हमें दिखाई देते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि समुद्र हमें सिखाता है कि गहराई में ही असली खजाना छिपा होता है। ऊपर लहरों का शोर होता है लेकिन भीतर अनगिनत मोती पलते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि इसका यानी कि समुद्र का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हमारी पृथ्वी को करीब 70% घेर के रखता है और हमें हवा पानी मुहैया करवाता है, हजारों लोगों को रोजगार देता है। इसके किनारे खड़े होने पर अलग अलग समय में अलग अलग दृश्य देखने का रोमांच अलग ही होता है। ठंडी हवा के झोंके से मन आनंदित होता है तो कभी दूर तक शांत दिखाई देता है। एक साथी लिख रहे हैं कि समुद्र केवल भौगोलिक संरचना नहीं है बल्कि एक भावना है। इसे देखकर मन में असीम शांति और कभी कभी विचारों का ज्वार भाटा उठता है। यह बाहर जितनी अटखेलियां करता है इंसान के भीतर भी उतनी ही गहरी हलचल पैदा करता है। समुद्र की लहरें जब तट के रेतीले किनारे से टकराती है तो वह दृश्य अद्भुत होता है। लहरें अपने साथ गहरे समुन्द्र में सुंदर सीप शंख और मोती तट पर छोड़ जाती है जिन्हें लोग यादों के तौर पर समेट लेते हैं और अपने घर ले जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रंगोली फिल्म का गाना लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र के बोल और संगीत शंकर जी जय की शंका। कौन सी अभिनेत्री ये गाना गा रही है आप बताइए हमें।

अभिनेत्री वैजयंतीमाला ये गीत गा रही हैं फिल्म में, जो हमें दिखाई देता है। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि सागर की लहरें किनारे से टकरा कर लौट तो जाती है, लेकिन हार कर नहीं, वे फिर जाती हैं, फिर कोशिश करती हैं। शायद इसी में जीवन का सबसे सुंदर संदेश छिपा है, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। एक साथी लिख रहे हैं कि आज विश्व महासागर दिवस हमें यह याद दिलाता है कि स्वस्थ महासागर ही स्वस्थ पृथ्वी और उज्जवल भविष्य की नींव है। बढ़ते प्रदूषण, प्लास्टिक कचरे और जलवायु परिवर्तन के कारण महासागर संकट का सामना कर रहे हैं, इसलिए उनका संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। हमें समुद्र को स्वच्छ रखने, प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने का संकल्प लेना चाहिए। जी हाँ, ये सबसे जरूरी बात है कि ऐसी चीजों का उपयोग हम कम करें या ना करें जिनसे ये जो जलाशय हैं हमारे, ये प्रदूषित हो रहे हैं। और दूसरी बात, जब आप घूमने के लिए जाएं तो प्लास्टिक का बहुत सारा कचरा और गंदगी वहां पर फेंक करके ना जाएं, क्योंकि दूसरे भी तो सैलानी वहां आने वाले हैं ना देखने के लिए, और वो जब देखेंगे इस गंदगी को तो उन्हें फिर कहां आनंद आएगा। और वैसे भी इन चीजों से, प्लास्टिक से या गंदगी से, वो जलाशय जब गंदे होते हैं, प्रदूषित होते हैं, तो जब हम दोबारा जाएंगे तो क्या देखेंगे, या हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो क्या देख पाएगी, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। क्योंकि अगर ये गंदे हो गए तो ये हमारे दिल को बहला नहीं पाएंगे। दिल दिया दर्द लिया, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज, शकील बदायूनी की बोल, संगीत नौशाद का।

दिल दिया दर्द लिया इस फिल्म का गाना दिलीप कुमार पर यह गाना फिल्माया गया है। एक हमारे साथी की बात है कि समुद्र सागर या फिर महासागर मनुष्य की जीवन शैली को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। ये मात्र विशाल जलराशि का स्रोत नहीं है बल्कि असीम धैर्य स्थिरता और जीवन चक्र को प्रतीकात्मक रूप से प्रेरित करते हैं। सागर की लहरें चाहे कितनी भी उग्र हो सागर की गहराई उतनी ही शांत और गंभीर होती है जो एक संदेश देती है। मनुष्य के जीवन में कितनी भी उथल पुथल हो जीवन का उतार चढ़ाव में संयम और धैर्य रखें, मन को विचलित न होने दें। समुद्र के सामने मनुष्य का अस्तित्व उसकी एक बूंद के बराबर है। समुद्र की विशालता हमें अहंकार मुक्त होकर प्रकृति के प्रति विनम्र रहने की प्रेरणा देती है। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि नीले जल में छिपे हैं कितने अनकहे राज, लहरों की जुबान पर बस प्रकृति का साथ। शाम ढले जब सूरज समंदर में खो जाता है, हर कतरा तब प्रेम का दीप जलाता है। सीप की खामोशी में मोती का जन्म होता है, दर्द सहकर भी जीवन अनुपम कर्म होता है। मन के वेग को थाम लेती है ये लहरें, जैसे माँ की गोद में सो जाए सारी दहशतें। समुद्र कहता है बहते रहो, ठहरना मत, सपनों की राह में कभी बिखरना मत। प्रकृति का अटूट समर्पण यही कहता है, जो प्रेम में डूबा हो वही मोती बन पाता है। धन्यवाद आपका। और अब प्यार का सागर, इस फिल्म का गाना हम आपको सुनवाएंगे। आशा भोसले और मुकेश की आवाज़ें, प्रेम धवन का लिखा हुआ गाना, रवि का संगीत, कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है आप बताइए हमें।

राजेंद्र कुमार और मीना कुमारी पर फिल्माया गया ये गाना अभी हमने आपको सुनवाया। एक साथी की ये बात है कि जब हम सागर के किनारे अपने पैर डालकर बैठे तो वहां से हटने का दिल नहीं कर रहा था। दूर दूर तक पानी ही पानी, आती जाती लहर को हम देख रहे थे, मानो वो हमसे धीरे धीरे कुछ बोल रही हो, कुछ

प्यारे लाल का संगीत सुनिए। ये गीत कि जब हमारे घर के कोई व्यक्ति सात समुंदर पार जाते हैं तो हम क्या उम्मीद रखते हैं, यही ना कि चाहे जो भी हो बस आप सुरक्षित घर लौट आइए, घर लौट आइए।

एक साथी हमारे लिखने के सागर किनारे जो शाम होती है वो प्रकृति में सबसे मनमोहक और सुरमई सा रूप लेते हुए मनुष्य में एक कौतूहल उत्पन्न करती है, प्रतीत होती है। इस समय सागर में उठने वाली लहरें मानवीय भावनाओं जैसे प्रेम, विरह और शांति को बहुत ही मनोयोग से बयां करती है। ढलती हुई शाम को सूर्य जब लालिमा बिखेरता है और सागर में उठती लहरों से किरणें आर पार गुजरती हैं, तो मानो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने सागर का सोलह श्रृंगार कर दिया है। साथ ही नीला आसमां भी लालिमा बिखेरता है जो एक मनमोहक दृश्य बना देता है। एक साथी लिखने की महासागर केवल जल का विशाल भंडार नहीं है बल्कि प्रकृति की अनंत भावनाओं का प्रतीक भी है। इसकी अथाह गहराइयां हमें जीवन के रहस्यों का एहसास कराती है जबकि इसकी लहरें निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। महासागर प्रकृति का वो अनमोल उपहार है जो अपनी सुंदरता, शक्ति और शांति से हर हृदय को छू लेता है। धन्यवाद आपका। और अब मजेदार फिल्म का गाना एसपी बालसुब्रमण्यम और अलका याग्निक की आवाजों में समीर के बोल नदीम श्रवण का संगीत।

एक साथी लिखते हैं कि कुछ बातें गीतों की तरह होती है, जितना सुनो उतनी ही अच्छी लगती है, और कुछ रिश्ते लहरों की तरह जो दूर रहकर भी मन के किनारों को छूते रहते हैं। कुछ गीत भी ऐसे होते हैं जो मन के किनारों को छूते हैं। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना संकल्प फिल्म का गाना, कैफी आजमी के बोल, संगीत खय्याम का, आवाज किसकी है बताइए हमें।

जी हाँ, इन सागरों की गहराई को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ।

आज जिधर भी नजर जाती है सब दौड़ रहे हैं धन के पीछे, पद के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे। इस अंधी दौड़ में हमारा सुख चैन कहीं खो गया है। न जाने कितने लोग इस रैट रेस के कारण अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की बलि चढ़ा देते हैं। सारा धन और वैभव हमें मानसिक शांति नहीं पहुंचा सकता। इसके लिए तो संतोष रूपी धन की आवश्यकता होती है। सब कुछ झटपट पा लेने की बजाय संतोष के साथ थोड़ा थोड़ा संचय ही जीवन का मूल मंत्र हो।

कई बार हम देखते हैं कि रहने वाले तो एक दो ही हैं और कई कमरों का मकान है। आभूषण और धन इकट्ठा करने की मानो होड़ सी लगी है। सोचकर देखिएगा, हमारी आवश्यकता तो बेहद कम होती है और बाकी संचय तो हमारे ईगो को तुष्ट करने के लिए ही होता है ना? और इस चक्कर में हमारा जीवन पिसता रहता है। अगर हम संतोष धन को अपना लें तो हमारा परिवार सुखी परिवार लगेगा और अपना छोटा सा घर भी मानो सोने के

0: और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश की 98% आबादी तक है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस मौके पर आकाशवाणी को बधाई दी है।
1: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: प्रदेश से राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश केवट को उम्मीदवार घोषित किया है। इस सीट के लिए उनका कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन से मुकाबला होगा। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटें रिक्त होने जा रही हैं। इन 3 सीटों की पूर्ति के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन प्रक्रिया के तहत आज नामांकन प्रक्रिया का अंतिम दिन है। भाजपा पहले ही 2 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, जबकि 1 सीट के लिए कांग्रेस द्वारा घोषित उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। अब करते हैं मौसम का। प्रदेश के कई जिलों में प्री मानसून गतिविधियां जोर पकड़ चुकी हैं। जून के शुरुआती दिनों में ही प्रदेश में औसत से 65% से अधिक बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अब तक पूरे प्रदेश में औसतन आधा इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है, जबकि इस अवधि में सामान्य बारिश केवल 8.3 मिलीमीटर मानी जाती है। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि प्रदेश में मानसून 15 से 18 जून के बीच प्रवेश कर सकता है। वहीं आज प्रदेश के करीब आधे हिस्से में आंधी, गरज चमक और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जलगंगा संवर्धन अभियान के तीसरे चरण के अंतर्गत आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में लखुंदर नदी पर स्वच्छता एवं श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिवपुरी में कल 35वीं एनसीसी बटालियन के द्वारा आयोजित एनसीसी शिविर में कैडेटों ने रक्तदान किया। जबलपुर में बारिश से जलभराव की परेशानी से निपटने के लिए निगम आयुक्त ने आगामी 15 दिनों में नालों और नालियों की सफाई तथा जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर नर्मदापुरम के बनखेड़ी में साइकिल रैली का आयोजन कल किया गया। कटनी में पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूर्ण होने पर 30 जून तक लोक कल्याण मेलों का आयोजन किया जा रहा है। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी कर दी है। पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीएसई बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और क्रिकेट में भारत ने न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पहली पारी में 152 रन पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह न्यू मिडिल क्लास के रूप

0: देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस न्यू मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
2: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प सबका

0: बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी पहल ने कठिन परिस्थितियों में करोड़ों परिवारों को ताकत दी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। एक रिपोर्ट।
2: आयुष्मान भारत योजना देश के सभी नागरिकों को समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल इस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। योजना के तहत देशभर में 36,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना की शुरुआत के बाद से यह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव का आधार बनी है। इससे लोगों के इलाज पर होने वाला निजी खर्च कम हुआ है और वे सरकारी तथा निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
3: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्रीय निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और CBSE से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। जनहित याचिका में CBSE द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता।

0: निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमा सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में चार स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता जहांगीर खान को आज सुबह नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया। वो कथित रूप से नेपाल सीमा से भागने के प्रयास में था। आगे की पूछताछ के लिए उसे कोलकाता लाया जा रहा है। पिछले महीने की 21 तारीख को फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के सिलसिले में ये गिरफ्तारी हुई है। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करेगा। ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से 13 जून तक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये बैठक इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो, कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
2: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश के 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाए के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
4: आदा, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
5: Good evening, this is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9.
2: Aman Yadav ke saath Saqlain Akhtar, Akashvani Samachar, Delhi.
0: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
6: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है, 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: ये आकाशवाणी है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड को ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट।
1: ईरान और इसराइल के बीच हालिया सैन्य गतिविधियों ने अप्रैल से लागू संघर्ष विराम को चुनौती दी है। हाल के मिसाइल और सैन्य हमलों से क्षेत्रीय शांति भंग हुई है। ईरान ने कहा कि उसकी कार्रवाई लेबनान में इसराइली सैन्य अभियानों के जवाब में की गई एक सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया थी। वहीं इसराइल का दावा है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और भविष्य के संभावित हमलों को रोकना है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत की प्रक्रिया में लौटने की अपील की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघजी के साथ बातचीत की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान दूसरी पारी में चायकाल तक 5 विकेट पर 98 रन बनाकर खेल रहा है। भारत द्वारा फॉलो ऑन कराए जाने के बाद अफगानिस्तान 314 रन से पीछे है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं देश के सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना है आज और कल। इस फिल्म से आवाज मोहम्मद रफी की, साहिल लुधियानवी की बोल, संगीत है रवि का।

आज और कल फिल्म का ये गाना आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल और संगीत रवि का। सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब अगला जो गीत आपको सुनवा रहे हैं ये बहुरानी फिल्म का गाना लता मंगेशकर ने गाया है, साहिल लुधियानवी ने लिखा है और संगीत तैयार किया सी रामचंद्र ने।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा और मदन मोहन का संगीत बद्ध किया, ये गाना लता मंगेशकर ने गाया है। फिल्म का नाम अकेली मत जइयो।

0: भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
1: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार।

अब आपको जो गीत हम सुनवाने जा रहे हैं ये सुमन कल्याणपुर की आवाज में है, बी डी मिश्रा ने लिखा है, एस एन त्रिपाठी का संगीत है और फिल्म का नाम बीन का जादू।

आइए अब सुना जाए ब्लफ मास्टर फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गाना बेगाना फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, सपन जगमोहन का संगीत।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, कैप्टन शेरू। इस फिल्म का यह गाना सुमन कल्याणपुर ने गाया है, नक्श लायलपुरी के बोल और संगीत है एस मोहिंदर का। आप ये गीत सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए।

0: सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मेरा यानी मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: क्या हाल है?
2: बस वही जैसे आपने पूछा क्या हाल है, हमेशा की तरह हम कहते हैं बहुत अच्छे
1: हैं और उम्मीद करते हैं हमारे श्रोता भी बहुत अच्छे होंगे। ये बताइए जरा कि जब आप कहीं समंदर के किनारे जाती हैं तो लहरों में खूब मौज मस्ती करती होंगी निश्चित रूप से।
2: बिल्कुल।
1: फिर वहां जाती हैं तो क्या छोड़कर आती हैं और क्या लेकर आती हैं?
2: देखिए हम जो हैं उन बात का ध्यान रखते हैं कि पहली बात तो हम अपनी सावधानी का ज्यादा ध्यान रखते हैं। छोड़ने की बात से पहले हम ये देखते हैं कि हमें कितना लहरों के बीच में जाना चाहिए और कितना नहीं जाना चाहिए, तो उस हिसाब से हम जाते हैं। और रेत जो होती है ममता जी वो अक्सर आप जहां पैर रखेंगे दूसरा पैर आगे बढ़ाएंगे तो वहां खिसकती है रेत। तो अगर आप भूल से भी किसी पत्थर पर खड़े हो जाते हैं और जब आप पैर नीचे रखेंगे तो आपका पैर बहुत अंदर तक जाएगा, तो ये सावधानी हमें
1: बिल्कुल
2: बताई थी।
1: ये कहा जाता है ना कि आग और पानी का कोई भरोसा नहीं होता है, तो खास तौर से समंदर का तो बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। और जो जैसे कि मुंबई तटीय इलाका है और यहाँ पर बीच है और नियमित रूप से लोग आते जाते हैं तो यहाँ का मालूम है यहाँ के निवासियों को, और इतना गहरा भी नहीं गहरा समंदर यहाँ का। लेकिन बहुत सारे जगहों पर जहां पर महासागर की गहराई ज्यादा है और जो बहुत इंटीरियर बीच है वहां जब आप जाते हैं तो इन सब बातों का खास ख्याल रखना चाहिए कि आप बहुत अंदर तक पानी में ना जाए और कहीं पर रेत धसकती है। और कुछ ऐसे जगह खासतौर से रायगढ़ में एक जगह है दापोली जहां पर हमने देखा, हमने खुद देखा है कि वहां पर पैर रखिए तो आप एक जरा सा कुछ सेकंड के लिए खड़े होंगे तो आपके पैर मतलब घुटने तक रेत चली जाती है इतना तक। और कई बार गाड़ियां वहां पार्क की जाती हैं, गाड़ियां फंस जाती हैं और ये बाकायदा इंसिडेंट होते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि आप कहां जहां जा रहे हैं पहले वहां के बारे में सावधानी और नियमावली पढ़ लें उस जगह के बारे में, उस समंदर के बारे में। और एक बात और है जो आप भी जानती होंगी कि वहां पर ढेर सारा कचरा छोड़कर ना आए, बताइए आप क्या कहेंगे?
2: क्योंकि हम देखते हैं कि वहां पर लोग घर से या तो खाने के लिए कुछ चीजें ले जाते हैं या वहां से परचेज करके खाते हैं, जो छोटी छोटी दुकानें लगी रहती है तो उसमें जो पॉलिथीन चीज जैसी चीज होती है या आपने दोने में कोई चीज खाई है तो वो सब वहीं पे छोड़ के चले आते हैं, तो वो वापस समुद्र में जाते हैं जो उसको दूषित कर देता है पानी
1: और आपको वापस देता भी है,
2: वापस पलट के वो लहरों के थ्रू वापस आता भी है।
1: तो ये कहने का मतलब है कि आप मुझे जो दोगे मैं वही वापस करूंगा।
2: हाँ,
1: मतलब समंदर ये एक तरह से मूक भाषा में ये कहता है,
2: संदेश देता।
1: तो ये मत करिए, जब आपको मालूम है कि आपने पैर डाला पानी में और एक पॉलीथिन फंस गया और एक कचरा कागज का टुकड़ा या कुछ भी आ गया तो बहुत बुरा सा लगता है ना, आपको डर भी लगता है कि कहीं कोई कीड़ा तो नहीं आ गया, मछली तो नहीं आ गई।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे आपने कहा कि जैसा हम करेंगे जैसा वो उसके साथ करेंगे वो भी वापस जवाब देता है, तो हमें इन सब की खूबसूरती को अगर देखने जाना है तो आप देखिए खाइए पीजिए, लेकिन आप उस कचरे को या तो आप अपने साथ किसी पॉलिथीन में पैकेट में झोले में रख के ले आइए अपने घर में आसपास जो आपका कचरा दान उसमें डालिए, या वहां पर भी रहते हैं कचरे के डिब्बे तो आप उसमें डालिए, वहां समुद्र के वातावरण को उसके किनारे को उसकी सुंदरता को नष्ट नहीं करिए।
1: और बारिश के मौसम में समंदर के हर बीच पर बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। मुंबई में भी खासतौर से एक बीच है अक्सा बीच जो कहा जाता है, वो थोड़ा सा गहरा है तो वहां पर हर साल बारिश में दुर्घटनाएं घटित होती हैं और ये कहा जाता है। और उस वहां पर जो युवाओं का झुंड है अक्सर जाता है
2: जी,
1: और हर साल कुछ न कुछ हादसे होते हैं। तो प्लीज अपनी जिंदगी का ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें कि कितनी अनमोल है जिंदगी। और आज विश्व सागर दिवस पर ये जो बातें हम चर्चा कर रहे हैं, हम कहते हैं कि हमारे श्रोताओं के कुछ अनुभव होंगे, खट्टे मीठे अनुभव साझा करें बजाय ये लिखने की हमने बहुत सारी बातें तो साझा कर दी है और कोई एक तरह की टिप्पणी हमारे श्रोता लिख रहे हैं तो उसकी बजाय अपने अनुभव साझा करें, हम आप तक पहुंचाएंगे। अब क्या करें हम?
2: अब गीत सुना दीजिए।
1: चलिए सुनते हैं गाना।

तो ममता जी हम पहले विषय बता देते हैं कि हम बात करेंगे व्यंजन में मथुरा की दाल और आलू की कचौड़ी जो प्रसिद्ध है उसके बारे में, और एक विषय हमारा है तपाक से बोलने की आदत।

0: आइए सुनते हैं कथा सुधा कहानी आभूषण इसका भाग दो।
1: कथा सुधा भाव भरी कहानियों का सागर जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। पिछली कड़ी में आपने सुना
2: शीतला के पति का नाम विमल सिंह था। उनके पुरखे किसी जमाने में इलाकेदार थे, लेकिन अब इस घर की दशा हीन हो गई है। सुरेश सिंह के पिता जमींदार के काम में दक्ष थे। विमल के पास सवारी का टट्टू भी न था। उसे दिन में दो बार भोजन भी मुश्किल से मिलता था। उधर सुरेश के पास हाथी, मोटर और कई घोड़े थे। 10-5 बाहर के आदमी नित्य द्वार पर पड़े रहते थे, पर इतनी विषमता होने पर भी दोनों में भाईचारा निभाया जाता था। सुरेश विद्या प्रेमी थे। हिंदुस्तान में ऊंची शिक्षा प्राप्त करके वो यूरोप चले गए और सब लोगों की शंकाओं के विपरीत वहां से आर्य सभ्यता के परम भक्त बनकर लौटे। पहले वो घर वालों के बहुत जोर देने पर भी विवाह करने को राजी नहीं हुए थे, पर यूरोप से लौटने पर उन्होंने उसी पहले की कन्या से बिना उसके आचार विचार जाने हुए विवाह कर लिया। उसी सौभाग्यवती वधु को देखने के लिए आज शीतला अपनी सास के साथ सुरेश के घर गई थी। उसी के आभूषणों की छटा देखकर वो मर्माहत सी हो गई। विमल सिंह ने घर से निकल जाने की ठानी। निश्चय किया, या तो इसे गहनों से ही लाद दूंगा या वैधव्य शोक से। या तो आभूषण ही पहनेगी या सिंदूर को भी तरसेगी। वो पहले कलकत्ते गया। वहां जो सुन पाया कि रंगून में मजदूरी अच्छी मिलती है, तो वो रंगून जा पहुंचा और बंदर पर माल चढ़ाने उतारने का काम करने लगा। विमल उन गिनती के 2-4 मजदूरों में था जो संयम से रहते थे, जिनके जीवन का उद्देश्य खा पी कर मर जाने के सिवा कुछ और भी था। थोड़े ही दिनों में उसके पास थोड़ी सी संपत्ति हो गई। संयम और आचार सम्मान सिद्धि के मंत्र हैं। विमल मजदूरों का नेता और महाजन हो गया। कुंवर सुरेश सिंह की नव वधु मंगला कुमारी गृह कार्य में निपुण, पति के इशारे पर प्राण देने वाली अत्यंत विचारशीला, मधुर भाषिणी और धर्म भीरू स्त्री थी, पर सौंदर्य विहीन होने के कारण पति की आंखों में कांटे के समान खटकती थी। धीरे धीरे पति पर से उसकी श्रद्धा उठने लगी। उसने तर्क किया कि ऐसे क्रूर हृदय शून्य कल्पनाहीन मनुष्य से मैं भी उसी का सा व्यवहार करूंगी। जो पुरुष रूप का भक्त है वो प्रेम भक्ति के योग्य नहीं। इस प्रत्याघात ने समस्या और भी जटिल कर दी।
1: आइए सुनते हैं इस कहानी की दूसरी कड़ी।
2: मंगला को केवल अपनी रूपहीनता का ही रोना न था, शीतला का अनुपम रूप लालित्य भी उसकी कामनाओं का बाधक था, बल्कि ये उसकी आशा लताओं पर पड़ने वाला तुषार था। मंगला सुंदरी न सही, पर पति पर जान देती थी। जो अपने को चाहे उससे हम विमुख नहीं हो सकते। प्रेम की शक्ति अपार है, पर शीतला की मूर्ति सुरेश के हृदय द्वार पर बैठी हुई मंगला को अंदर न जाने देती थी, चाहे वो कितना ही वेश बदल कर आवे। सुरेश इसी मूर्ति को हटाने की चेष्टा करते थे, उसे बलात् निकाल देना चाहते थे। किंतु सौंदर्य का आधिपत्य धन के आधिपत्य से कम दुर्निवार नहीं होता। जिस दिन शीतला इस घर में मंगला का मुख देखने आई थी, उसी दिन सुरेश की आंखों ने उसकी मनोहर छवि की एक झलक देख ली थी। वो एक झलक मानो एक क्षणिक क्रिया थी, जिसने एक ही धावे में समस्त हृदय राज्य को जीत लिया, उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। सुरेश एकांत में बैठे हुए शीतला के चित्र को मंगला से मिलाते ये निश्चय करने के लिए कि उनमें क्या अंतर है, एक क्यों मन को खींचती है, दूसरी क्यों उसे हटाती है, पर उसके मन का यह खिंचाव केवल एक चित्रकार या कवि का रसास्वादन मात्र था। वो पवित्र और वासनाओं से रहित था। वो मूर्ति केवल उसके मनोरंजन की सामग्री मात्र थी। वो अपने मन को बहुत समझाते, संकल्प करते कि अब मंगला को प्रसन्न रखूंगा, यदि वो सुंदर नहीं है तो उसका क्या दोष, पर उनका यह सब प्रयास मंगला के सम्मुख जाते ही विफल हो जाता था। वो बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से मंगला के मन के बदलते हुए भावों को देखते थे, पर एक पक्षाघात पीड़ित मनुष्य की भांति घी के घड़े को लुढ़कते हुए देखकर भी रोकने का कोई उपाय न कर सकते थे। परिणाम क्या होगा ये सोचने का उन्हें साहस ही न होता था। पर जब मंगला ने अंत को बात बात में उनकी तीव्र आलोचना करना शुरू कर दिया, वो उनसे उच्छृंखलता का व्यवहार करने लगी, तो उसके प्रति उनका वो उतना सौहार्द भी विलुप्त हो गया। घर में आना जाना छोड़ दिया।

0: एक दिन संध्या के समय बड़ी गर्मी थी, पंखा झलने से आग और भी दहकती थी। कोई सैर करने बगीचे में भी न जाता था। पसीने की भांति शरीर से सारी स्फूर्ति बह गई थी, जो जहां था वही मुर्दा सा पड़ा था। आग से सेके हुए मृदंग की भांति लोगों के स्वर कर्कश हो गए थे। साधारण बातचीत में भी लोग उत्तेजित हो जाते थे, जैसे साधारण संघर्षण से वन के वृक्ष जल उठते हैं। सुरेश सिंह कभी चार कदम टहलते फिर हांफकर बैठ जाते थे। नौकरों पर झुंझला रहे थे कि जल्द जल्द छिड़काव क्यों नहीं करते। सहसा उन्हें अंदर से गाने की आवाज सुनाई दी।
1: पहला पहला प्यार।

0: बात है। मुहरे पे डाले हुए जुल्फों की बदली।
1: चौंकी, फिर क्रोध आया। मधुर गान कानों को अप्रिय जान पड़ा।
2: ये क्या बेवक्त की शहनाई है, यहाँ गर्मी के मारे दम निकल रहा है और इन सबको गाने की सूची है।
3: रूप सुहाना लगता,
2: मंगला ने बुलाया होगा और क्या। लोग नाहक ही कहते हैं कि स्त्रियों का जीवन का आधार प्रेम है, उनके जीवन का आधार वही भोजन, निद्रा, राग रंग, आमोद प्रमोद है जो समस्त प्राणियों का है। घंटे भर तो सुन चुका, ये गीत कभी बंद होगा भी या नहीं। सब व्यर्थ में गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है।
1: अंत को न रहा गया, जनान खाने में आकर बोले,
2: ये तुम लोगों ने क्या कांव-कांव मचा रखी है, हाँ? ये गाने बजाने का कौन सा समय है, बाहर बैठना मुश्किल हो गया।
1: सन्नाटा छा गया, जैसे शोरगुल मचाने वाले बालकों में मास्टर पहुंच जाए। सभी ने सिर झुका लिए और सिमट गईं। मंगला तुरंत उठकर सामने वाले कमरे में चली गई, पति को बुलाया और आहिस्ते से बोली,
4: अरे क्या बात है, इतना क्यों बिगड़ रहे हो आखिर।
2: मैं इस वक्त गाना नहीं सुनना चाहता।
4: तुम्हें सुनाता ही कौन है, क्या मेरे कानों पर भी तुम्हारा अधिकार है।
2: फजूल की मचमच,
4: तुमसे मतलब।
2: मैं अपने घर में ये कोलाहल न मचने दूंगा।
4: तो मेरा घर कहीं और है।
2: इन सबसे कह दो फिर किसी वक्त आए।
4: हाँ हाँ, इसलिए कि तुम्हें इनका आना अच्छा नहीं लगता है ना।
2: ओहो हाँ हाँ हाँ, इसीलिए।
4: तुम क्या सदा वही करते हो जो मुझे अच्छा लगे। तुम्हारे यहाँ मित्र आते हैं, हंसी ठट्ठे की आवाज अंदर सुनाई देती है। मैं कभी नहीं कहती कि इन लोगों का आना बंद कर दो। तुम मेरे कामों में दखलअंदाजी क्यों करते हो भला।
2: इसलिए कि मैं घर का स्वामी हूँ।
4: स्वामी हूँ, स्वामी हूँ, तुम बाहर के स्वामी हो, यहाँ इस घर में मेरा अधिकार है।
2: क्यों व्यर्थ की बकबक करती हो, मुझे चिढ़ाने से क्या मिलेगा तुम्हें, हाँ?
4: अच्छी बात है, जब इस घर में मेरा कोई अधिकार नहीं तो मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। अब तक भ्रम में थी, आज तुमने वो भ्रम मेरा मिटा दिया। मेरा इस घर पर अधिकार कभी था ही नहीं। जिस स्त्री का पति के हृदय पर अधिकार नहीं, उसका उसकी संपत्ति पर भी कोई अधिकार नहीं हो सकता।
2: अरे सुनो, बात का बतंगड़ क्यों बनाती हो, मेरा ये मतलब नहीं था। कुछ का कुछ समझ गई तुम तो।
4: मन की बात आदमी के मुंह से अनायास ही निकल जाती है। सावधान होकर हम अपने भावों को छिपा लेते हैं।
1: सुरेश को अपनी असज्जनता पर दुख तो हुआ, पर इस भय से कि मैं इसे जितना ही मनाऊंगा उतना ही ये और भी जली कटी सुनाएगी, उसे वहीं छोड़कर बाहर चले आए।

प्रातःकालीन ठंडी हवा चल रही थी। सुरेश खुमारी में पड़े हुए स्वप्न देख रहे थे कि मंगला सामने से चली जा रही है। चौंक पड़े, देखा द्वार पर सचमुच मंगला खड़ी है। घर की नौकरानियां आंचल से आंसू पोंछ रही हैं। कई नौकर आसपास खड़े हैं। सभी की आंखें सजल और मुख उदास है, मानो बहु विदा हो रही है। सुरेश समझ गए कि मंगला को कल की बात लग गई, पर उन्होंने उठकर कुछ पूछने की, मनाने की या समझाने की चेष्टा नहीं की। ये मेरा अपमान कर रही है, मेरा सिर नीचा कर रही है। जहां चाहे जाए, मुझसे कोई मतलब नहीं। यूं बिना कुछ पूछे गाछे चले जाने का अर्थ यह है कि मैं इसका कोई नहीं, फिर मैं इसे रोकने वाला कौन? वो यूं ही जड़वत पड़े रहे और मंगला चली गई, उनकी तरफ मुंह उठाकर भी नहीं।

0: पांव पैदल चली जा रही थी। एक बड़े तालुकेदार की औरत के लिए ये मामूली बात न थी। हर किसी को हिम्मत न पड़ती थी कि उससे कुछ कहे। पुरुष उसकी राह छोड़कर किनारे खड़े हो जाते थे। नारियां द्वार पर खड़ी करुण कौतूहल से देखती थी। इस गांव से निकलकर मंगला उस गांव में पहुंची जहां शीतला रहती थी। शीतला सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो गई और मंगला से बोली,
1: मंगला बहन, जरा अंदर आकर दम ले लो। ये क्या हुआ?
2: शीतला बहन, जो भाग्य में लिखा था वही हुआ, और क्या।
1: कुंवर जी से कुछ कहा सुनी हुई क्या?
2: मुंह से कुछ न कहने पर भी तो मन की बात छिपी नहीं रहती ना।
1: अरे तो क्या अब यहाँ तक नौबत आ गई है?
2: चाहती तो अब भी वहीं पड़ी रहती, उसी घर में जीवन कट जाता। पर जहाँ प्रेम नहीं, पूछ नहीं, मान नहीं, वहाँ नहीं रह सकती मैं।
1: तुम्हारा मैका कहाँ है?
2: मैं के कौन मोले को जाऊंगी मैं बिना?
1: अरे तो तब कहाँ जाऊंगी?
2: ईश्वर के दरबार में, ईश्वर के दरबार में पूछूंगी कि तुमने मुझे सुंदरता क्यों नहीं दी, बदसूरत क्यों बनाया। बहन, स्त्री के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की बात नहीं कि वो रूपहीन हो। शायद पहले जन्म की पिशाचिनियां ही बदसूरत औरतें होती हैं। रूप से प्रेम मिलता है और प्रेम से दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है।
0: ये कहकर मंगला उठ खड़ी हुई। शीतला ने उसे रोका नहीं। सोचा,
1: इसे क्या खिलाऊंगी, आज तो चूल्हा जलने की भी कोई आशा नहीं।
0: मंगला के जाने के बाद शीतला बहुत देर तक बैठी सोचती रही,
1: मैं कैसी अभागिन हूं जिस प्रेम को न पाकर ये बेचारी जीवन को त्याग रही है। उसी प्रेम को मैंने पांव से ठुकरा दिया। इसे जीवर की क्या कमी थी? क्या ये सारी जड़ाऊ जीवर इसे सुखी रख सके? इसने उन्हें पांव से ठुकरा दिया। उन्हीं आभूषणों के लिए मैंने अपना सर्वस्व खो दिया। हाँ, ना जाने वो कहाँ है, किस दशा में है।
0: अपनी लालसा को, तृष्णा को वो कितनी ही बार धिक्कार चुकी थी। मंगला की दशा देखकर आज उसे आभूषणों से घृणा हो गई।
3: मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण की दूसरी कड़ी आपने सुनी। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रकर, मंगला, ममता सिंह। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। आज आपने इस कहानी की दूसरी कड़ी सुनी। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी आगे कहाँ पहुँचती है, जानने के लिए जरूर सुने कथा सुधा में तीसरी कड़ी अगले हफ्ते।

0: विविध भारती से यह कार्यक्रम सखी सहेली
1: और हम बात करने वाले हैं धरती की धड़कने महासागर क्योंकि आज है विश्व महासागर दिवस। विश्व महासागर दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है और महासागर वातावरण को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सूर्य की ऊष्मा को अपने भीतर समाहित कर तापमान को नियंत्रित करते हैं। यदि महासागर न हो तो धरती पर कहीं अत्यधिक गर्मी और कहीं असहनीय ठंड हो जाती है। वर्षा चक्र भी महासागरों के कारण ही संभव है और समुद्र से उठती जल वाष्प बादलों का रूप लेकर खेतों, जंगलों और नदियों को जीवन देती है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। महासागर जैव विविधता का अनमोल खजाना है। लाखों तरह के जीव जंतु वनस्पतियां समुद्र में निवास करती हैं और छोटी मछलियों से लेकर विशाल व्हेल तक हर जीव समुद्री जीवन की अद्भुत दुनिया का हिस्सा है। करोड़ों लोगों की आजीविका भी महासागरों पर निर्भर होती है। कितने सारे लोग मछली पकड़ने जाते हैं, पूरी आजीविका उन पर टिकी होती है। आप तो यहीं मुंबई जहां विविध भारती का स्टूडियो स्थित है यहां के तमाम बीच पर जाइए तो मछलियां सूखती रहती हैं, तो ये उनकी आजीविका का स्रोत है। और जरा उनके बारे में सोचिए कि जो मछुआरे कई कई दिन तक मछली पकड़ने के लिए अपनी छोटी सी नैया लेकर चले जाते हैं बहुत दूर तक और कई बार तूफान आ जाता है तो उन तूफानों से लड़ते हैं। तो जब हम समंदर में सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं तो इन बातों का भी ख्याल रखें कि हम जब सागर हमें इतना कुछ दे रहा है तो हम भी सागर के लिए कुछ कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है, कि उसकी सुरक्षा साफ सफाई का ख्याल रख सकते हैं।
1: बिल्कुल। और मछली तो वहां पर मिलती ही मछली पालन भी किया जाता है लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे बहुत ही बहुमूल्य रत्न भी समुद्र से महासागरों से पाए जाते हैं।
0: तेल मिलता है जिससे बहुत बड़ा स्रोत है हम सब
1: ईंधन का साधन है और व्यापार और पर्यटन और परिवहन जैसे अनेक कार्य समुद्रों के कारण ही चलते हैं। और इसका जो इतना महत्व होने के बावजूद भी ममता जी आज महासागर संकट में है। प्लास्टिक, प्रदूषण, तेल रिसाव, अत्यधिक मछली पकड़ना और जलवायु परिवर्तन समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। समुद्र का बढ़ता जलस्तर तटीय क्षेत्रों के लिए खतरा बनता जा रहा है। यदि हम समय रहते नहीं जाग गए तो इसका प्रभाव पूरी

0: मानव सभ्यता पर नजर आएगा।
1: बिल्कुल, हमारी एक सखी हैं जिन्होंने लिखा है कि समंदर, नदियों और तालाब में गजब का आकर्षण छिपा है। ये सब प्रकृति के महत्वपूर्ण उपादान हैं। रात जब चंद्रमा बजाता है बांसुरी, समुद्र में ही नहीं नदियों, तालाब और जहां जहां पानी है वहां उठती है फेनिल हिलोरे और मन की आंतरिक सतह में एक मीठा झरना गुनगुनाने लगता है। क्या बात है, रात चांदनी की जब बात कही तो चांदनी रात में समंदर के किनारे बैठना, समंदर के किनारे सैर करना बहुत सुहाता है। हालांकि रात में समंदर का शोर डराता भी है मन को, लेकिन सुखद भी लगता है।
0: ऐसा लगता है कि वो जब उसके किनारे आप टहल रहे होंगे तो लगेगा लहरें आपको पीछे से घेर लेती, ऐसा लगता है वो दृश्य।
1: इसी तरह की बात हमारी एक और सखी लिख रही है कि आसमानी रंग को अपने तन पर समेटे हुए सुंदरता को बिखेरता हुआ नजर आता है जो मनमोहिनी का काम करता है। उसकी अपार सुंदरता बरबस ये आकर्षित करती है। दूध सी आती शुभ्र उर्मी जब पैरों से टकराती है तो ऐसा लगता है किसी ने पांव में पायल बांधी और नूपुर बज उठते हैं। उससे निकलता संगीत मन को गहराई तक छू जाता है। क्या बात है भाई, आज तो हमारी बड़ी ललित भाषा में ये बातें लिख रही हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, शुक्रिया अदा करते हैं
0: जी। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि महासागर धरती की धड़कन की तरह है जो पूरी पृथ्वी के जीवन को संतुलित बनाए रखते हैं। विशाल और गहरे महासागर न केवल प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं बल्कि जलवायु को नियंत्रित करने, वर्षा लाने और असंख्य जीवों को जीवन देने का कार्य भी करते हैं। समुद्र की लहरों की मधुर आवाज मन को शांति देती है और हमें प्रकृति की अपार शक्ति का एहसास कराती है। धरती पर जीवन का आधार माने जाने वाले महासागर मानव, पशु पक्षियों और पर्यावरण के लिए अनमोल धरोहर है। इसलिए हमें महासागरों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने का संकल्प लेना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनकी महिमा के महत्व को समझ सके।
1: बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। और मंजरी जी, आपने समुद्र एक संदेश भी देता है, उस संदेश को कभी सुना है? जब हम बहुत ध्यान से समुद्र की लहरों को उठती गिरती देखें तो एक संदेश होता है। हम सब ये महसूस करते हैं कि एक बार उठना और गिरना ये इंसान की भी फितरत होती है। तो जब बहुत ऊंचाई पर जाएं तो कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए। कुछ इसी तरह की बात हमारे एक श्रोता भी लिख रहे हैं, हमारे सखा है ये। इन्होंने लिखा है कि समुद्र की धड़कनों से उसकी अनंत गहराई मनुष्य को जीना सिखाती है। इतनी ऊंची लहरें मन को सुकून तो देती हैं, ये कहती हैं कि जरूरत से ज्यादा, सीमा से ज्यादा ऊंचा उठना भी एक दिन वापस आना बताती है। बहुत सी चीजें हमें देती हैं लेकिन हम सब जाएं तो वहां स्वच्छता, साफ सफाई जरूर रखें। ये एक बात है कि ये कहा जाता है कि जब हम बहुत ऊंचाई तक ये उड़ते हैं लोग, मतलब ऊंचे ख्वाब देखते हैं और ये अपनी जड़ों को, जमीन को भूल जाते हैं, तब ये बात हम कहते हैं कि ज्यादा मत उड़ो, जब गिरोगे तो चोट ज्यादा लगेगी, है ना।
0: जब आप तो ये बात कह रही थी ममता जी, तो मेरी जो सोच थी वो चली गई थी आपके ऊपर कि आप जो साहित्य लिखती हैं, साहित्य की दृष्टि, आपकी जो कलम चलती है, तो उस नजरिए से आपने बहुत बड़ी बात कही थी इसमें कि लहरें ऊपर भी उठाती हैं और नीचे भी गिराती हैं।
1: शुक्रिया मंजरी जी। लेकिन ये जब हम किसी भी जगह जाते हैं
0: जी,
1: तो बजाय सिर्फ मौज मस्ती के गाना बजाना और खाना पीना करने के बजाय हम प्रकृति के उन नजारों को ध्यान से देखें, अपनी आंखों से देखें, उसे महसूस करें, आत्मसात करें, तो बहुत सारी बातें अपने आप समझ में आती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वो हमी से जुड़ी हुई हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं। इस तरह हमारे एक साथी भी लिखते हैं कि महासागर प्रकृति की अनमोल देन है, वे केवल पानी का विशाल विस्तार नहीं बल्कि धरती पर जीवन को बनाए रखने वाली शक्ति है। उनकी अथाह गहराई में असंख्य जीवों का संसार बसता है और उनकी लहरें प्रकृति के निरंतर प्रवाह का संदेश देती है। महासागर हमारे मौसम को संतुलित रखते हैं, वर्षा में सहायक होते हैं, मानव जीवन के लिए अनेक संसाधन प्रदान करते हैं। इनकी स्वच्छता और सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। यदि महासागर स्वस्थ रहेंगे तो धरती भी स्वस्थ और जीवन से भरपूर रहेगी और इनको स्वस्थ रखने में हम सभी को ही अपना योगदान देना चाहिए।
1: उफ, इतनी सारी टिप्पणियां हैं मंजरी जी, क्या कहें, लेकिन हम बहुत लंबी लंबी टिप्पणियां हैं तो शॉर्ट में पढ़ देते हैं दो टिप्पणी एक साथ। महासागर को एक सखा है हमारे लिख रहे हैं, महासागर को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है और दिल की धड़कन, जो इस ग्रह के मौसम, जलवायु और जीवन को नियंत्रित करते हैं। अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो पृथ्वी के गर्भ में एक रहस्यमय धड़कन हर 26 सेकंड में सूक्ष्म कंपन का स्रोत अटलांटिक महासागर की लहरों को ही माना जाता है। महासागर एक विशाल कार्बन सिंक है जो हमारे वायुमंडल से करीब 25% कार्बन डाइऑक्साइड को अवशेषित कर लेता है। और एक हमारे श्रोता है, इन्होंने लिखा है कि विविध भारती के सभी

0: को नमस्कार। और एक श्रोता ने लिखा है कि महासागर न केवल पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक हिस्से को कवर करता है, बल्कि ये हमारी जलवायु को नियंत्रित करता है। हमारे ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है और ग्रह के जल चक्र को बनाए रखता है। महासागर हमारे पारिस्थितिकी तंत्र और जीवन के लिए आवश्यक है। ये एक जीवन रेखा है।
1: और एक हमारे साथी और लिखते हैं कि अक्सर ये बात कही या सुनी जाती है कि दिल सागर जैसा विशाल रखिए। सागर जो हमें अपार सहनशीलता या विशाल दृष्टिकोण और निस्वार्थ प्रेम सिखाता है। इस धरती की हर गंदगी अपने में समाकर खुद खारा यानी नमकीन बन जाता है। बदले में कड़ी धूप और गर्मी सहन करते हुए जल से बादल बनाकर बरसात द्वारा हमें मीठा पानी देता है। मतलब खुद जहर पीकर हमें अमृत देता है। जैसे मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। जीना उसी का जीना है जो
0: क्या
1: औरों का
0: बात
1: जीवन
0: है। अब
1: देता है।
0: देखते हैं कि आनंद बख्शी साहब ने इस गाने में समंदर के बारे में क्या लिखा है। लता मंगेशकर ने स्वर दिया है और सचिन देवबर्मन ने संगीत दिया। फिल्म बारूद।

0: संगीत तैयार किया था।
1: देखिए मैं कुछ कहने वाली हूं,
0: आपने मुझे बोले नहीं तो काट दिया।
1: देखो यही तो बात होती है ना कि क्या हम
0: तपाक से,
1: तपाक से
0: मतलब ये तपाक से बोलना हुआ,
1: तपाक से बोलना हुआ।
0: लेकिन कई बार जरूरी बात रह जाती है ना तपाक से बोलने पर।
1: बिल्कुल सही बात है, और तपाक से इसीलिए कई बार जब ऐसे बोला ना कि तपाक से बोल दिया तो उसका अंजाम भी बहुत गलत हो जाता है।
0: नहीं कई बार सही तो हो जाता है,
1: कई बार सही हो जाता है।
0: जैसे अभी हम तो तपाक से बोलने की बात पर हमें बतियाना था तो आपने तो सही किया,
1: लेकिन
0: आप घबरा गई।
1: हमें लगा कहीं तपाक से बोले तो कहीं गलत ना असर पड़ जाए। तो ऐसा कई बार हो भी जाता है कि हम ना चाहते हुए भी बोल जाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। हाँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ममता जी कि मतलब वो
0: अच्छी बात बोल देते हैं, कोई जानकारी होती है और वो तपाक से बोल देते हैं कि ये नहीं ये ऐसा था।
1: बिल्कुल, और कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बिना सोचे समझे, बस चार लोग खड़े हैं और वो लोग बात कर रहे हैं, मालूम पड़ा आपने बिना सोचे समझे कि उनकी बात का क्या है मतलब है, कहाँ हमें बोलना नहीं चाहिए कहाँ बोलना है, वो तपाक से बोल देते। फिर उसका असर जो तीन सुन रहे होते, चार के बीच में आपने चौथे आपने बोल दिया, जो तीन सुन रहे हैं तो उनको बड़ा लगता है अरे ये क्या बात कर दी इसने। मतलब किसी का आप कटाक्ष भी कर देते तपाक से बोलने वाले, कभी कभी ऐसे लोग होते हैं तो इसका नुकसान भी होता है, लोग गलत समझ सकते हैं। कभी कभी सीधी बात सामने वालों को कठोर या बहुत ही अपमानजनक लग सकती है, और कभी कभी रिश्तों में तनाव भी आ जाता है, और हर व्यक्ति जो है वो सच सुनने के लिए तैयार भी नहीं होता है ममता जी। बिना सोच समझ कर कही गई बात रिश्तों में दूरी भी ला सकती है।
0: लेकिन हमारी एक सखी है, इन्होंने लिखा है कि मुझे तो तपाक से बोलने की आदत है, मुझे पता है कि अच्छी आदत नहीं है, लेकिन क्या करूं जब कोई गलत करता है तो अपने को मैं रोक नहीं पाती, अपने बातों से चतुर बनने की कोशिश करता है कोई तो मुझसे बोले बिना रहा नहीं जाता है, मैं बोल देती हूँ। भाई कोई गलत बात कह रहा है तो आपको बोलना ही चाहिए तपाक से।
1: बिल्कुल,
0: तो सामने वाले की गलती भी उजागर हो जाती है। और एक श्रोता ने लिखा

0: अपने को मैं रोक नहीं पाती, अपने बातों से चतुर बनने की कोशिश करता है कोई तो मुझसे बोले बिना रहा नहीं जाता है, मैं बोल देती हूँ भाई कोई गलत बात कह रहा है तो आपको बोलना ही चाहिए तपाक से,
1: बिल्कुल
0: तो सामने वाले की गलती भी उजागर हो जाती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी एक सखी है, इन्होंने लिखा है कि बड़ों ने कहा है, कुछ कहावत भी है कि कुछ भी बोलो तो पहले सोच समझ के फिर बोलो, तपाक से कुछ भी बोल जाने से हमारे मुंह से गलत निकल सकता है, किसी से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, किसी को दुख पहुंच सकता है, किसी का हम अपमान कर जाएंगे, सारी हानि हमें ही होगी, इसलिए बहुत सोच समझ के बोलो, तपाक से मत बोलो।
1: और हमारे साथी लिखते हैं कि तपाक से बोले शब्द तीर बन जाते हैं जो दिलों को पर वार करते हैं, जबकि सोच समझ कर बोले शब्द मोती होते हैं जो कभी चुभते नहीं बल्कि सजे हार बनकर रिश्तों को खूबसूरत बनाते हैं। और इसी तरह हमारे साथी और लिखते हैं कि अत्यधिक उत्तेजना व अहंकार में सामने वाले को तपाक से ऐसा कोई आप शब्द कटु शब्द ना बोले जिससे संबंधों रिश्तों में मतभेद कड़वाहट हो जाए, पहले तोले फिर बोले, नम्रता ममता भरे भाव मधुर बोले सभी जन से जिससे प्यार स्नेह बढ़ता है, इन्होंने ये बात लिख करके।
0: और हमारी सखी इन्होंने कहा है कि कुछ कह देना अक्सर बातचीत में गलतफहमी विवाद या सामने वाले को ठेस पहुंचाने का कारण बनता है, इसलिए इसे आमतौर पर एक अच्छी आदत नहीं मानी जाती, बिना सोचे बोले गए शब्दों में अक्सर सही संदर्भ की कमी होती है जिससे सामने वाला व्यक्ति आपकी बात का गलत अर्थ निकाल सकता है।
1: और हमारे एक साथी देखिए और भी लिखते हैं कि तपाक से बोलने की आदत हमारे व्यक्ति की विशेषता होती है, जहां लोग दिल की बात बिना लाग लपेट के कह देते हैं वहीं तपाक से बिना सोचे समझे बोली गई बात जिसमें उतावलापन रूखापन या दूसरों की बात काटने का उद्देश्य हो, मित्रों आपसी रिश्तों और कार्यस्थल पर मुश्किलें भी पैदा कर सकती है, लेकिन शिष्टता संयम और सम्मान के साथ तपाक से बोली गई बात आपको सम्मान के साथ आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व को दर्शाती है।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि जल्दबाजी अत्यधिक उत्साह या चिंता शामिल है तपाक से बोलने में, इसे एक बातूनी या वाचाल स्वभाव कहा जाता है, इस आदत को सुधारने और कम बोलने की आदत डालने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं, सुनने की आदत डालें, दूसरों की बात को ध्यान से सुने और बीच में न काटें। आज तो मंजरी जी ने हमें काटा बीच से कहा कि तपाक से बोलने के लिए, तो भाई मैं मान गई चुप हो गई और मैंने कहा कि हाँ क्या कहना चाहती है, तो कई बार पते की बात कहने के लिए भी काट दिया जाता है, तो अच्छी बात है कि अगर हम घड़ी की ओर देख रहे हैं कि हमें बहुत सारी बातें करनी है तो इसलिए एक दूसरे को काट कर अगर बोलते हैं तो वो अपनी जगह पर सही है।
1: बिल्कुल,
0: तो इनका कहना भी सही कि कुछ कहने से पहले 3-5 सेकंड का समय लें, सोच लें और उसके बाद मन को शांत करके बोलें और चिंता में और गुस्से में ना बोलें। और भी बहुत लंबी सी टिप्पणी इन्होंने लिखी है।
1: देखिए एक बड़ा मजेदार संदेश मिला है मुझे, ममता जी लिखते हैं कि तपाक से बोलने की आदत कुछ मर्दों में होती है लेकिन प्राय महिलाओं में ये आदत होती है, अच्छी तरह एक ऑटोमेटिक मशीन जैसी होती है। इन्होंने लिखा है
0: पड़ोसी का भी विश्लेषण किया है इन्होंने।
1: देखिए ना, पड़ोसी की पति से लड़ती पड़ोसन के तपाक से बोलने की आदत को ताज्जुब करता हूँ, कभी कभी हमारी भी ऐसी करती है, अब नहीं तो कहकर सर मैं उन्हें तकलीफ क्यों पहुंचाऊं।
0: अच्छा, वैसे झगड़े के वक्त तो शब्द अपने आप फूटते हैं ना, फटाफट फटाफट तपाक से ऐसे नॉर्मल बातचीत में कई बार लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन झगड़े के वक्त जो लोग बिल्कुल नहीं बोलते हैं देखा है कि वो भी बहुत तेजी से और फास्ट बोलने लगते हैं।
1: सही बात
0: तो ये
1: है।
0: क्या वजह है, हमें लगता है कि
1: बड़े बच्चे इसलिए बोल जाते हैं।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि तपाक से बोलने बिना सोचे समझे तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत अक्सर बातचीत में खटास डाल देती है। और भी कुछ कहना चाहती है?
1: नहीं, अब गीत सुन लेते
0: सुनते हैं।

0: आज नहीं तो कल कह लेंगे, लेकिन आप हम
1: कल ही कहना पड़ेगा,
0: तुरंत कहना पड़ेगा और तपाक से
1: जी।
0: तो तपाक से बताइए कौन सी रेसिपी तैयार की गई है आज?
1: बस हम तैयार करने वाले हैं मथुरा की आलू की खस्ता कचौड़ी, जिसे आलू की सब्जी के साथ भी खाते हैं और चटनी के साथ भी खाते हैं।
0: रेसिपी सिर्फ बता रहे हैं, बनाया भी है कभी, बनाती भी है?
1: नहीं, वैसे तो देखिए आलू की कचौड़ी और दाल की कचौड़ी तो सब घर में बनती है, लेकिन अब देखते हैं कि यहाँ के इसमें क्या खास बात है।
0: अरे आपने समझा ही नहीं, बनाने से मतलब है कि बना के खिलाया जाता है ना, अभी तो सिर्फ बनाया नहीं जाता है।
1: जी वो मैं जानती हूँ, आपके इशारे आपकी आंखों की जो चमक थी मैं समझ गई थी।
0: तो कौन सा व्यंजन आप बना रही
1: हैं? आलू की खस्ता कचौड़ी बताते हैं।
0: बताइए।
1: सामग्री है 2 कप मैदा, 4 बड़े चम्मच तेल या घी मोयन के लिए लेना है, 1/2 छोटा चम्मच नमक, गुनगुना पानी, आलू की ब्रावन के लिए आपको लेना है 2 या 4 उबले आलू लीजिए और हरी मिर्च बारीक कटी हुई 2, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच धनिया दरदरा लीजिए, साबुत धनिया लीजिएगा उसको दरदरा कर लीजिए, और 1/2 छोटा चम्मच हींग लेना है, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गर्म मसाला और 1 छोटा चम्मच अमचूर और नमक स्वाद के अनुसार, और 4 बड़े चम्मच तेल, थोड़ा सा हरा धनिया लेना है, तलने के लिए तेल भी आपको अलग से रखना है। और इसको बनाना है कि सबसे पहले मैदे में नमक मोयन डालकर अच्छी तरह इसको मिला लीजिए, और जब आपके हाथ से दबने लगे तो समझ लीजिए कि मोयन आपका रेडी सही लगा इसमें, और पानी डालकर थोड़ा सा इसको गूंथ लीजिए नरम नरम, और करीब 20 मिनट के लिए आप रखिए। अब आप एक कढ़ाई में तेल गर्म करिए, उसमें हींग सौंफ धनिया डालिए, हरी मिर्च डालिए और उबले आलू हाथ से तोड़कर डालें, सारे मसाले नमक डाल करके आप मिला लें अच्छे से, हरी धनिया भी आप इसमें डाल दीजिए, और मिश्रण सूखा और मसालेदार जब हो जाएगा तब आप उसको किनारे रख लें। अब कचौड़ी की जो आटा साना है उससे लोइयां बनाइए, उसमें आलू का भ्रावन भरिए और इसको आप हल्के से हाथ से दबाकर बेल लें, या फिर आप हथेली से दबाएं या बेलन से बेलें, और इसको आप सुनहरा सुनहरा धीमी आंच पर आप इसको तल लें, तो ये आपकी आलू की खस्ता कचौड़ियां तैयार हो जाएगी।
0: तो जब भी बनाना हो तो बना सकती है, और मंजरी जी बना के लाएंगी तो हमें जरूर खिलाएंगी, हम ये उम्मीद करते हैं। और अब तो हमने माइक्रोफोन पर कह दिया है ये बात,
1: बिल्कुल ये ताली भी नहीं जाएगी।
0: अब दाल की खस्ता कचौड़ी कैसे बनाएं ये भी आप जरा सुन लीजिए हमारे सारे श्रोताओं के साथ। दाल की खस्ता कचौड़ी के लिए भरावन के लिए पहले तो सामग्री बता दें, 1/2 कप धुली उड़द की दाल, 4-5 घंटे भिगोई हो जो, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच धनिया दरदरा कुटा हुआ और 1/4 छोटा चम्मच हींग, या हींग तो चुटकी भर अंदाजे से डाल सकते हैं, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला 1 छोटे चम्मच से मतलब चुटकी भर, और 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार 2 बड़े चम्मच तेल,

0: का प्रयोग कर सकते हैं। अब भरावन कैसे बनाएं? भीगी उड़द की दाल का पानी निकालकर दरदरा पीस लें। कढ़ाई में तेल गरम करें, हींग सौंफ और धनिया इसमें डालें। अब दाल मध्यम आंच पर भून लें, सारे मसाले नमक डालें, मिश्रण सूखा और खुशबूदार होने तक पकाएं, ठंडा होने दें। अब कचौड़ी बेलें, आटे की छोटी लोई बनाकर बीच में दाल के भरावन भरें और धीमी आंच पर तेल में तलें। इसको आलू की पतली सब्जी और चटनी के साथ खाएं, चाय के साथ भी खा सकते हैं
1: जी।
0: और अभी गाना सुनिए।

0: कई दिन कई रात फिल्म का गाना था, महेंद्र कपूर की आवाज थी। और अब घड़ी की ओर जरा देखिए, बिल्कुल भी वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाए या गाना सुनवाए। तो लेते हैं सभी श्रोताओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम के प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: नमस्कार दोस्तों, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के कार्यक्रम में दोस्तों, हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुंबई के सुप्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ और फिजिशियन डॉक्टर कुणाल मेहता से। इनसे हम बातचीत करेंगे जिसका विषय रहेगा मधुमेह कारण और बचाव। डॉक्टर कुणाल मेहता जी, विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार श्रोताओं, मुझे आज बेहद खुशी हो रही है कि मैं विविध भारती के इस माध्यम द्वारा आपसे बात करने का ये मुझे सुंदर मौका मिला है। हमारी जनरेशन वो जनरेशन है जो विविध भारती सुन के ही बड़ी हुई है। मैं महाराष्ट्र के एक छोटे गांव से बिलोंग करता हूं, जो विविध भारती सुनते ही बड़ा हुआ हूं, और अभी मुंबई में पिछले 10 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं।
0: डॉक्टर साहब, ये तो आपने परिचय दे दिया कि विविध भारती सुनते सुनते हमारी जनरेशन भी बड़ी हुई है। और देखिए, इसमें एक संयोग की बात यह है कि उसी चैनल पर जब आपको बातचीत का मौका मिलता है सुनने वालों से, तो अच्छा भी लगता है
1: जी। बहुत खुशी हो रही है, और ये मेरे लिए एक मीडियम है जहां से मैं इंडिया की पूरी जनता से जुड़ सकता हूं और उनको मेरे विचार पहुंचा सकता हूं, और थोड़ा मैं उनको गाइड कर सकता हूं आज के विषय के बारे में।
0: जी, आज का विषय हमने सुनने वालों को बता दिया है, मधुमेह कारण और बचाव। तो डॉक्टर साहब, शुरुआत ऐसे करते हैं कि मधुमेह कई बार डरावना शब्द होता जा रहा है आज के दौर में, खासतौर से आपके पास भी जो मरीज आते होंगे उसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होती। पहले होता था कि एक बड़े होने के बाद, आयु वर्ग निकलने के बाद मधुमेह एक रोग होता था, आजकल ये कॉमन सी बात हो गई है और भारत पे तो इसका प्रभाव सबलता से बढ़ता जा रहा है। तो हम जानेंगे कि मधुमेह के प्रकार किस तरह से हैं और आप विस्तार से क्या कहना चाहेंगे।
1: जी, मधुमेह जो बीमारी है सबको पता है, डायबिटीज मेलिटस जिसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं, ये आजकल बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है। और कहने में दुख होता है कि इंडिया डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनते जा रहा है, और यह बन गया है। मधुमेह के मुख्य दो प्रकार होते हैं, एक होता है टाइप 1 डायबिटीज जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस कहते हैं, और दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस जो कि एडल्ट्स में होता है, जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। तो टाइप 1 जो डायबिटीज होता है उसमें ये इंसुलिन की टोटल कमी होती है, पैंक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पाते, इसके लिए ये जो मरीज होते हैं ये पूरी तरह डायबिटीज इंसुलिन पे डिपेंडेंट होते हैं, और इनमें जो है टैबलेट्स हम नहीं दे सकते, इनका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन से किया जा सकता है। टाइप 2 डायबिटीज जो है, जो कॉमनली पहले एडल्ट्स में होता था लेकिन आजकल काफी यंग लोगों में पाया जा रहा है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इंसुलिन की कमी तो है ही, लेकिन साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ता है, ये सब फैक्टर्स के कारण इंसुलिन जो है शरीर में उसका प्रभाव कम हो जाता है, उसका असर कम हो जाता है, जिसके कारण शुगर बढ़ने लगता है। और एक प्रकार डायबिटीज होता है जो कि हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस, जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं में पाया जाता है। महिलाएं प्रेगनेंसी के पहले उनका शुगर नॉर्मल रहता है, लेकिन प्रेगनेंसी में कभी कभी हार्मोनल चेंजेस के कारण उनमें डायबिटीज शुगर बढ़ जाती है, डायबिटीज पाया जाता है, जो कि डिलीवरी के बाद 50-60% महिलाओं में उनका शुगर बिना ट्रीटमेंट के नॉर्मल हो जाता है। कुछ महिलाओं में ये शुगर आगे कंटिन्यू रहता है, तो उनको डायबिटीज का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है।
0: देखिए, ये क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करके आपने समझा तो दिया कि टाइप 1, टाइप 2 और अदर प्रकार के जो मधुमेह रोग होते हैं वे किस प्रकार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये एक भ्रम सा पैदा हो गया, हम जी कभी देखते हैं कि बहुत ही मोटा व्यक्ति यदि हमारे समक्ष है तो हम एक एंटीसिपेशन कल्पना कर लेते हैं इसको डायबिटीज होगा या होने वाला है, ऐसा क्यों होता है।
1: डायबिटीज मोटापे से बहुत रिलेटेड है, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम बोलते हैं, जिसमें है ओबेसिटी, डिसलिपिडेमिया और हाइपरटेंशन, मतलब हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और मोटापा। मोटापे के कारण शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल मतलब चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है, ये सब के कारण इंसुलिन का सिक्रीशन जो है उस पर असर होता है, और जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है मतलब

0: जो इंसुलिन का एक्शन है वो कम हो जाता है, जिसके कारण कि शुगर कंट्रोल में तकलीफ होती है और शुगर बढ़ जाता है।
1: अगर डॉक्टर साहब ये पूछा जाए कि जो आपके यहाँ मरीज आते हैं और सबसे पहली नजरिए वाली बात होती है, तो आप कैसे पहचान जाते हैं कि मधुमेह का टाइप 1 का रोगी बन चुका है?
0: टाइप 1 के जो रोगी होते हैं वो नॉर्मली छोटे बच्चे रहते हैं, जिसको हम जुवेनाइल डायबिटीज भी पहले कहते थे। ये जैसे कि मैंने कहा, इसमें इंसुलिन की पूरी डेफिशिएंसी होती है, इसलिए ये बच्चे इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं। मधुमेह के लक्षण वही है, वजन कम होना, भूख ज्यादा लगना, प्यास ज्यादा लगना, रात में पेशाब जाना पड़ता है काफी बार, 4 बार 5 बार, इन्फेक्शन होना या घाव नहीं बनना, ये सारे लक्षण हैं। और जब सीवियर हो जाते हैं, शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो शरीर में केमिकल उथल पुथल होती है, जिसके कारण कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, डिहाइड्रेशन होता है, पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। और जब हम शुगर चेक करते हैं तो पता चलता है शुगर 500 एंड अबव है,
1: ओहो,
0: इतना ज्यादा शुगर होता है।
1: वैसे नॉर्मल जो यूनिट वैल्यू है वो क्या है शुगर की?
0: नॉर्मल शुगर हम बोलते हैं, फास्टिंग जो है वो 100-110 के अंदर होती है, और जो पोस्ट लंच मतलब दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद की शुगर होती है वो 130 के अंदर होनी चाहिए।
1: अच्छा,
0: जो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन है, जिन्होंने गाइडलाइन सेट की है, वो बोलते हैं कि सुबह खाली पेट 12 घंटे फास्टिंग करने के बाद का जो शुगर होता है वो 126 या उससे ज्यादा हो तो उसे हम डायबिटीज लेबल कर देंगे।
1: अच्छा यहाँ पर एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे। बहुत सारे जो हमारे लोग होते हैं उनको पता नहीं होता है वो कि ये जो बात होती है कि भाई अचानक कोई आदमी महसूस करता है कि मुझे शुगर जैसा लग रहा है या बहुत भूख लगती है फिर भी वजन कम होता जा रहा है, तो अगर मान लीजिए कि उसे शुगर नहीं है लेकिन जांच के पहले या कुछ घंटों के पहले उसने मीठा कुछ ज्यादा खा लिया है, तो क्या जांच प्रभावित हो जाती है?
0: नॉर्मली अगर जांच के पहले कुछ मीठा खा गया है तो उसमें थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है, बट जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स है या जो प्री डायबिटिक्स नहीं है उनमें इसका असर नहीं होगा। बॉडी की क्षमता ऐसी है कि वो उसको हजम कर लेगी,
1: अच्छा,
0: तो इसलिए प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट याद रखिए, जब भी हम शुगर टेस्टिंग बोलते हैं फास्टिंग में, तो आपको 12 घंटा फास्टिंग रखना बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ भाई, देखिए चर्चा हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर चल रही है, थोड़ा सा विराम हमें देना होगा और एक संगीतमय वातावरण को गुंजायमान करना होगा। हम चाहेंगे अपनी पसंद का कोई एक गाना बताइए आप।
0: श्रोताओं को मैं, ये मेरे दिल का बहुत ही करीबी गाना है, ये मैं डेडिकेट करना चाहूंगा मेरी प्रिय वाइफ डॉक्टर प्रीति मेहता, जो कि एक रूमेटोलॉजिस्ट है और हमेशा मेरे साथ रही है मेरे इस जर्नी में, क्योंकि मैं फैमिली को बहुत कम समय दे पाता हूँ मेरी प्रैक्टिस के कारण, इमरजेंसीज के कारण, बट शी इज ऑलवेज देयर। सो गाने का नाम है तू मिले दिल खिले, फ्रॉम द मूवी क्रिमिनल।
1: हम सुनवा रहे हैं क्रिमिनल फिल्म का बहुत ही रोमांटिक गाना है।

0: तू मिले दिल खिले। देखिए बहुत ही उम्दा गाना सुनवाया आपने। और अब जब मरीज आपसे मिलते हैं, टाइप वन के भी मिलते हैं, टाइप टू के भी मिलते हैं, तो ये डिफरेंट या ये भिन्नता या विविधता या ये अंतर कैसे आप परीक्षण से करते हैं टाइप टू मरीज है ये?
1: जैसे कि मैंने पहले बताया, टाइप वन कॉमनली बच्चों में होता है, तो जल्दी जुवेनाइल डायबिटीज होता है, यंग बच्चों में होता है, और इसके सिम्टम्स जो डायबिटीज के हैं वही है, लेकिन ये बहुत बार इनको इमरजेंसी में लाया जाता है और हम चेक करते हैं तो शुगर ज्यादा होती है, या फिर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो, या इनकी जो मदर है उनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज रहा हो, तब हम सस्पेक्ट करते हैं कि बच्चे को डायबिटीज हो सकता है, या बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, बच्चा बहुत खा रहा है फिर भी वजन नहीं बढ़ रहा है, रात में बार बार पेशाब उठ रहा है या पेशाब में इंफेक्शन हो रहा है यंग बच्चों को, तो डायबिटीज हम सस्पेक्ट करते हैं।
0: तो ये परीक्षण तो कुछ ब्लड से ही होता है?
1: ये ब्लड से ही होता है, जिसमें कि हम फास्टिंग और पोस्ट लंच शुगर करते हैं। एक और डायबिटीज के लिए टेस्ट होती है जिसको हम HbA1c बोलते हैं। ये टेस्ट 3 मंथ्स एवरेज होता है डायबिटीज का, जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल में 6 या 6.5 से कम होती है इसकी मात्रा। अगर इससे ज्यादा हो तो डेफिनेट

0: कि ये डायबिटीज का इंडिकेटर है, और अगर ये ज्यादा है इसका मतलब पेशेंट को डायबिटीज है।
1: अच्छा, सपोज पहली जो परीक्षण वाली बात होती है, टेस्ट होती है, वो ब्लड टेस्ट जाहिर कर रही है कि ये डायबिटीज का मरीज है, तो अल्टरनेट इमीडिएट ट्रायल ले लेते हैं आपकी, एक बार और टेस्ट करवा लेते हैं।
0: अगर पेशेंट का क्लिनिकल कंडीशन, पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं और ब्लड रिपोर्ट्स, हम पूरा पिक्चर देखते हैं ना कि सिर्फ रिपोर्ट। तो पेशेंट के अगर सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री है और रिपोर्ट्स भी मैच हो रही है, तो हम सीधा ट्रीटमेंट पे आते
1: तो कभी कोई
0: हैं।
1: ऐसा मौका आपको किसी मरीज के साथ मिला कि आपने अल्टरनेट ट्रायल ली हो और बाद में पता चला वो डायबिटीज नहीं था?
0: जी हाँ, जब हमें क्लिनिकली मैच नहीं होता है तो, या हमें क्लिनिकली डाउट होता है कि ये रिपोर्ट पेशेंट के सिम्टम से मैच नहीं कर रही, तो जैसे कि मैंने कहा HbA1c टेस्ट होता है जो 3 महीने का, पिछले 3 महीने का एवरेज शुगर हमें बताता है। तो अगर ये 3 महीने का शुगर है, वो खाने पीने से अल्टर नहीं होगा क्योंकि ये पास 3 महीने के शुगर लेवल का रिकॉर्ड है। तो अगर ये HbA1c ज्यादा है तो डेफिनेटली ये डायबिटीज का संकेत है। इसके अलावा दो तीन और टेस्ट होते हैं जो कि एक सीरम इंसुलिन लेवल होता है, जो इंसुलिन की मात्रा होती है ब्लड में, उसे हम टेस्ट करते हैं। अगर वो लेवल लो है तो भी हमें डायबिटीज का इंडिकेटर मिलता है। और एक सी पेप्टाइड लेवल होता है जो भी हम टेस्ट करते हैं ऐसे स्पेशल कंडीशंस पे, जब हमें डाउट होता है कि पेशेंट को डायबिटीज है कि नहीं।
1: डॉक्टर साहब, ये तो आपने परीक्षण की बात बता दी और कंफर्म कर दिया कि डायबिटीज का मरीज ये रोगी है और उसका इलाज आवश्यक है। तो वो इलाज के लिए मान लीजिए इमीडिएट आपकी रिपोर्ट बताती है कि हाईएस्ट शुगर है, तो आप उसको एडमिट करने की सलाह देते हैं या घर पर ही इलाज चलता है?
0: एडमिशन का जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत ही सिलेक्टिव है। अगर शुगर ज्यादा है तो इसको इमीडिएट एडमिट करने की जरूरत नहीं है, बट अगर डायबिटीज के कारण कुछ कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि मैंने बोला डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, जिसमें कि सांस फूलता है, बॉडी में केमिकल उथल पुथल होके एसिड का लेवल बढ़ जाता है, देयर इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये कंडीशन में एडमिशन मैंडेटरी है। बट अगर सिर्फ शुगर ज्यादा है, पेशेंट कंफर्टेबल है, पेशेंट का बीपी बाकी वाइटल स्टेबल है, तो हम इसको ओपीडी बेसिस पे मैनेज कर सकते हैं।
1: क्या एक सामान्य आदमी जिसको डायबिटीज नहीं है, मधुमेह बिल्कुल नहीं है, लेकिन अचानक किसी कारण से कुछ खाद्य पदार्थों की वजह से अगर शुगर लेवल क्षणिक रूप से, आंशिक रूप से, त्वरित रूप से उसका बढ़ गया है और उसने टेस्ट करवा लिया है, तो वो तो माना नहीं जाएगा कि वो डायबिटीज का रोगी है क्योंकि लक्षण उसमें नहीं है, ये आप देखते हैं,
0: सही,
1: पूरा हिस्ट्री मालूम पड़ता है।
0: यस।
1: कई मरीज ऐसे भी आते होंगे कि वो शक पैदा कर लेते हैं कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है।
0: जो मरीज मेरे पास रिपोर्ट लेके आते हैं उनमें, जैसे कि मैंने कहा, पूरा डिटेल क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं हम पहले कि पेशेंट के सिम्टम्स मैच हो रहे हैं क्या, पेशेंट्स को तकलीफें क्या हैं, फैमिली हिस्ट्री लेते हैं हम, लाइफस्टाइल डाइट का हिस्ट्री लेते हैं, साथ ही अल्कोहल स्मोकिंग कुछ आद्य उनको एडिक्शंस है इसकी हिस्ट्री लेते हैं। उसके बाद हम रिपोर्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके रिपोर्ट पे आते हैं। तो जब हम पूरा पेशेंट एज अ होल देखते हैं और मुझे यदि डाउट होता है कि नहीं ये रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है या पेशेंट ने कुछ खाने पीने में परहेज नहीं किया है और तुरंत शुगर चेक किया है, इसके लिए शुगर ज्यादा है, तो हम पेशेंट से वापस एक बार रिपोर्ट चेक करने बोलते हैं और जो HbA1c है वो टेस्ट करने को बोलते हैं। उससे हमें आइडिया होता है कि पेशेंट को डायबिटीज है कि नहीं।
1: ये बहुत ही अच्छा परीक्षण आप करते हैं ताकि भ्रम भी दूर हो जाता है और खामखा एक जो टेंशन हो जाता है
0: राइट, पेशेंट्स
1: वो
0: को
1: दूर हो
0: बहुत
1: जाता
0: टेंशन
1: है।
0: होती है।
1: अब देखिए, यहाँ पे स्थिति ऐसी बन रही है कि हमारी जो बातचीत है वो तनावपूर्ण ना हो जाए, उसको हल्का फुल्का करना होगा और एक गाने का सिलसिला शुरू करना होगा।
0: ये गाना जो है दिल चाहता है मूवी से है, इसका टाइटल सॉन्ग है। ये मेरे दोस्तों को डेडिकेट करना चाहूंगा जो मेरे MD के बैचमेट्स हैं। मेमोरेबल टाइम हमने बिताया है, आज भी हम मिलते हैं, ये गाना मैं उनको डेडिकेट करना चाहूंगा।
1: सुनते हैं।

0: दिल चाहता है, दिल तो बहुत चाहता है कि गाना लगातार चलता रहे, सुनते रहे, लेकिन गाने की भी एक अवधि है, हमारे कार्यक्रम की भी एक पाबंदी है। अब अगला सवाल जो आज का, दोस्तों हम बता दें कि आज की चर्चा का विषय ये है मधुमेह, कारण और बचाव। डॉक्टर साहब, मधुमेह की जो प्रकार वाली बात आपने बताई, परीक्षण वाली बात बताई, अब हम जानेंगे कि बच्चों में जो मधुमेह हो जाता है तो वो कितने उम्र के छोटे बच्चों से शुरुआत होती है और कहाँ तक इसकी सीमा होती है, और ये विस्तार से हम जानना चाहेंगे।
1: देखो, बच्चों में जो डायबिटीज होता है, कॉमनली हमने जैसे बोला कि ये टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस होता है, जिसको हम जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटिस होता है। इसकी कोई उम्र नहीं है, 3 साल में भी हो सकता है, 6 साल में भी हो सकता है, 10 साल में भी हो सकता है। तो जैसे कि मैंने बोला, इसके लक्षण है, उनको ध्यान में रखना चाहिए, और अगर इन में से कुछ भी सिम्टम्स दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर को या पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए। फिर वो आगे जांच करके बता सकते हैं कि मरीज को डायबिटीज है कि नहीं, और उसकी सही ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पर यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जैसे टाइप 2 डायबिटीज में हमारे पास बहुत सारी टैबलेट्स हैं, दवाइयां हैं, अनफॉर्चुनेटली टाइप 1 डायबिटीज में हमें सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं। बहुत ही दुख होता है कि छोटे बच्चों को हमें सुई का प्रिक डेली लगाना पड़ता है, बट अनफॉर्चुनेटली आज तक, अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है जिससे हम टैबलेट या गोली से इसको ठीक कर सके। तो
0: हाँ,
1: इसमें जो है, इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं दिन में 2 बार या 3 बार, डिपेंडिंग

0: पेशेंट की इंसुलिन वैल्यू क्या है, साथ ही खाने के परहेज करना पड़ता है और सेहत का ध्यान रखते हुए, क्योंकि बच्चा है, बढ़ती उम्र है, तो उसका सेहत भी हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो ग्रोथ हैम्पर होगी, मेमोरी हैम्पर होगी।
1: साहब आपने बताया कि मेमोरी पे भी फर्क पड़ सकता है, और आपने 3 साल की जो बच्चों का उदाहरण दिया है, एक पढ़ाई की हल्की सी शुरुआत हो जाती है वहां पर आज के दौर में, पहले तो देर से पढ़ते थे बच्चे, तो क्या उसकी ग्रोथ रेट में कुछ ऐसा फर्क पड़ता है कि जैसे जैसे इसका विकास हो रहा है तो डायबिटीज की वजह से उसमें कहीं कुछ कमी आती है?
0: देखो, डायबिटीज की वजह से शरीर में बहुत सारे प्रभाव पड़ सकते हैं, ग्रोथ हैम्पर होती है। जनरली ये बच्चे थिन बिल्ड होते हैं, इनका वजन बराबर नहीं बढ़ता है, क्योंकि ये इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं, इनको रेगुलर इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, और इन्फेक्शंस ये बच्चे बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं अगर इनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं हो। डायबिटीज इटसेल्फ कैन कॉज लो इम्यूनिटी, और अगर पोषण और सही न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दिया जाए, क्योंकि डायबिटीज में खाने में काफी सारी रेस्ट्रिक्शंस आती है, मीठा नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, जूस नहीं पीना है, फ्रूट्स में भी रेस्ट्रिक्शंस है, मिठाई नहीं खानी है, तो इनकी जो ग्रोथ पे है, अगर हम न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दें तो उसके कारण यस डेफिनेटली ग्रोथ हैम्पर हो सकती है, जिसके कारण मेमोरी पे भी असर पड़ सकता है।
1: ये बात तो आपने बड़ी गंभीरता से इसको महसूस आया है, कई आपके पास भी ऐसे बच्चे आते होंगे और आपने इलाज किया होगा जाहिर है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि 3 से लेके जब शुरुआत होती है तो क्या इसकी जो नींव है या फाउंडेशन गर्भावस्था में ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बच्चे में डायबिटीज आ जाता है?
0: जरूरी नहीं है कि बच्चे को एट बर्थ डायबिटीज हो, जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जेनेटिक, एनवायरमेंटल, बट यदि उनके पेरेंट्स या फैमिली में डायबिटीज का हिस्ट्री है तो काफी चांस है कि बच्चे में डायबिटीज आ सकता है, बट जरूरी नहीं है 100% बच्चे को डायबिटीज होगा। तो जब भी बच्चे को लक्षण आए तभी चेक किया जाए, या ऑब्वियसली अगर दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज है तो बच्चे का टेस्टिंग करना चाहिए।
1: अच्छा, परीक्षण के बाद यदि पता चलता है कि बच्चे को टाइप 1 नहीं है और कुछ ऐसे डायबिटीज के लक्षण हैं जो सामान्य होते हैं शुरुआत, तो क्या गोलियों से काम नहीं चल सकता?
0: टाइप 1 डायबिटीज में हम गोलियां नहीं दे सकते। अगर उसके लिए मैंने जैसे बोला, हम लोग टेस्टिंग करेंगे, इंसुलिन लेवल्स देखेंगे, सी पेप्टाइड लेवल्स देखेंगे, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे बच्चे को डायबिटीज है कि नहीं। पर अगर बच्चा है, उसको टाइप 1 डायबिटीज है, तो ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन है, हम कोई दवा टैबलेट बच्चों में नहीं दे सकते। एडल्ट्स में जो कि टाइप 2 डायबिटीज होता है, उसमें इंसुलिन इज द लास्ट ऑप्शन, बहुत बेहतरीन दवाइयां मार्केट में है, एलोपैथी ऑब्वियसली, बट जिससे हम डायबिटीज को कंट्रोल में रख सकते हैं और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब ये बताइए कि अगर बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है और इंसुलिन एक आवश्यक स्रोत बन जाता है कि ये लेना ही है उसको, तो ये तो फिर जीवन भर के लिए उसके साथ रहेगा।
0: जी सही बात है, इसी बात का हमें दुख होता है कि इंसुलिन जो है लाइफ लॉन्ग बच्चों को लेना पड़ेगा, बड़े होते हैं तभी भी उनको इंसुलिन ही लेना पड़ेगा, बिकॉज उनके शरीर में इंसुलिन की एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी है एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन, दैट्स व्हाई इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस भी कहते हैं।
1: लेकिन युवा अवस्था तक अगर वो बच्चा आता है, शादी ब्याह की बात होती है, मेल हो या फीमेल हो, तो उसमें कुछ डिसफंक्शन की बात रहती है, कुछ कमी सी लगती है, दुर्बलता आती है?
0: डायबिटीज में सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है, पर अगर आप डायबिटीज को कंट्रोल में रखें, सही न्यूट्रिशन रखें, तो आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, आपकी फर्टिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा।
1: अच्छा, ऐसे कोई मरीज आपके पास आते हैं जिसकी आयु 15 से 20 साल हो, युवावस्था कही जा सकती, किशोरावस्था, टीनेजर, उनको डायबिटीज हुआ हो अपनी लाइफस्टाइल बिगड़ने के कारण, तो क्या वो, और मान लीजिए फैमिली हिस्ट्री में किसी को नहीं है, तो वो क्योरेबल है?
0: डायबिटीज जो है इसका कोई क्योर नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हाँ, प्री डायबिटिक कंडीशन होती है जिसको हम प्री डायबिटीज बोलते हैं, मतलब उनका शुगर जस्ट नॉर्मल रेंज के बाहर है, या ये वो पेशेंट्स है जिसको हम अगर सही लाइफस्टाइल दें, उनका डाइट कंट्रोल करें, उनको फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करें वो पेशेंट्स, तो उनका शुगर कंट्रोल में रह सकता है, उनको कोई दवा की आवश्यकता नहीं है। आजकल जो हम देख रहे हैं अर्बनाइजेशन, ये बहुत ही भयानक बीमारी है बच्चों के लिए, बिकॉज बच्चे काउच पोटैटोस बन रहे हैं, सोफा पे बैठ के टीवी देखना, घंटों मोबाइल में घुसे रहते हैं। हमारे जब हम छोटे थे तब हम बाहर खेलने जाते थे, मैदान

0: आउटडोर गेम्स खेलते थे, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो, खो-खो हो, ये सब खेलते हुए हम बड़े हुए। लेकिन आज के अगर हम यंग जनरेशन देखें तो वो कंटिन्यूअसली मोबाइल में घुसे रहते हैं, या फिर प्ले स्टेशन है, टीवी है, इंटरनेट है, तो इसके कारण उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। आउटडोर जो गेम्स रहते हैं आजकल बहुत कम खेलते हैं, जिसके कारण ओबेसिटी इज ऑन द राइज। बहुत सारे यंग बच्चे हैं जिनको जो ओबेसिटी के शिकार है, जिनमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, वजन, मोटापा जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत बढ़ रहा है, और ये सब का असर डायबिटीज की तरफ उनको ले जा रहा है। उनको युवा अवस्था में 20, 25, 30 साल में डायबिटीज हो रहा है, इसके कारण डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस भी आगे बढ़ के उनको होने वाली है।
1: ये बहुत एक चेतावनी भरी बात आपने कही है, कॉम्प्लिकेशंस। इस बिंदु को लेकर हम प्रश्न आपसे पूछेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपकी पसंद का एक गाना सुनना चाहेंगे यहाँ पर।
0: ये जो गाना है ये दिल के बहुत करीब है, और ये मैं डेडिकेट करना चाहूंगा मेरे पेरेंट्स को। तो तारे जमी पर का ये बहुत ही उम्दा सॉन्ग है माँ, ये मैं मेरी माँ को डेडिकेट करना चाहूंगा।
1: बहुत ही इसमें डिफाइन करने वाली बात नहीं है, सिर्फ एहसास मात्र है। आइए सुनते हैं तारे जमीन पर फिल्म का ये गाना।

0: गाना तो आपने बहुत ही इमोशनल सुनवा दिया। ये देखिए, ममत्व से बढ़कर कोई एहसास नहीं और कोई इमोशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब किसी को मधुमेह हो जाता है, वो आपके पास आता है, तो एक तारतम्य आपका जुड़ जाता है, एक सिंपैथी सी हो जाती है कि इतनी कम उम्र में बच्चों को हो गया। लेकिन जब बड़ों को डायबिटीज हो जाता है या वो उसके शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे मरीजों के बारे में क्या कारण आप समझते हैं कि हो जाता है?
1: इसके कारण मल्टीफैक्टोरियल है, बहुत सारे कारण हैं। एक है जेनेटिक, जो फैमिली से आता है। आपकी फैमिली में अगर हिस्ट्री है तो आप डायबिटीज के लिए प्रोन है। जरूरी नहीं कि फैमिली में हिस्ट्री है तो आपको डायबिटीज होगा, बट यस, आप नॉर्मल आदमी जिसके पेरेंट्स को डायबिटीज नहीं है या जिसके जीन्स में डायबिटीज नहीं है, उससे आप रिस्क पे है, उससे ज्यादा रिस्क आपको है डायबिटीज होने की। आजकल जो उससे ज्यादा बीमारी जो है आजकल, वो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ओबेसिटी। डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज ओबेस पेशेंट्स में काफी मात्रा में पाया जाता है। जो पेशेंट फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, जो काउच पोटैटोज है, जिनकी लाइफस्टाइल सही नहीं है, और जो अल्कोहल या स्मोकिंग के आदि हैं, ये पेशेंट्स में डायबिटीज का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। बिकॉज डायबिटीज जो है एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, स्पेशली जो टाइप 2 डायबिटीज होता है, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो इसके कारण अगर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, अगर आप सही टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी या कोई भी प्रकार का एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस है आपकी लाइफ में, या आप स्ट्रेस ले रहे हैं, मुंबई की लाइफ में स्ट्रेस तो होना ही है, बट आजकल गांव में भी हम देख रहे हैं जो युवा है, आज की जनरेशन है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती है, छोटी छोटी बातों पे टेंशन आ जाता है उन्हें, तो ये सब डायबिटीज को बढ़ावा दे सकते हैं। आगे जाके ये पेशेंट्स, ये मरीज को डायबिटीज हो सकता है।
0: डॉक्टर साहब, एक फैमिली हिस्ट्री की बात आपने की, अनुवांशिकता की बात की, जो हेरेडिटी कैरेक्टर होता है, तो ये आपके पास इस तरह के भी मरीज देखने को मिलते होंगे आपको कि पिता को था लेकिन 3 भाई या बहन हैं, उसमें से केवल एक को ही हुआ है, 2 को नहीं हुआ है।
1: डायबिटीज में फैमिली हिस्ट्री डेफिनेटली होती है, बट जरूरी नहीं है कि फादर या मदर को या दोनों को डायबिटीज है तो सभी बच्चों को डायबिटीज होगा। ये उस इंडिविजुअल की लाइफस्टाइल और जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करता है। अगर पेशेंट हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, रेगुलर एक्सरसाइज करे, बैलेंस डाइट रखे और स्मोकिंग अल्कोहल से दूर रहे, तो चांस है कि उसको डायबिटीज नहीं हो।
0: ये बात तो आपने बड़ी सुधार की कही है कि कभी अच्छा, इसमें एक सेंटेंस आपने कहा था, स्ट्रेस या तनाव या अवसाद, इसको अलग अलग रूप में लेते हैं लोग, वो हर किसी को है, आपको है और मुझे भी है, कहीं ना कहीं हम इससे बचे नहीं है, लेकिन उसकी मात्रा पे डिपेंड करता है कि वो आप कितना गहराई से उसको महसूस करते हैं, तभी इसके शिकार बनते हैं। कितना सहमत है आप?
1: ये एक बिल्कुल सही बात बोली। देखो, जैसे कि मैंने कहा, अर्बनाइजेशन जो आजकल हमारी लाइफस्टाइल है, भागदौड़ वाली मुंबई में जो हम भागदौड़ करते हैं, यहाँ से वहां ऑफिस जाओ, यहाँ आओ, इधर जाना है, उधर जाना है, तो लाइफस्टाइल जो हमारी है पूरी तनावपूर्ण है। ऑफिस में वर्क है, घर पे स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है। कि जो युवा है गाँव में भी, जो रूरल एरियाज है वहां पे भी स्टडीज है जो बताती है कि गाँव में भी जो स्ट्रेस है वो लेवल काफी बढ़ गया है युवाओं में। स्ट्रेस से बचना नामुमकिन है। ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो आदमी कितना स्ट्रेस ले, कितना नहीं ले। मैं तो मेरे पेशेंट्स को हमेशा यही कहता हूं, भगवान ने हमको 2 कान दिए हैं, एक कान से सुनो, दूसरे से बाहर लो। बीच में जो दिमाग है उसको, बेचारे को टेंशन मत दो, उसको छोड़ दो। क्योंकि टेंशन से ना सिर्फ डायबिटीज की ओर हम बढ़ावा दे सकते हैं, इससे और भी सारी, काफी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि एसिडिटी है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है।
0: ये आपने इतना गंभीर स्रोत बताया कि मुझे एक प्रश्न यहाँ करना पड़ेगा सुनने वालों की ओर से, कि आप इतना इलाज करते हैं और एक जो प्रौढ़ व्यक्ति है उसका अगर मधुमेह नियंत्रण में न आया, तो न आने के कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस या नुकसान हो सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से बताइए।
1: डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और डायबिटीज को कंट्रोल में नहीं रखे तो काफी सारे शरीर के जो पुर्जे हैं उन पे नुकसान हो सकता है। डायबिटीज को हम इंग्लिश में बोलते हैं साइलेंट किलर
0: जी,
1: ये अंदर ही अंदर शरीर को खोखला कर देता है, और जब 10 साल 15 साल आदमी को डायबिटीज होता है, कंट्रोल में नहीं रहता है, तब इसके कॉम्प्लिकेशंस आना शुरुआत होती है। लेकिन जब कॉम्प्लिकेशंस सेट इन हो जाते हैं तो काफी देर हो चुकी होती है, काफी इसके कारण मोर्टैलिटी और मॉर्बिडिटी होती है। डायबिटीज जो कॉम्प्लिकेशंस है ये माइक्रोवैस्कुलर और मैक्रोवैस्कुलर बोलते हैं। सरल भाषा में कहा जाऊं तो शरीर के सभी अवयवों पे इसका असर होता है, बुरा असर। आंखों में हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, जिसमें जो आंख का पर्दा है जहां पे इमेज बनती है उसे डैमेज होता है, पेशेंट्स को आगे जाके दिखना बंद हो सकता है। डायबिटिक पेशेंट्स में कैटरैक्ट्स बहुत जल्दी होते हैं, जिसको हम मोतीबिंदु कहते हैं, तो ये पेशेंट्स को कम उम्र में कैटरैक्ट होता है, ऑपरेशन से ये सही हो सकता है, पर अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी बढ़ गया तो इसके कारण उनको दिखना बंद हो सकता है। फिर डायबिटीज से किडनी पे प्रभाव पड़ सकता है, जिसे हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं, जिससे कि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है, किडनी खराब हो सकती है, और आगे जाके ये पेशेंट्स डायलिसिस पे भी लैंड अप हो सकते हैं। इतना गंभीर रूप से डायबिटीज का असर होता है। तीसरा असर डायबिटीज का होता है हार्ट पे, जिसमें हार्ट अटैक जो है ये हो सकता है लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज में। स्पेशली हार्ट अटैक उन पेशेंट्स में होता है जिनको ओबेसिटी है, जिनको फैमिली हिस्ट्री है, जिनका कोलेस्ट्रॉल यानी चर्बी की मात्रा ज्यादा है। तो हम पेशेंट्स को, जिन पेशेंट्स को डायबिटीज है, साथ में ब्लड प्रेशर है और साथ में कोलेस्ट्रॉल भी है, ये पेशेंट्स बहुत ज्यादा रिस्क में होते हैं जिनको हार्ट अटैक आ सकता है। इसके अलावा डायबिटीज का ब्रेन पे भी असर हो सकता है, बिकॉज डायबिटीज एंड कोलेस्ट्रॉल हैंड इन हैंड चलते हैं, तो ये पेशेंट्स को लकवा यानी पैरालिसिस भी हो सकता है। डायबिटीज में न्यूरोपैथी होती है, जिसमें हम हाथों में पैरों में झंझनाहट होती है और

0: इंडिकेशन है डायबिटिक फुट।
1: लेकिन यहाँ आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि उसमें मटेरियलिस्टिक ढंग से देखें, तो प्लास्टिक का चप्पलों का उपयोग कर सकते हैं या पूरा जूता और मोजा बंद करके पहनते हैं तो मॉइस्चराइजेशन होता है, तो उस पैर की अवस्था को कैसे रखा जाना चाहिए?
0: नहीं, डायबिटिक फुट केयर में यही है कि आप अपने फुट क्लीन और ड्राई रखें। यू कैन वेयर सॉफ्ट चप्पल्स, आजकल मार्केट में भी स्पेशल डायबिटीज फुटवेयर आती है जो आप पहन सकते हैं। जो पेशेंट्स में डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन है या डायबिटिक फुट है या कभी कभी फ्लैट फुट होता है, उनके लिए स्पेशल फुटवेयर भी आते हैं। न्यूरोपैथी पेशेंट्स के लिए भी स्पेशल फुटवेयर है। लेकिन जो आम जनता है जिनको डायबिटीज नहीं है, उनको हम ये सलाह देते हैं कि आप कंफर्टेबल फुटवेयर पहने, ज्यादा टाइट शूज नहीं पहने, और घर पे आते ही पैरों को खुला रखें, उनको हमेशा डेली बेसिस पे इंस्पेक्ट करें।
1: इसका मतलब थोड़े समय के लिए जब बहुत सारी बंदिश हो जाती है तो उसको आपको थोड़ा हवा के रूप में रखना चाहिए, थोड़ा खुला रखना चाहिए, मोजे वगैरह ना पहने उस समय के लिए। बहुत अच्छी बात बताई आपने, लेकिन यहाँ पर हम चाहेंगे कि हमारी चर्चा को थोड़ा सा विराम देंगे और हम गति से आगे बढ़ रहे हैं। आपकी जो संगीत वाली बात है वो कौन सी है?
0: ये गाना है, ये मैं अपने श्रोताओं को सुनाना चाहूंगा।

0: जो गीत आपने सुनवाया, उम्मीद नहीं पूरा यकीन है कि सुनने वालों को बहुत अच्छा लगा होगा। और अब हम जो सवाल आपसे पूछेंगे उसमें तमाम सुनने वाले भी इसमें शामिल हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जानना जरूर चाहेंगे कि डायबिटीज ना हो इसके लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या बचाव के तरीके अपनाने चाहिए।
1: डायबिटीज ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, हम डेफिनेटली इससे बच सकते हैं और इसको हम डिले कर सकते हैं अगर फैमिली हिस्ट्री है तो भी। हमारी लाइफस्टाइल सही रखे, हम एक बैलेंस डाइट फॉलो करें और रेगुलर एक्सरसाइज करें तो डायबिटीज के भयानक बीमारी से बचा जा सकता है। तो मैं मेरे पेशेंट्स को हमेशा कहता हूं कि आप डेली एक्सरसाइज करें। आजकल के युवा और एडल्ट्स में फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही कम होगी। घर से निकलते हैं, बाइक है, कार है, वहां से ऑफिस जाते हैं या बस पकड़ के ऑफिस जाते हैं, फिर ऑफिस से घर आते हैं, घर बैठते ही टीवी के सामने बैठ जाएंगे, थके हुए टीवी के सामने ही खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे। तो फिजिकल एक्टिविटी जो है ये आजकल कॉमन पब्लिक है, इनमें बहुत ही कम होती जा रही है। स्ट्रेस बढ़ रहा है, इसके कारण भी लोग खाना लेट खा रहे हैं, टाइम पे खाना नहीं खाते हैं कि नहीं मैं पहले काम करूंगा, ये सर पे बैठा है, बॉस सर पे बैठा है, मैं पहले काम खत्म करता हूँ फिर खाना। मेरा ये सुझाव है और मेरे श्रोताओं से ये कहना है कि आप खाना जो है टाइम पे लीजिए, हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए। आजकल जंक फूड का क्रेज है। मैं ये नहीं कहता कि आपको टेस्टी फूड या जंक फूड नहीं खाना चाहिए, इसको आप संडे को एंजॉय कीजिए, बट बाकी 6 दिन जो है हफ्ते के उस दिन आप एक बैलेंस डाइट लीजिए। डाइट के बारे में बताना चाहूंगा कि हमें जो है बैलेंस डाइट लेना चाहिए। डाइट में सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन इंटेक और फैट इंटेक होना चाहिए। फैट का इंटेक, चर्बी का इंटेक या चर्बी युक्त पदार्थों का इंटेक कम रखना चाहिए। खाने में सलाद्स, हरी सब्जियां, फ्रूट्स और टोन मिल्क का सेवन करें। रेगुलर बेसिस पे आपको सलाद्स और फ्रूट्स लेना चाहिए। साथ ही नॉन वेजिटेरियन फूड है जो एंजॉय करते हैं वो बेशक खा सकते हैं, लेकिन रेड मीट और एग योक, जो योक होता है, उसे कम लेना चाहिए। और तली हुई चीजें, फ्राइड स्टफ, इसका सेवन कम करना चाहिए। कॉमन एक मिसकंसेप्शन है कि मीठा खाने से डायबिटीज होता है। नहीं, ये मिसकंसेप्शन है, ये एक मिथ है कि आप मीठा खाएंगे तो आपको डायबिटीज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट यस, अगर आप हाई कैलोरी फूड जिसमें कि घी, तेल, चर्बी ज्यादा है, ऐसा फूड का सेवन रेगुलर करेंगे और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो यस, आप डायबिटीज की ओर एक कदम बढ़ा रहे हैं, आपको फ्यूचर में जाके डायबिटीज होने की संभावना है।
0: ये आपने सही कहा कि मीठे के बारे में जो मिथ है, खा सकते हैं लेकिन उसको पचाइए भी।
1: यस।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, एक चलन सा निकला है, कोई भी पदार्थ हो उसमें कहा जाता है आप ले सकते हैं शुगर फ्री, तो व्हाट इज शुगर फ्री?
1: जो शुगर फ्री सब्सटेंसेस होते हैं वो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं या ऐसे केमिकल्स हैं जिनसे शुगर नहीं बढ़ता है या कम बढ़ता है, इसके लिए हम उनको

0: शुगर फ्री बोलते हैं, जैसे कि सैकेरिन हो गया या कुछ केमिकल्स हैं जो स्वीट टेस्ट देते हैं, पर इनसे शुगर लेवल नहीं बढ़ता है। स्टीविया है जो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, इस ये भी शुगर फ्री होता है। तो जो पदार्थ या मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, इनमें इन केमिकल शक्कर या चीनी या गुड़ का इस्तेमाल न करते हुए ऐसे केमिकल्स या ऐसे सब्सटेंसेस यूज होते हैं जिनसे कि उसका कैलोरी काउंट और शुगर काउंट लो हो या उससे शुगर नहीं बढ़े। तो हम ये सलाह देते हैं पेशेंट्स को कि ये जो शुगर फ्री सब्सटेंसेस है इनका सेवन आप कर सकते हैं, बिकॉज दिल तो करेगा, दिल तो अभी भी बच्चा है, मीठा खाने की जिद तो करेगा। तो आप कभी कभी इंडल्ज कर सकते हैं, बट ये जो शुगर फ्री मिठाइयाँ स्पेशली होती है उनमें मावा है, घी है, तो कोलेस्ट्रॉल इनसे बढ़ सकता है। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप इनको रेगुलरली नहीं ले, कभी कभार खुद को खुश करने के लिए या शाबाशी देने के लिए कि अगर आपने डायबिटीज कंट्रोल रखी है, रेगुलर आप इसको फॉलो कर रहे हैं, तो वंस इन अ वाइल इट्स ओके टू इंडल्ज।
1: तो ये तो तमाम सारी जो लाइफस्टाइल से संबंधित जानकारी है आपने दे दी है, और हमें उम्मीद है कि लोग इसको स्वीकारेंगे, मानेंगे और उसका पालन करेंगे। अब चलते चलते एक गाना तो बनता है, वो आपकी पसंद का नगमा कौन सा है?
0: ये आखिरी गाना है जो मैं श्रोताओं को डेडिकेट करना चाहूंगा, पूरे इंडिया के श्रोताओं को। ये AR रहमान साहब का बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला गाना है जो मेरे दिल के बहुत करीब है और हर इंडियन के करीब होना चाहिए। माँ तुझे सलाम।
1: आइए सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, आपने देखिए देशभक्ति पूर्ण जज्बे से जो लबरेज था गाना सुनवाया, और अब चलते चलते आखिर में एक कोई संदेश नुमा बात हमारे मधुमेह के रोगियों को कहना चाहेंगे तो वो क्या है?
1: मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा सब श्रोताओं को कि डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और अगर हम सही लाइफस्टाइल चुने तो हम इस भयानक बीमारी से बच सकते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। ईट हेल्दी, एक्सरसाइज रेगुलरली एंड स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग।

0: अल्कोहल।
1: इतने गहन विषय पर आपने सरल शब्दों में आज का हमारा जो विषय था मधुमेह कारण और बचाव, इस पर अपनी चर्चा की और लोगों को समझाया, हमारे सुनने वालों से मुखातिब हुए। इसके लिए विविध भारती में आने के लिए और इस तरह की चर्चा करने के लिए विविध भारती की ओर से तमाम सुनने वालों की ओर से आपको दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
0: एक बार फिर से सब श्रोताओं का और विविध भारती का तहे दिल से शुक्रिया करूंगा कि आपने मुझे ये मौका दिया यहाँ आने के लिए और अपना कीमती समय दिया मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद।
1: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई के सुप्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ और जाने माने फिजिशियन डॉक्टर कुणाल मेहता से। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो मेल करके, खत लिख के हमें अपनी राय से अवगत अवश्य कराइए। चलते चलते आपको बता दें, आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी वंदना ठाकुर थी और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।

0: इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले और एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, चुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जब से धरती बनी है सूरज उगता है और फिर उफक के उस पार ढुलक जाता है अगली सुबह फिर से आने के लिए। जब से बनी है धरती तब से हो रही है शामें, लेकिन हर शाम का रंग अलग अलग होता है। कोई शाम होती है गुलाबी, रूमानी, नाजुक और नरम, तो कोई शाम ऐसी होती है मानो उसमें खुल गया हो उदासी का रंग, आंसुओं का नमक। ऐसी शामों में दिल डूब डूब जाता है। कोई ऐसी शाम होती है जब मन सोच के समंदर में डुबकी लगाने लगता है। कोई उदासी, कोई ख्याल, कोई फलसफा, ऐसी शामों का

कई बार ऐसे लम्हे आते हैं जब कोई गीत हमारी बात कहता नजर आता है, यूं लगता है कि यही बस यही तो थी हमारी कैफियत, हमें लफ्ज नहीं मिल रहे थे। कुछ एहसास शब्दों के परे होते हैं, कोई आवाज सीधे दिल में उतर जाती है, क्योंकि ये दिल की आवाज होती है, दिल की पुकार, एक बेचैन दिल की पुकार। गाने

में हम ऐसे गीत लेकर आते हैं जो दिल के नर्म एहसासों को छुए, जिन्हें सुनकर लगे कि हाँ बस यही तो मेरा गाना है। विविध भारती इसीलिए आपका हम सफर बन जाता है, क्योंकि हर पल आपका साथ निभाता है। अचानक गूंजता है कोई मधुर स्वर, जैसे रात में जुगनू चमक उठते हैं। अंधेरे में घिरी रात ऐसे चमक उठती है जैसे हजार हजार चराग जल उठे हों।

मौसम सीधे मन पर असर डालता है, इसीलिए तो दुनिया बदहवास भागी जा रही है पहाड़ों पर अपनी छुट्टियां बिताने। आपने अखबारों में पढ़ा ही होगा कि कैसी भीड़ होने लगी है आजकल पहाड़ों पर। पहाड़ों पर पसरी खामोशी अच्छी लगती है। सदियों से खड़े ही ये पहाड़ आसमान से बातें करते, हवाओं के कान में कुछ कहते। पहाड़, मौसम।

जैसे कहीं दूर से कोई पुकार रहा है, एक बेचैन पुकार, सदियों का इंतजार, सदियों की कशिश, एक आवाज जिसमें है उदासी की लहर। जाने कौन है जो किसी को रोकना चाहता है, जाने नहीं देना चाहता। जाने कौन है जो वक्त को रोक लेना चाहता है। जाने कौन है जो दूर से पुकार।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। कुछ पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम तराने नए।
3: FM वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 5:30 हुए हैं। लीजिए पेश है हमारे युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

बस यही समझने की कोशिश करें कि समस्याएं तो आती रहेगी, कभी लोगों तो कभी परिस्थिति के रूप में, लेकिन उनका सामना आप किस तरह करते हैं वही आपकी असली पहचान बनाता है। इन प्रेरक पंक्तियों के साथ मैं हूं आपका रेडियो होस्ट मोहन मदान। FM वेव्स 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं युवाओं का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम युवाणी, जहां आपसे चर्चा होगी जोरदार और फिल्मी गीतों का सफर होगा कुछ दमदार। बस हाथ में एक कप चाय हो और शाम के वक्त युवाणी प्रोग्राम सुनने का मौका मिले तो वो सुकून का कोई अंत ही नहीं है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सफर की, जहां आज की बात में चर्चा होगी समुद्र और मानव जीवन के रिश्ते के बारे में। सेगमेंट इनसे मिलिए में बैतूल की प्रसिद्ध इंटीरियर डिजाइनर रेणुका डांगे से होगी कुछ क्रिएटिव बातें, फिल्मी सॉन्ग का कारवां होगा और भी खास, और मनी मंत्र में चर्चा होगी कैसे अपनी सैलरी और खर्चों को बैलेंस रखें। तो अब चलते हैं हमारी आज की बात की ओर। दोस्तों, हम चाहे कहीं भी रहें, समुद्र हम सभी को प्रभावित करता है। बदले में हम 7 अरब से ज्यादा लोगों का काम बड़े पैमाने में महासागर पर दिखाई देता है। समुद्र हमें ऑक्सीजन और ताजे पानी जैसे रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजें देता है, और यही हमारा खाने का स्रोत भी है। समुद्र हमें व्यापार करने की अनुमति देता है, जिसमें मछली पालन, सी पोर्ट्स, टूरिज्म, शिपिंग नेविगेशन जैसी अलग अलग चीजें शामिल है। समुद्र को खनिज, ऊर्जा संसाधन और दवाइयों का अच्छा स्रोत माना जाता है। ये हमें समुद्री खेलों, मराइन स्पोर्ट्स का अच्छा अवसर देता है, दूसरों के लिए मोटिवेशन का काम करता है और लोगों के आराम करने में भी मदद करता है। कहते हैं अगर समंदर शांत है तो उसकी गहराई का अंदाजा मत लगाइए, एक बार यदि गहराई में उतर आए तो किनारे भी नजर नहीं आएंगे। हमारे वैश्विक आबादी का एक सबसे बड़ा हिस्सा कोस्टल एरियाज या उसके आसपास रहता है। लोगों की इस बढ़ती आबादी के साथ यहाँ के इकोसिस्टम को सुरक्षित रखना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे हम धीरे धीरे ये समझने लगे हैं कि प्राकृतिक प्रणालियां हमें समुद्र के बढ़ते जलस्तर, चक्रवात तूफान, समुद्री लहरों और सुनामी जैसी मुसीबतों से बचाती हैं। हम अपनी डेली लाइफ में अक्सर ये भूल जाते हैं कि हम प्रकृति से अलग नहीं बल्कि उसका एक हिस्सा है। लगातार बढ़ती आबादी, पानी के गर्म होने के कारण पिछले कुछ सालों से समुद्री बर्फ लगातार पिघल रही है। हालांकि यह वॉलरस और ध्रुवीय भालू जैसे जानवरों के लिए बहुत खतरनाक है, जो अपने जीवन के लिए समुद्री बर्फ पर पूरी तरह निर्भर होते हैं। समुद्री बर्फ के कम होने से आर्कटिक में शिप्स का आना बहुत आसान हो जाता है, जो पहले संभव नहीं था। दोस्तों, भले ही समुद्र हमारे दैनिक जीवन से कुछ अलग सा लगता है, पर फिर भी ये हम सभी को प्रभावित करता है। एक ऐसा भविष्य जो पूरी तरह समुद्र पर निर्भर करता है। इसमें बसती है जिंदगी और उन प्रणालियों की देखभाल करना हम सभी का दायित्व होता है, जो इस पृथ्वी पर सबके जीवन को संभव बनाते हैं। समुद्र को एक ऐसी जगह समझना आसान है जहां हम घूमने जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये वो चीज है जिस पर हम हर दिन निर्भर रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी महासागर और मानव जीवन से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। अब सुनते हैं फिल्म राउडी रॉटर का ये गाना।

0: रमा, 9 तारीख को जा रही हूँ ना अपनी जांच के लिए।
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: तो दोस्तों, रेडियो प्रसारण के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी द्वारा संचालित आकाशवाणी@90 युवा आउटरीच इनिशिएटिव के तहत अब सुनते हैं रेणुका डांगे से ये खास बातचीत। दोस्तों, डिजाइन सिर्फ दिखने और महसूस होने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये मायने रखती है कि ये कैसे काम करती है। और इसी डिजाइन को जीवंत बनाने के लिए आज आकाशवाणी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है बैतूल जिले की सबसे युवा और फेमस इंटीरियर डिजाइनर, जिन्होंने पुणे के भानुबेन नानावटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से ग्रेजुएशन और अहमदाबाद की CEPT यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। रेणुका जी, इस स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: धन्यवाद।
4: सबसे पहले आप अपने शुरुआती सफर के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
5: नमस्कार। सबसे पहले मैं आकाशवाणी के पूरे परिवार और समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करना चाहती हूँ। मेरे लिए आज आकाशवाणी के इस मंच से जुड़ना किसी विशेष सम्मान से कम नहीं है।
4: रेणुका जी, 12th खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स या तो डॉक्टर, इंजीनियर बनने की तैयारी करते हैं या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की ओर मूव करते हैं। क्या आपने पहले से डिसाइड किया था कि आपको इंटीरियर डिजाइनर बनना है?
5: आप बहुत सही कह रहे हैं कि ट्रेडिशनली, मतलब पेरेंट्स अपने सारे यही सोचते हैं कि भाई मैथ या साइंस ले लो और इंजीनियर या डॉक्टर, ये सेफ फील्ड्स चूज कर लो। पर मेरी मतलब कहानी कहीं ना कहीं बचपन से शुरू हो गई थी ये डिजाइन की यात्रा। तो पापा एक्चुअली मेरे इंजीनियर है रेलवे में, अभी रिटायर हो चुके हैं, तो उनकी पोस्टिंग कई शहरों में रही है छोटे बड़े। तो इस चीज का मेरे को फायदा ऐसे हुआ कि मैं छोटी जगह में रह के वहाँ के लोगों से और उनके कल्चर से भी जुड़ पाई। हम लोग को मतलब ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के बंगलोज में रहने का मौका भी मिला थी, एक अलग ही फील आती थी वहाँ के घरों की। तो कहीं ना कहीं मेरा जुड़ाव ये स्पेस आर्किटेक्चर डिजाइन इससे वहाँ से शुरू हुआ। पापा सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े ही थे और भैया ने भी आर्किटेक्चर चूज किया था। तो कहीं ना कहीं मतलब मेरी इच्छा ऐसे रहती थी कि भाई अपन घर में रहते कैसे है, तो स्पेस की प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, डिजाइन कैसी होनी चाहिए, अंदर की फीलिंग कैसी आनी चाहिए इंसान को, सिस्टमैटिक सब अरेंजमेंट होना चाहिए, एस्थेटिक लुक आनी चाहिए, प्लस फंक्शनैलिटी में भी वो हमको मतलब मदद आनी चाहिए उस चीज की। तो इसलिए मैंने इंटीरियर डिजाइन चूज किया। तो मुझे कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स, टीचर्स सबने इस चीज की तरफ प्रोत्साहन दिया कि हाँ भाई, अब आप इंटीरियर डिजाइन का कुछ मतलब विचार कर रहे हो तो सही है, करके देखो।
4: आपकी बातों से लगता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड जो है पहले से आर्किटेक्चर लग रहा है। अच्छा, इंटीरियर डिजाइनिंग को आप कैसे सोचती है, लोगों के बीच इसकी क्या वैल्यू होती है? क्योंकि पहले का समय ऐसा था कि बस 2 कमरे बना लिए, 2 किचन और हॉल बना लिया और बन गया घर। पर आज लोगों की मेंटेलिटी कुछ बदल सी गई है, बहुत कुछ चीजें बदल चुकी है।
5: हाँ जी, आप जो कह रहे हैं उससे मैं कम्प्लीटली एग्री कर रही हूँ कि आजकल मतलब शहरीकरण इतना बढ़ गया है, मेट्रो सिटीज में भी जगह कम हो गई है और इंटरनेट के

0: युग में सभी लोग चाहते हैं कि हम अपनी जितनी भी जगह है उसका बेहतर से बेहतर सही इस्तेमाल कर पाए, हर चीज के लिए एक डेडिकेटेड स्पेस बना पाए, ताकि हम जैसे हमको रिलैक्स करना है तो हम बालकनी में वैसे तरीके का मूड बना के रखते हैं, बेडरूम में थोड़ा रिलैक्स, वर्क स्पेस अलग रखते हैं, ऑफिस का एनवायरमेंट अलग होता है, तो हमारी प्रोडक्टिविटी, मेंटल हेल्थ, ये सब चीजों पर भी इंटीरियर का काफी फर्क पड़ता है। एंड कहीं ना कहीं डिजाइन का भी इस पे काफी इम्पैक्ट है, हम पे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है इस चीज का। तो
1: जी
0: डिजाइन में दो तीन रूल्स है जो हम मतलब से सोच नहीं पाते पर काफी अफेक्ट करते हैं हमको, जैसे कि रूल ऑफ 3, 5, 7। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी जैसे आप पेंटिंग भी लगा रहे हो दीवार पे, तो यू हैव टू हैंग इट इन ऑड नंबर्स। तो क्या होता है कि हमारा जो ध्यान है एक बिंदु की तरफ हो जाता है, जो बीच वाली पेंटिंग। तो इंसान के जो ब्रेन है उसको ऑड नंबर या फिर आप बोल सकते हो कि जो एसिमेट्री है वो ज्यादा मतलब सही से लगती है। तो ये सारे रूल्स है। एंड देन 70-30 रूल की 70% बेज या प्लेन कलर्स हो और 30% जो है उसमें पॉप या इंटरेस्टिंग चीजें हो। तो ये सारी चीजें मतलब ओवरऑल स्पेस को कंबाइन करके काफी अच्छी निकल के आती है।
1: एक इंटीरियर डिजाइनर के लिए डिजाइन और डेकोरेशन में क्या फर्क होता है?
0: मुझे लगता है कि सबके दिलों का प्रश्न पूछ लिया कि यार ये डिजाइनर और डेकोरेटर में फर्क क्या है। तो बेसिकली इंटीरियर डिजाइन में डेकोरेशन इंक्लूडेड है। तो डेकोरेशन में आता है कि जैसे आप पेंट कुछ अलग करवा दे, कमरे का कारपेट बदल दे,
1: जी
0: फर्नीचर, लाइटिंग। पर डिजाइनिंग थोड़ा और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। तो इसमें आप जो रूम्स के पार्टीशंस है, फिर वेंटिलेशन है, फिर उसके बाद स्पेस प्लानिंग है, ये सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जिससे फंक्शनैलिटी और एस्थेटिक दोनों ही इम्प्रूव हो रहा है, उस चीज की तरफ ध्यान देते हैं। तो डेकोरेशन इंक्लूडेड है डिजाइनिंग में, पर डिजाइनिंग डेकोरेशन नहीं है। लोग लाइटिंग लगा के या कुछ कुछ छोटी मोटी चीजें करके।
1: डिजाइनिंग का एक पार्ट हो सकता है हम
0: हाँ
1: कह
0: जी,
1: सकते
0: हाँ
1: हैं।
0: जी, एग्जैक्टली
1: जी
0: सही समझ रहे हैं आप।
1: अच्छा, 12th के बाद इंटीरियर डिजाइनिंग में कई तरह के एक्सपांशन होते हैं,
0: जी,
1: इसमें करियर बनाने के लिए कौन कौन से कोर्स अभी हाल ही में मौजूद है?
0: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन और सेप्ट यूनिवर्सिटी, ये टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया के जहाँ पे आपको उनके एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं आफ्टर 12th। तो मेरी सलाह तो यही होगी कि अगर आपका रुचि है डिजाइनिंग और मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ, तो आप इसकी स्केचिंग की और ऑब्जर्वेशन की, ये सारी चीजों की प्रैक्टिस 9th-10th से ही शुरू करें। एंड डिजाइनिंग में आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइन तो है ही सही, इसके अलावा भी स्पेसिफिक फील्ड्स है जैसे कि फर्नीचर, लाइटिंग, टेक्सटाइल, गेम डिजाइनिंग, ऐसे भी दूसरे दूसरे सेक्टर्स हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं।
1: दोस्तों बता दें कि रेणुका जी को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग द्वारा स्टूडेंट ऑफ द ईयर सम्मान तथा अपने बेहतरीन प्रोजेक्ट्स के लिए स्कॉलरशिप से भी सम्मानित किया गया है। इंटीरियर डिजाइनर्स के लिए जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के कौन कौन से रिसोर्सेस अभी अवेलेबल हैं?
0: अक्सर पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को ये जिज्ञासा रहती है कि आफ्टर कॉलेज होगा क्या, कितना पैकेज लगेगा, कहाँ नौकरी मिलेगी। तो मेरे हिसाब से मतलब इसके दो मेन सेक्टर है। एक आप गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं, रेलवे के भी जो नए नए रेनोवेशन के प्रोजेक्ट्स है या पुराने रेस्टोरेशन स्ट्रक्चर्स के प्रोजेक्ट्स है, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। या फिर आप मेरे हिसाब से कुछ साल का एक्सपीरियंस लेके कोई अच्छी डिजाइन फर्म में, वहां आप आपके सिस्टम्स पूरे मतलब सॉर्ट कर लेते हैं कि ऑफिस के सिस्टम्स कैसे होते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर पाते हैं, हाई एंड क्लाइंट्स हो पाते हैं आपके तब। तो वो सब चीजें सीख के 2-3 सालों में अगर आप खुद ही आपकी पहचान बनाए, अपने से फ्रीलांसिंग से प्रोजेक्ट्स ले या अपना स्टूडियो ओपन करे, तो इस तरीके से आपकी खुद की भी एक डिजाइन में जो आपकी आवाज है वो सब तक पहुंच पाएगी। और फिर आपकी मतलब कोई सीमा नहीं है कि काम, नाम और जो फीस आप ले
1: जी
0: पाओगे। शुरू में इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट जाता है एज ए फ्रीलांसर, पर अगर आपका काम अच्छा हो, लगन हो और अगर आप अच्छे से मतलब आपके फील्ड के लिए बहुत ही सिंसियरली डेडिकेटेड हो, तो फिर आप टॉप डिजाइनर्स में जरूर पहुंच जाओगे। आप सीखने पे शुरू में फोकस करें और एंड में मतलब धीरे धीरे थोड़ा स्टेबल ग्रोथ है इसका। इनिशियली थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, फिर बाद में
1: फिर एक लेवल पे
0: एक
1: जाके हम
0: लेवल में
1: सेटअप हो
0: जाके
1: जाते
0: सेट हो
1: हैं।
0: जाते हैं।
1: जी
0: सही हो रहा है।
1: अच्छा, किसी भी साइट पे आप जब विजिट करते हैं तो वहाँ क्लाइंट से आप कैसे डील करते हैं कि किसी भी साइट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसके लिए आप माइंड मेकअप करते होंगे, तो उसकी डिजाइनिंग आप कैसे करते हैं, कैसे डील करते हैं वो बताइए।
0: इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन, क्योंकि हमारे फील्ड में अगर हम क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं तो उसकी साइकोलॉजी उसका डेली का जो रूटीन है और उसकी फैमिली मेंबर्स में कितने लोग हैं, सबकी क्या क्या दिनचर्या है, क्या उनकी फंक्शनैलिटी की चीजें हैं, कैसे वो स्पेस को यूज करते हैं, ये सारी चीजें समझे बिना डिजाइन करना थोड़ा मुश्किल है. एंड आई डोंट थिंक कि ऐसा करना भी चाहिए, बिकॉज क्लाइंट के एक्सपेक्टेशंस कुछ और हो जाते हैं फिर, और हम हमारी पसंद की डिजाइन क्लाइंट पे थोपते हैं. तो
1: फिर वो उन्हें पसंद नहीं आता है।
0: जी
1: जी
0: बिल्कुल, उनकी जो

0: इच्छाएं हैं, उनके जो इंस्पिरेशन है, आजकल तो पिंटरेस्ट काफी यूज करते हैं क्लाइंट्स, तो वो सारे इंस्पिरेशन समझ के फिर आप उनको अपना कॉन्सेप्ट दिखाइए, मूड बोर्ड दिखाइए, मटेरियल का अभी रख रखाव कैसा है, कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स कैसी है, ये सब समझ के फिर आप उनको सजेस्ट करें. ऑन साइट भी जाना, वेंटिलेशन, सनलाइट, फिर इलेक्ट्रिकल, एचवैक, ये सब चीजें सॉर्ट करने के बाद ही साइट के तरफ एक्चुअल में प्रोसेस शुरू होती है कंस्ट्रक्शन की.
1: अच्छा, वैसे मैं
0: हाँ
1: भी
0: जी
1: इंस्टा पे रील्स देखता हूँ, तो उसमें
0: जी
1: आजकल प्री प्लान मॉडल्स आते हैं कि
0: जी
1: मेरे रूम का इंटीरियर ऐसा होना चाहिए, किचन का ऐसा होना चाहिए, तो बस क्लाइंट्स हमको प्री प्लान मिलते हैं, उसको हमारे हिसाब से एलोकेट करना होता है।
0: तो कई बार क्लाइंट्स को लगता है कि बस एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा ही हमको चाहिए,
1: हाँ
0: पर वो कभी कभी ये नहीं समझ पाते कि ये अपने पास जितनी जगह है उसके लिए ये अप्रोप्रिएट है
1: नहीं,
0: नहीं है, या उसको हम थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके फिर जैसे उनके पसंद का जैसे कोई कलर है तो हम वो चीज को ध्यान में रख ले, और जगह पे जो सूटेबल फंक्शनैलिटी के हिसाब से जो भी चीज सूटेबल है वैसा कुछ सजा दी साइट के तरफ एक्चुअल में प्रोसेस शुरू होती है कंस्ट्रक्शन की.
1: अच्छा, वैसे मैं
0: हाँ
1: भी
0: जी
1: इंस्टा पे रील्स देखता हूँ, तो उसमें
0: जी
1: आजकल प्री प्लान मॉडल्स आते हैं कि
0: जी
1: मेरे रूम का इंटीरियर ऐसा होना चाहिए, किचन का ऐसा होना चाहिए, तो बस क्लाइंट्स हमको प्री प्लान मिलते हैं, उसको हमारे हिसाब से एलोकेट करना होता है।
0: तो कई बार क्लाइंट्स को लगता है कि बस एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा ही हमको चाहिए,
1: हाँ
0: पर वो कभी कभी ये नहीं समझ पाते कि ये अपने पास जितनी जगह है उसके लिए ये अप्रोप्रिएट है
1: नहीं,
0: नहीं है, या उसको हम थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके फिर जैसे उनके पसंद का जैसे कोई कलर है तो हम वो चीज को ध्यान में रख ले, और जगह पे जो सूटेबल फंक्शनैलिटी के हिसाब से जो भी चीज सूटेबल है वैसा कुछ सजेस्ट करके एक मिक्स बना के आपकी डिजाइन प्रेजेंट करे, तब जाके मतलब वो सही से आगे बढ़ती
1: आगे
0: है
1: सही होता है।
0: गाड़ी.
1: बिल्कुल। अच्छा, बात करें कॉरपोरेट सेक्टर की,
0: जी
1: तो इसमें काम करना और फ्रीलांसर रहते हुए आपका एक्सपीरियंस कैसा होता है?
0: फ्रीलांसिंग इज लाइक वन मैन आर्मी, आप ही सब कुछ कर रहे हो, मतलब क्लाइंट नए ढूंढ के लाना, नेटवर्किंग बढ़ाना, वेंडर मीटिंग, ऑन साइट वर्क, प्रेजेंटेशन, सारी टेक्निकल टीम के साथ कोऑर्डिनेशन. सो ये आप तब कर पाते हो जब आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थोड़ा एक्सपीरियंस ले लिया है, 2-3 साल, पूरे मेथड्स एंड सिस्टम्स समझ लिए है, अपने वेंडर्स के साथ पहचान बना ली है, तो ये सब होने के बाद फिर हो जाता है वो चीज़. कॉर्पोरेट में एक अगर आपको स्टेबल ग्रोथ चाहिए कि फिक्स्ड इनकम है, लेस टेंशन, लाइक डेडलाइंस का प्रेशर होता है, एंड कई बार मैंने ये भी देखा है कि जो यंग डिजाइनर्स है वो स्विच कर लेते हैं फ्रीलांसिंग पे, बिकॉज जो मैनेजर होता है ही इज द फाइनल डिसीजन
1: यस,
0: मेकर, उनके हिसाब से ही डिजाइन पास होगी. तो अगर आप चाहते कि आपका भी एक रिकॉग्निशन हो, पहचान हो इस फील्ड में, तो कुछ साल बाद अगर आप खुद की स्टूडियो चालू कर ले या फ्रीलांसिंग, तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट ऑप्शन.
1: हाल ही में आप असम स्टेट के कुछ बड़े डिजाइन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं, और डिजाइन प्रैक्टिस के साथ युवाओं को इस क्षेत्र में करियर के लिए लगातार प्रेरित भी करती जा रही है,
0: जी
1: इस पे आप क्या कहना
0: धन्यवाद
1: चाहेंगी?
0: जी. मैं ये कहना चाहूंगी कि जब से मैंने ये करियर पाथ चूज किया है तो आई थिंक आजकल के विद्यार्थियों को भी मैं यही सलाह दूंगी कि बहुत ही ज्यादा आप सिंसियर और हार्ड वर्किंग रहे जो भी आप फील्ड में जा रहे हैं, तभी आप एक्सेल कर पाएंगे, बिकॉज टेक्नोलॉजी भी बढ़ते जा रही है, AI आ गया है, उसके बाद क्लाइंट्स भी काफी मतलब ट्रैवल्ड है, वेल ट्रैवल्ड यहाँ वहाँ घूमे हुए हैं, तो सबकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ चुकी है, अपडेटेड रखना काफी इंपॉर्टेंट है. और जो मैं प्रोजेक्ट्स अभी आसाम के ले रही हूँ, स्टिल अभी इनिशियल फेज में हूँ, मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट्स रेसिडेंस के कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ हॉस्पिटैलिटी के भी कंप्लीट हो चुके हैं, अभी धीरे धीरे मैं एक्सपांड कर रही हूँ, होपफुली मैं अपना एक स्टूडियो ओपन कर लूँ, तो फिर शायद मौका आए तो मैं फिर आऊंगी
1: जी
0: आकाशवाणी पे.
1: बिल्कुल, इसके लिए
0: थैंक
1: आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: यू.
1: इंटीरियर डिजाइनिंग में कौन कौन से नए ट्रेंड्स और टेक्निक्स हमें देखने को मिल रही है?
0: अगर हम अभी देखने जाए तो आज जो ट्रेंड है वो 6 महीने बाद पुराना हो चुका रहेगा. हाल फिलहाल में अगर बात किया जाए तो बायोफिलिक डिजाइन, मतलब नेचर को इंक्लूड करना, और सस्टेनेबल डिजाइन जिसमें हम लोकली अवेलेबल मटेरियल उसका यूज करके हम जब डिजाइन कर रहे हैं स्पेस, तो वो ज्यादा बेटर हो रहा है. तो इसमें आप बैम्बू, टेराकोटा, ये सब चीजों का इस्तेमाल करके लोकली सोर्स, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं बहुत दूर दूर से सामान आ रहा है एंड देन हम बोले कि ये सस्टेनेबल है, बिकॉज नहीं है.
1: नहीं,
0: मेरी ये सलाह रहेगी कि जो बड़े शहरों के विद्यार्थी हैं उनके पास तो एक्सपोजर है ही सही, पर जो Tier 2 और जो छोटे गांव के भी विद्यार्थी या जो जिज्ञासा रखते हैं इसमें, तो अब इंटरनेट ने ये पूरा, ये जो स्कीम्स है इसने काफी बढ़ावा दिया है क्राफ्टमैनशिप और आर्टिजन्स, वोकल फॉर लोकल, आज के युवक इस चीज से मतलब प्रेरणा लेके इस चीज में और आगे प्रगति करे.
1: वोकल फॉर लोकल को भी बढ़ावा देना
0: हाँ
1: चाहिए।
0: जी
1: अच्छा, आजकल हर जगह स्किल्स को होना भी जरूरी हो गया है।
0: बिल्कुल
1: हम एक डिजाइनर की नजर नजरिए से देखें, तो जैसे स्केचअप, कैड और एआई टूल्स सीखना जरूरी है कि नहीं?
0: मैं ये कहूंगी कि इससे आप दूर नहीं जा सकते, इसे अपना दोस्त बना लीजिए, क्योंकि अगर हम सीखेंगे नहीं तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। और एआई आपका दुश्मन नहीं, आपका दोस्त है। वो आपके कॉन्सेप्ट फटाफट क्रिएट करने में, 3D विजुअलाइजेशंस क्रिएट करने में और भी बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। तो जो सॉफ्टवेयर है, स्केचअप, ऑटोकैड, ये सब आपके कार्य में, जो आपकी सोचने की क्षमता है, जो भी कल्पना किया है आपने, उसमें मदद करने के लिए है। तो अगर हम इस चीज को अपना एज अ टूल बना के इस्तेमाल करें तो और भी सही है। और मेरे को लगता है कि ये बहुत जरूरी है, बिकॉज नहीं तो हम पिछड़ते जाएंगे और फिर मुश्किल हो
1: मुश्किल हो
0: जाएगा।
1: जाएगा,
0: हाँ
1: उसमें रह
0: जी,
1: नहीं पाएंगे।
0: हाँ जी।
1: अच्छा, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए इंटीरियर डिजाइनिंग में क्या अवसर होते हैं?
0: तो आप वहाँ वोकल फॉर लोकल ये चीज का ध्यान रखें। और जैसे ऑटोकैड है, स्केचअप है, ये सब ड्राफ्टमैन की भी जो जॉब होती है वो सारी चीजें भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट के भी निकलते हैं इस चीज के लिए रिक्रूटमेंट, तो वो भी आप कर सकते हैं।

0: सकते हैं, आपके लोकल जो कारपेंटर है इन सबसे जुड़िए। आजकल छोटी छोटी जगह में, गांव में भी लोग चाहते हैं कि हमारा घर सिस्टमेटिक बने। छोटी छोटी जगह की हम देखते हैं कि डिजाइनर्स अपने आप पेज को प्रमोट कर करके काफी फेमस हो गया है। सो आई थिंक इंटरनेट एक वरदान के रूप में हमें मिला है, तो इसका इस्तेमाल करके हम नई ऊंचाइयां जरूर छू सकते
1: सोशल
0: हैं।
1: मीडिया बहुत हेल्पफुल
0: हाँ
1: साबित होता
0: जी।
1: है। अच्छा, जो युवा साथी क्रिएटिव फील्ड्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें आप क्या सोशल मैसेज देना चाहोगे?
0: तो मोहन जी, आखिरी में मैं यही बोलना चाहूंगी कि सपने देखिए, सीखते रहिए और अपने विचारों पर विश्वास रखिए, क्योंकि आज की कल्पना ही कल की वास्तविकता बनती है।
1: जी, बहुत अच्छी प्रेरणादायक पंक्ति कही आपने। अच्छा, हमने सुना है कि आपको बचपन से ही रेडियो सुनने का भी शौक है, जिसमें आपने आकाशवाणी के सखी सहेली, आपकी फरमाइश और युवाणी जैसे लोगों के मन पसंदीदा कार्यक्रम सुने हैं। तो दो शब्द आप आकाशवाणी के लिए क्या कहना चाहेंगे?
0: आकाशवाणी से मतलब मेरा लगाव बचपन से ही रहा है, और जब भी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में मैं अगर ठहराव ढूंढती हूँ तो वो है एक कप चाय और आकाशवाणी रेडियो। तो आकाशवाणी से पुराना लगाव है, यादें हैं, नई नई चीजें मैंने हर बार सीखी है, और सखी सहेली जैसे पुराने कार्यक्रम में जो गपशप बातें होती है तो वो सब ट्रांसपोर्ट कर देती है हमको पुराने जमाने में, और वो चीज मैं आज भी सुनती हूँ और काफी मेरे लिए प्रेरणादायक होती है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी यही कामना रहेगी कि आकाशवाणी इसी प्रकार आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहे।
1: अच्छा, युवाणी के इस मंच के द्वारा आपने हमारे श्रोताओं के साथ डिजाइनिंग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें कही, इस स्टूडियो में आकर कैसा लगा?
0: स्टूडियो में आके सही में लगा कि आकाशवाणी का स्टूडियो हो तो ऐसा ही हो। पूरी फीलिंग है कि हाँ, यहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है, पूरा सेटअप भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वो जो एक कोई भी सरकारी ऑफिस में जाओ, दफ्तर में जाओ, तो उसकी एक अलग ही फीलिंग,
1: अलग फीलिंग आती है
0: रॉयल्टी, और वो जैसे आप समझ लो जैसे राष्ट्रपति भवन को भी
1: जी।
0: देख के जैसी वो फीलिंग आती है। तो अंदर से ऐसे लगता है कि ये अपना इंडिया काफी रिच है, कल्चरली भी और सोशली भी। और मुझे ऐसा लगता है कि बस मतलब इसका डेवलपमेंट और ज्यादा
1: और
0: होते
1: होना
0: जाए
1: चाहिए,
0: और आज
1: बिल्कुल।
0: के हमारे युवक और भी ज्यादा आकाशवाणी को प्रेम दें।
1: तो दोस्तों, ये थी बैतूल जिले की युवा इंटीरियर डिजाइनर रेणुका डांगे जी से खास बातचीत। रेणुका जी, इस सेगमेंट से जुड़ने के लिए युवाणी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, अब चलते हैं 90s के दौर में, क्योंकि हमारे आज के कार्यक्रम में गोठी कॉलोनी बैतूल की रेणुका डांगे ने सुनना चाहा हम साथ साथ है फिल्म फिल्म से अनुराधा पौडवाल और हरिहरन का गाया ये गीत। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये नगमा।

0: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: तो दोस्तों, इस ऐड के बाद अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट मनी मंत्र की ओर। आपको अक्सर लोग ये कहते मिल जाएंगे कि महीने के आखिरी तक जाते जाते पैसे बचते नहीं है। हमें ऐसा क्या करना होगा जिससे हमारे पैसे बच सके, क्योंकि कमाई इतनी नहीं है कि कुछ पैसे बचा सके। भले ही कमाई इतनी न हो, लेकिन अगर बचत की आदत नहीं है तो आप कभी भी पैसे बचा नहीं पाएंगे। दुनिया के जाने माने अरबपति वॉरेन बफेट भी बचत को इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा हथियार मानते हैं। दोस्तों, अमीर बनने के लिए आपको बचत करते आना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हम 40-30-20-10 का रिवर्स रूल समझते हैं। इसमें हमें 40% खर्च अपने रहन सहन और खान पान पर खर्च करना है, 30% खर्च बाहर घूमने और खाने फिल्म देखने के लिए, बाकी का 20% अपने कर्जों की भरपाई के लिए और बचा हुआ 10% अपने फाइनेंशियल गोल को मजबूत करने के लिए खर्च करना है। अगर आप कोई ऑफर या एडवर्टाइजमेंट देखकर अपने बजट के बजाय अपनी भावनाओं के आधार पर पैसा खर्च करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये इम्पल्सिव परचेजिंग होगी। ये चीज आपके बजट को बिगाड़ सकती है। अगर आप ज्यादा खर्चीले हैं तो आप पर कर्ज का दर्द बढ़ता जाएगा। हर किसी को सैलरी आने से पहले बजट तैयार कर लेना चाहिए। इस बजट में होम रेंट, लोन, किराना और स्कूल फीस जैसी जरूरी चीजों को प्रायोरिटी देना चाहिए। इसके लिए आप नोटबुक या बजट ऐप की मदद भी ले सकते हैं और जहां तक संभव हो अपनी जरूरत के हिसाब से खर्च करें। बजट बनाते समय हमें अपने खर्चों को ट्रैक करना आना चाहिए। ऐसा करने से आपको इतना तो पता लगेगा कि सैलरी किस तरह यूज कर रहे हैं। अपनी सैलरी से पैसा बचाने के लिए पिछले कुछ महीनों के खर्चों का एनालिसिस करें। इसे यह समझने में आएगा कि सेविंग्स के लिए हम कुछ खर्चों में कटौती कर सकते हैं। दोस्तों, हम सभी मोबाइल का इस्तेमाल जमकर करते हैं। हमें यह देखना चाहिए कि कौन सी टेलीकॉम कंपनी सस्ते और अच्छे प्लान दे रही है। इंटरनेट के लिए वाईफाई और ब्रॉडबैंड कनेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कम खर्च में ही परिवार के सभी लोग इसका आनंद उठा पाएंगे। तो दोस्तों, ये था आज का छोटा सा मनी मंत्र। अब दीजिए अनुमति अपने रेडियो होस्ट मोहन को। आपसे अगली मुलाकात होगी कल शाम 5:30 बजे। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। शाम के ठीक 6 बजे हैं और अब वक्त हो चला है आप सभी को हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से रूबरू करवाने का। तो पेश कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, आपसे कुछ देर बाद यानी शाम 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम गोधली। 6:30 पर होगा कार्यक्रम फिल्म संगीत और 6:50 पर कार्यक्रम सबरस में सुनिएगा भजन, गजल, कव्वाली और कुछ गैर फिल्मी गीत। आज शाम 7:20 पर हमारे किसान भाइयों का

पसंदीदा कार्यक्रम होगा ग्राम सभा, जिसमें आज बात होगी विश्व महासागर दिवस पर। साथ ही सामूहिक कृषि चर्चा करेंगे, धान की सुगंधित प्रजातियों की नर्सरी तैयार करें इस विषय पर। श्रृंखला में बातें होंगी खेती किसानी की, जानेंगे मौसम का हाल और बाजार भाव।

कुछ बातें कुछ गीत फिल्मी गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज रात 8 बजे और 8:25 पर सुनिएगा कार्यक्रम हमारा बैतूल में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून पर जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री संदीप पाटिल से सुमन की चर्चा। आपके मीत ये गीत ये कार्यक्रम होगा आज रात 10 बजे और 10:25 पर सुनिएगा सरकार के 12 वर्ष विज्ञान सशक्तिकरण आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित विशेष श्रृंखला पर आधारित ये कार्यक्रम। श्रोताओं ये थे हमारी आज की सभा के शेष कार्यक्रम और आइए डालते हैं एक नजर हमारे कल की सभा पर। श्रोताओं कल की सभा की शुरुआत होगी प्रातः 5:55 पर जिसमें 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम भक्ति धारा चिंतन। ये कार्यक्रम होगा सुबह 6:30 पर और 6:35 पर सुनिएगा श्री रामचरित मानस गान की संगीत में प्रस्तुति ए हरिहरन और रविंद्र साठे के स्वरों में।

लोक रंजनी लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा कल सुबह 6:45 पर और सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे क्लासिक फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोके से। सुबह सवेरे ये कार्यक्रम सुनेंगे आप 7:50 पर जिसमें हम आप तक पहुंचाएंगे कुछ जनोपयोगी सूचनाएं और सुनवाएंगे देशगान। सुबह 8:30 पर सुनिएगा एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग और 9 से 10 तक आप आनंद लेंगे विविध रंगी कार्यक्रमों का विविध भारती मुंबई से। जिले की चिट्ठी ये कार्यक्रम होगा कल सुबह 10 जो आकाशवाणी केंद्र भोपाल से अनुप्रसारित किया जाएगा और 10:05 पर हम आप लेकर हाजिर होंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पाती आपके गीत। महिला जगत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल सुबह 10:30 पर जिसमें बात होगी परिवार में संवाद से सौहार्द कैसे बढ़ाए इस विषय पर। साथ ही कार्यक्रम में आप सुनेंगे सखियों की पसंद और सेहत की पोटली में जानेंगे तनाव मुक्त जीवन और मानसिक स्वास्थ्य इस विषय पर जानकारी। कल सुबह 11 से शाम 5:30 तक सुनिएगा विविध रंगी कार्यक्रम विविध भारती मुंबई से और शाम 5:30 पर हमारे युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम होगा युववाणी जिसमें कल बात होगी वित्तीय जागरूकता सबके लिए आवश्यक इस विषय पर जानकारी। साथ ही कार्यक्रम के अंतर्गत सेगमेंट में आप जानेंगे सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी स्तंभ में होंगी अजब गजब दुनिया की जानकारी और कुछ फिल्मी गीत। माटी के स्वर ये कार्यक्रम होगा कल शाम 6:05 पर और 6:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम फिल्म संगीत। शाम 6:50 पर सुनिएगा कार्यक्रम सबरस और 7:20 पर हमारे किसान भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम होगा ग्राम लक्ष्मी जिसमें कल बात होगी बिरसा मुंडा शहीद दिवस पर। चित्र माधुरी फिल्मी गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम होगा कल रात 8 और 8:30 पर सुनेगा कार्यक्रम युगल गीत। आपकी पसंद ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल रात 10 और 10:30 पर कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत में सुनिएगा पंडित शिव कुमार शर्मा से संतूर वादन राग होगा किरवानी। श्रोताओं ये थे हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है।

श्रोताओं, कार्यक्रम गोधुली में अभी आप सुन रहे हैं शर्मा बंधु के गाए ये भक्ति गीत आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से।

0: 9 तारीख को जा रही हूँ ना अपनी जांच के लिए।
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

शर्मा बंधुओं के गाए भक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गोधुले में, और इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम से जुड़े हमारे तमाम श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं, और कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवाते हैं फिल्म स्वदेश से ये गीत।

विजय प्रकाश और साथियों का गाया ये गीत अभी आपने सुना फिल्म स्वदेश से। बोल जावेद अख्तर के थे और संगीत AR रहमान का। और श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं फिल्म मोहब्बतें से ये गीत। आवाज़ है लता मंगेशकर और उदित नारायण की।

0: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस बार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
5: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो,

0: सोनू निगम और अलका याग्निक का गाया ये गीत अभी आपने सुना फिल्म रिफ्यूजी से। इस गीत को संगीत से संवारा था अनु मलिक ने। और श्रोताओं, कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे फिल्म सरफरोश से अगला गीत, लेकिन उससे पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक।
1: नौ तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
2: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
1: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
3: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूंगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुंचते पहुंचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
2: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
4: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

निदा फाजली का लिखा ये गीत अभी आपने सुना, जिसे गाया था जगजीत सिंह ने। संगीत जतिन ललित का था और फिल्म सरफरोश से ये गीत आप सुन रहे थे। श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:50 हो चुके हैं। लीजिए पेश कार्यक्रम सबरस। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं भजन, गजल, कव्वाली और कुछ गैर फिल्मी गीत। तो आइए लेते हैं कार्यक्रम में सबसे पहले आनंद इस भक्ति रस का।

सिद्धार्थ मोहन का गाया ये भक्ति गीत अभी आपने कार्यक्रम में सुना, और श्रोता कार्यक्रम सब रस में आइए सुनते हैं अब अगली कव्वाली, जिसे गाया है नुसरत फतेह अली खान ने।

नुसरत फतेह अली खां की गई ये कव्वाली अभी आप सुन रहे थे और श्रोताओं इसी के साथ कार्यक्रम सबरस अब यही संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:10 होने को है। प्रादेशिक समाचार अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर।
4: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
5: बेटा,
4: पुलिस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे।
5: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
6: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो,
4: कहाँ
6: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव।
7: आरबीआई कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज रक्षा अलंकरण समारोह में प्रदान किए वीरता पुरस्कार। इंदौर में कल से शुरू होगा ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और कृषि मंत्रियों का सम्मेलन। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर कल से देश भर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन। और प्रदेश से राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए बीजेपी के महेश केवट और कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन ने दाखिल किया नामांकन। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए, जिसके तहत लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पाराशर, लेफ्टिनेंट कर्नल नीतीश भारती शुक्ला, मेजर आदित्य प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और रामेश्वर दुर्गा देशमुख को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकें इंदौर में कल से शुरू होंगी, जो 13 जून तक चलेंगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में जानकारी दी कि खाद्य हानि और अपव्यय आज पूरी दुनिया के सामने एक गंभीर चुनौती है, जिससे निपटने के प्रयासों समेत कई अन्य विषयों पर इस सम्मेलन में चर्चा की जाएगी।
10: खाद्य हानि और अपव्यय, जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से 1 अरब टन तक खाद्यान्न बर्बाद हो जाता है, उससे चिंता का विषय है। इस पर चर्चा होगी, इसको कैसे रोकें। छोटे किसान अगर फायदे की खेती करे अनाज के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, मछली पालन, ये आय बढ़ाने के लिए वैकल्पिक उपायों पर भी विचार करना पड़ेगा। और फूड स्टोरेज, खाद्य भंडारण की व्यवस्था कैसे सुधारें ताकि सुरक्षित रहे फूड। इसमें जो देश अलग अलग प्रयास कर रहे हैं, आपस में अपने अनुभव भी साझा करेंगे और विचार विमर्श भी करेंगे।
9: आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था और 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। पेश है एक रिपोर्ट।
11: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश की 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। अमन यादव के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
9: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कल से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देश भर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर प्रदेश के सभी जिलों में भी विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश से राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित उम्मीदवार मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश केवट और इसी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। भाजपा के दो उम्मीदवार तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल शनिवार को पहले ही राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित होकर भारत में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। सरकार के पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों पर पेश है एक रिपोर्ट।
7: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
12: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अवशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
7: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
13: हमने जो पौधा लगाया उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
7: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33 से 35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो

0: स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि ईंधन की निर्बाध आपूर्ति और ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। वहीं रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अर्पणा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किए गए देशव्यापी टीकाकरण अभियान में मध्य प्रदेश शीर्ष राज्यों में शामिल हो गया है। उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में 7,63,000 से अधिक पात्र बालिकाओं का सफलतापूर्वक एचपीवी टीकाकरण किया जा चुका है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश के कई जिलों में प्री मानसूनी गतिविधियां जोर पकड़ चुकी हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में प्रदेश के ग्वालियर, सागर, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर और भोपाल संभागों के कई जिलों में आंधी, गरज चमक और बारिश का अलर्ट जारी किया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि प्रदेश में मानसून 15 से 18 जून के बीच प्रवेश कर सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के 1,00,000 से अधिक संविदा अधिकारी और कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। वित्त विभाग ने आज इसके आदेश जारी कर दिए, जिसके तहत 1 अप्रैल 2026 से उनके पारिश्रमिक में 4.46% की वृद्धि लागू होगी। नीमच में 11 जून को आईटीआई पंजीयन मेला एवं करियर काउंसिलिंग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सीहोर के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में कल युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। सतना कलेक्टर ने आज सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों सहित विभागीय कार्यों की समीक्षा में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अमर शहीद बिरसा मुंडा बलिदान दिवस स्मरणोत्सव के तहत कल शहीद भवन भोपाल में निमाड़ी लोकगीतों की प्रस्तुति दी जाएगी। नर्मदापुरम जिले में जल जीवन मिशन के तहत ग्राम बिछुआ में नल जल योजना का हस्तांतरण ग्राम पंचायत को किया गया। शिवपुरी जिले की समस्त शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में 17 अगस्त 2026 की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। और बैतूल के सारणी और घोड़ा डोंगरी के पूर्व सैनिकों की बैठक कल सतपुड़ा ताप विद्युत ग्रस्त सारणी में आयोजित की जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

एफएम वेव 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। श्रोताओं, शाम के 7:20 हुए हैं। लीजिए पेश है हमारे किसान भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम किसानवाणी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको तक पेश कर रहे हैं कार्यक्रम ग्राम सभा।

कार्यक्रम ग्राम सभा सुनने वाले हमारे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम पहुंचे। मैं हूं आपका दोस्त दिलीप सिकरवार और कार्यक्रम है आपका अपना ग्राम सभा। आज विश्व महासागर दिवस है भैया, जानते हैं इस दिवस का जो प्रस्ताव है वो पहली बार रखा गया था और कहां रखा गया था? ये प्रस्ताव जो है ये रखा गया था ब्राजील के रियो डी जेनेरो में, और शिखर सम्मेलन में वहां पर यह बात उठ के आई थी कि महासागरों का जो महत्व है इनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनका जो योगदान है ना महासागर का, पृथ्वी पर बहुत बड़ा योगदान है, और उसे समझाने और समुद्र को प्रदूषण और अत्यधिक जो समस्याग्रस्त हो रहा है, अत्यधिक दोहन जो हो रहा है, उसे बचाने के लिए एकमात्र उपाय यही है कि हम सबको जागरूक रहना होगा, और यही इसका उद्देश्य भी था विश्व महासागर दिवस मनाने के पीछे। अच्छा, जब ये बात उठ के आती है, ये प्रस्ताव उठा था 1992 में ब्राजील में, तो 2008 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी गई। किसको? विश्व महासागर दिवस मनाने के लिए। आसानी से ऐसे समझिए, महासागर या समुद्र हमारी पृथ्वी के फेफड़े हैं, जैसे एक इंसान के शरीर में फेफड़े होते हैं, और स्वस्थ फेफड़े का होना बहुत जरूरी होता है, तभी शरीर अच्छे से काम कर पाता है। तो ऐसे ही महासागर की बात करें तो ये जो समुद्र हैं हमारी पृथ्वी के फेफड़े हैं, और इसे दुनिया की अधिकांश ऑक्सीजन का उत्पादन इसी से होता है। समझ रहे हैं आप बात को? आसानी से हमने आपको समझाया कि महासागर जो है ये फेफड़े रूपी होते हैं, और ऑक्सीजन, अब मान लीजिए ऑक्सीजन हमको मिलेगी नहीं, तो आप समझ ही जाएंगे क्या होगा। ऑक्सीजन मिलना बंद हुई तो शरीर का काम खत्म, ठीक बात है। इसी तरीके से जो महासागर हैं ये मौसम को नियंत्रित करते हैं। आप और हमारा संपूर्ण जो मानव जीवन है, मानव जाति है, इनको भोजन प्रदान करना, ऑक्सीजन देना, औषधि देना, ये सारा काम किसका है? इन्हीं महासागरों से जारी रहता है। देखिए कितना बड़ा काम है जो ये खामोशी के साथ करते रहते हैं, है ना। यदि इनका हम मुख्य लक्ष्य जानना चाहें कि क्या है, तो और गहराई से ऐसे समझें कि आम लोगों को महासागरों पर जो मानवीय गतिविधियां, जो भी काम हम लोग करते हैं, मानव मतलब हम लोग जो काम करते हैं, गतिविधियां मतलब हमारे द्वारा जो भी क्रियाकलाप चलते हैं, जो भी गतिविधियां कामकाज चलते हैं, वो उनके प्रभाव को सचेत करते हैं ये, और समुद्री संसाधन जो है इसके स्थायी उपयोग को बढ़ावा देते हैं। ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी आसानी से कि महासागर का होना हमारे आपके सबके जीवन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने वही बताया कि ये फेफड़े के हिसाब से काम करते हैं। अब फेफड़े यदि स्वस्थ नहीं है तो शरीर की हालत आप बेहतर समझ सकते हैं। मोटी मोटी बात हम करें तो ये जो है आज का दिन 8 जून जो है ये विश्व महासागर दिवस है, और ये दिन हमें याद दिलाता है एक स्वस्थ महासागर का, एक स्वस्थ ग्रह के लिए कितना आवश्यक महत्व है। समझ गए? एक सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि ठीक है ये सब मान ली भैया, बहुत बढ़िया काम है सब कुछ, लेकिन यदि महासागर ना होते तो? ऐसा सवाल आता है ना, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि मौसम और तापमान में भारी बदलाव आता है, और ये बदलाव अब जैसे अभी कुछ दिन पहले जब पारा 40 से ऊपर पहुंचा तो हम घबराने लगे, है ना, हाई गर्मी हो गई। तो यदि ये महासागर नहीं होते तो फिर पारा और ऊंचा जाता, क्यों? क्योंकि जो सूर्य के तपन है वो कंट्रोल ही नहीं होती। ये जो हम आपको बता रहे हैं विश्व महासागर दिवस के ऊपर जो चर्चा हम आपसे कर रहे हैं, उसके पीछे मकसद ही यही है कि हम उन चीजों को समझें तो कि प्रकृति हमारी कितनी दोस्त है, है ना। हमने हवा ली, कोई थैंक यू, कोई धन्यवाद नहीं दिया। हमने पानी लिया, कोई थैंक यू, कोई शुक्रिया, कुछ नहीं।
हमने सब कुछ लिया लेकिन अपने तरफ से क्या दिया, सोचा भी नहीं देने का। तो ये दिन यही याद दिलाता है, विश्व महासागर दिवस, पर्यावरण दिवस, जो भी खास दिन है, ये हमें याद दिलाते हैं कि हमें प्रकृति के प्रति आभारी रहना होगा, है ना। तो जो सवाल उठा था मन में कि यदि ये सब नहीं होता तो क्या होता, यही होता कि मौसम में बड़ा बदलाव, तापमान में भारी बदलाव होता और ये हमारे आपके शरीर पर साफ दिखता। दूसरी बात, महासागर जो है ये ऐसे राहत देता है, जैसे हमने कहा ना आपको कि सूर्य की भीषण गर्मी जब धरती पर आती तो यही महासागर जो है हमारा कवच बनता, हमारा आपका सबका कवच बन जाता। और महासागर नहीं होते तो फिर बारिश का जो चक्र है ये टूट जाता, पूरा रेगिस्तान में तब्दील हो जाता।

और बड़ी बात, ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो क्या होगा? जैसे हमने आपको शुरू में ही चर्चा में कहा कि सोचिए तो कि यदि ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या हम और आप जिंदा रह सकते हैं? है ना, सवाल ऐसा है कि जवाब तो एकदम सीधे आएगा मुंह पे कि भैया बिना ऑक्सीजन के हम कैसे रहेंगे। तो जब ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है तो हमको इसके प्रति सचेत रहना होगा, इसके प्रति सजग रहना होगा हमेशा। और भोजन जीवन, ये तो बिना इसके संभव ही नहीं है, अंत हो जाएगा, जलचरों का विनाश हो जाएगा, लाखों समुद्री प्रजातियां जो हैं, मछली हैं, जो भी हमारे मित्र कीट हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे, है ना, जो प्राणी खत्म हो जाएगा, जो जलचर हैं खत्म हो जाएंगे। तो फिर इसका तो ध्यान रखना पड़ेगा, खाद्य सामग्री ये भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पूरा सिस्टम ही चौपट हो जाएगा ना। तो आप अच्छे से समझ गए हैं कि विश्व महासागर दिवस मनाने के पीछे क्या सोच थी और हमें क्या करना चाहिए। भारी समस्या हो जाएगी, इसलिए मान के चलिए कि प्रकृति के दोस्त बनकर रहने में ही फायदा है, वरना दुश्मन तो हम वैसे निभा नहीं पाएंगे, क्योंकि देखते हैं ना कि जरा सा भी कहीं आंधी तूफान आती है तो फिर कैसी हालत हो जाती है हमारी, है ना। तो कुल मिलाकर यह है कि संतुलन बनाना केवल हमारा दायित्व नहीं, प्रकृति का दायित्व तो है ही, हमें उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, हमें उसको सहारा देना पड़ेगा, ना कि हम उसके खिलाफ खड़े हों। विश्व महासागर दिवस 8 जून पर यह चर्चा की हमने, और आज की ग्राम सभा जो है उसमें हम आपको खास बात और बताने वाले हैं, जिसमें धान की सुगंधित प्रजातियों जो किस्में हैं उस पर बात करेंगे, ग्रह वाटिका पर बातचीत करेंगे डॉक्टर जितेंद्र वर्मा साहब से, लोकगीत होंगे ही होंगे कार्यक्रम में, और होंगे क्या, आइए सुनी लेते हैं ये आदर्श रामायण मंडल नाहिया की टीम से प्यारा सा लोक भजन।

0: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: तो किसान भाइयों ने अभी संदेश के पहले जो लोकगीत सुना और इसे गाया था आदर्श रामन मंडल नाहिया के कलाकारों ने, और उससे पहले हमने आपको

0: चर्चा में सुनाया था, बताया था कि विश्व महासागर दिवस जो है इसको मनाने के पीछे क्या सोच है, और भली भांति एक सार ये था उसका कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि प्रकृति हमारी कितनी दोस्त है। अब आइए आपको मिलवाते हैं डॉक्टर जितेंद्र वर्मा से, कृषि शिक्षक हैं। ग्रह वाटिका की उपयोगिता पर हमने बातचीत की है, आइए सुनते हैं।
1: किसान भाई और राम राम। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र वर्मा साहब। आप कृषि के क्षेत्र में काफी जानकारी रखते हैं और आज हमने उनसे एक ऐसे विषय पर बातचीत की है जो आमतौर पर जुड़ा तो हुआ है हमसे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि छूट जाता है। विषय है ग्रह वाटिका। किस तरह से ग्रह वाटिका को आप उपयोगी बना सकते हैं, इसी विषय पर हमने बातचीत की है डॉक्टर जितेंद्र वर्मा साहब से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
2: धन्यवाद सर।
1: किस तरह से उपयोगी है किसान भाइयों के लिए ग्रह वाटिका?
2: देखिए किसान भाइयों, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है
1: जी।
2: और आजकल वर्तमान में क्या हो रहा है कि जो कृषि है वो रसायन पे आधारित हो गई है।
1: सही कह रहे हैं।
2: तो वर्तमान युग में अगर देखा जाए तो चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, कृषि ग्रह वाटिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। इसलिए किसानों के साथ साथ
1: जी।
2: जो गृहिणी है, जो घर का काम करती है, उनके लिए भी ग्रह वाटिका बहुत उपयोगी है।
1: जी।
2: इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि जो घर के आसपास या बालकनी या छत पर जो जगह बचती है
1: जी।
2: उसमें अपन पॉलीथीन का उपयोग करके या गमले का उपयोग करके या खाली स्थान का उपयोग करके
1: जी।
2: उसमें मिट्टी भरकर सब्जियां, फल और अन्य पोषक जो फसलें हैं
1: जी।
2: वो लगाकर अपनी जो घरेलू आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर सकते हैं।
1: जी।
2: और साथ ही साथ ग्रह वाटिका लगाने से जो मनोरंजन भी हो सकता है, समय की बचत हो सकती है, क्योंकि सब्जी लेने फल लेने के लिए हमें बाजार जाना पड़ता है,
1: जी।
2: तो समय की बचत होगी, आर्थिक लाभ भी होगा और जो हमारी घरेलू पोषण की आवश्यकताएं हैं उनकी भी पूर्ति होगी। इसके अलावा रसायन मुक्त ताजी फल एवं सब्जियां लगातार हमें प्राप्त होंगी।
1: पूरी तरह शुद्ध जो हम कह सकते हैं।
2: हाँ, पूरी तरह जो शुद्ध साग सब्जियां हैं,
1: जी।
2: फल है, वो भी हमें निरंतर मिलती रहेगी। यदि 5 से 7 व्यक्तियों का कोई घर है
1: जी।
2: तो उसकी पूर्ति के लिए 250 से 300 वर्ग मीटर जो क्षेत्रफल है
1: जी।
2: ग्रह वाटिका का वो पर्याप्त रहता है।
1: अच्छा।
2: उससे हमारी घरेलू आवश्यकताएं की पूर्ति होती रहती है।
1: अच्छा, कोई भी कर सकता है डॉक्टर साहब ये?
2: जी बिल्कुल। यदि कोई रिटायर पर्सन है
1: जी।
2: या गृहिणी है या बच्चे हैं, वो भी क्या है, इस पे सिंचाई हुई, खरपतवार नियंत्रण हुआ, ये छोटे छोटे काम कर सकते हैं ग्रह
1: जी
2: वाटिका में।
1: बिल्कुल।
2: और इससे स्वास्थ्य लाभ भी होगा, जो वातावरण है घर का वो भी शांतिपूर्ण बना रहेगा, पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा, सेहत भी सही रहेगी, तनाव मुक्त रहेंगे, ये सारे लाभ भी हैं इसके ग्रह वाटिका के।
1: जी। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहले ये घरों में हुआ करती थी आमतौर पे, अपन देखते थे ना, एक कॉन्सेप्ट था घर में,
2: जी बिल्कुल।
1: या अपन बोलते थे ना कि घर से ही एक नर्सरी टाइप होता
2: जी
1: था।
2: जी
1: आजकल थोड़ा सा कुछ इस तरफ से लोगों का ध्यान हटता जा रहा है।
2: नहीं तो अभी वर्तमान में क्या है, लोग थोड़ा सा आलसीपन हावी हो गया है, क्योंकि
1: जी।
2: जो वर्तमान परिदृश्य है इसमें लोग भाग दौड़ ज्यादा हो गई है, किसी के पास समय नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा आप समय निकाल लीजिए, आधा या 1 घंटा का डेली आप निकालते हैं
1: जी।
2: तो आसानी से ग्रह वाटिका को आप कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि हमारी जो एक्सरसाइज है वो भी हो जाएगी, क्योंकि हमें सिंचाई करना है, निराई गुड़ाई करना है और जो फसलों में समस्याएं हैं उनका भी निदान करना है, तो हम दिन भर में 1-2 घंटे ग्रह वाटिका को दे

0: हमारी जो एक्सरसाइज है वो भी कर सकते हैं, तनाव मुक्त रह सकते हैं
1: जी।
0: तो इसलिए मैं कहूंगा कि कम से कम 1 घंटे हम डेली ग्रह वाटिका को दे सकते हैं और हमारी जो आवश्यकता है उनको पूरा कर सकते हैं।
1: अच्छा, कैसे शुरुआत करना चाहिए आपको?
0: देखिए, ग्रह वाटिका को कैसे बनाएं?
1: जी हाँ,
0: ये बहुत बड़ा सवाल है।
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो मैं बताना चाहता हूँ कि आपको आपके घर में जो स्थान खाली है वहाँ पर ऐसा स्थान आपको चुनना है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश
1: जी
0: अच्छी तरह से आता हो, हवा का आवागमन अच्छा हो,
1: जी
0: ऐसे स्थान को आप ग्रह वाटिका के लिए चुन सकते हैं।
1: जी।
0: दूसरा, आपने चुनाव तो कर लिया कौन से स्थान पर ग्रह वाटिका लगाना,
1: जी
0: आपको अब चुनना है कौन सी फसल या पौधे हम ग्रह वाटिका में लगा सकते हैं।
1: बहुत सुंदर बात।
0: तो हम जो मौसमी सब्जियां हैं, मौसम आधारित सब्जियां हैं, उनको ग्रह वाटिका में लगा सकते हैं। साथ में फल जैसे नींबू, अमरूद और औषधीय फसलें या पौधे भी लगा सकते हैं। अब बात आती है कि हमने फसल तो लगा ली पर उसमें खाद वगैरह का कैसे क्या करना है, कौन सा खाद डालना है। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो घर से निकला हुआ आपका जैविक कचरा है उससे आप कंपोस्ट या जैविक खाद तैयार कर सकते हैं। तो उसका उपयोग आप ग्रह वाटिका में जो फसलें लगाते हैं उसमें कर सकते हैं। इससे आपको दूसरा लाभ ये भी होगा कि जो आपका गीला या जैविक कचरा है उसका भी सदुपयोग हो जाएगा। अगला है, आपको इसकी देखभाल कैसे करना है।
1: जी।
0: तो आपको क्या करना है, निरंतर पौधों को पानी देना है, सिंचाई करना है। इसके अलावा जब कीट पतंगे या कीड़े लगते हैं फसलों में
1: जी,
0: उनका उचित उपाय जैसे जाली का प्रयोग कर सकते हैं
1: जी,
0: या जैविक दवाओं जैसे नीम के तेल आदि का प्रयोग कर सकते हैं।
1: अच्छा, ये एक चीज आपने बताई, एक तो हमारे किसान भाइयों के लिए काफी उपयोगी चीज है
0: जी।
1: दूसरी बात, क्या कोई भी किसान जिले का, कोई भी किसान जिसके पास जगह हो या कम हो
0: जी,
1: क्या वो ग्रह वाटिका का काम कर सकता है?
0: जी बिल्कुल कर सकता है।
1: अच्छा।
0: अगर ज्यादा जगह है आपके पास तो आप आपकी घरेलू आवश्यकताओं के अलावा उसको बाजार में बेच भी सकते हैं, तो आपको आर्थिक लाभ भी हो सकता है। तो चाहे ग्रामीण परिदृश्य का किसान हो
1: जी,
0: या फिर शहरी परिदृश्य का, सभी किसान भाई ग्रह वाटिका लगा सकते हैं।
1: अच्छा, मोटे मोटे यदि हम संक्षेप में बात करें तो ग्रह वाटिका में कौन कौन से पौधे आसानी से लिए जा सकते हैं?
0: देखिए, एक तो मैं बताना चाहूंगा, मौसमी जो सब्जियां हैं जैसे पालक हुई, मूली हुई, गाजर हुई, मेथी हुई, इसके अलावा जो बेल वाली फसलें हैं जैसे लौकी, कद्दू, तोरई, ये भी लगा सकते हैं। और जो फल वाली फसलें हैं या पौधे हैं जैसे अमरूद, नींबू, अनार, केले, ये भी आप ग्रह वाटिका में लगा सकते हैं। साथ ही जो औषधीय पौधे हैं जैसे अपराजिता है उसको भी आप लगा सकते हैं। और दूसरी बात है कि हम पौधों का चुनाव करने के बाद कि कौन से पौधे को कहाँ पर लगाना है ग्रह वाटिका, तो जो जब अपन ग्रह वाटिका लगाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्यारी बनाना पड़ेगा।
1: बिल्कुल ठीक।
0: तो जो क्यारी है उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि जो किनारे पर आपको फल वाले पौधे लगाने हैं।
1: अच्छा अच्छा।
0: और ऐसे स्थान पर लगाना है कि उनकी जो छाया है वो दूसरी फसलों पर नहीं पड़े।
1: अच्छा।
0: और दूसरी बात है, आपको जो जड़ वाली फसलें जैसे मूली है, गाजर है, चुकंदर है, तो ऐसी फसलों को आपको जो क्यारी है उसके मेड़ों पर लगाना है।
1: अच्छा अच्छा।
0: और जो अन्य फसलें हैं जैसे बेल वाली फसलें हैं उनको आपको सहारे की आवश्यकता होती है क्योंकि उनको, तो आपको जहाँ पे जाली या जो आपकी
1: कोई भी ऐसा
0: घेरा रहता है, जहाँ पे आपका बाउंड्री रहती है, उसके पास लगाना है क्योंकि बेल वाली फसलों को सहारे की आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीजों को किसान भाइयों को या गृहिणी को ध्यान में रखना।

0: अच्छा, इसके लिए अतिरिक्त समय की जरूरत तो होती नहीं है।
1: जब आप, क्योंकि सभी लोग क्या करते हैं, सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं या घूमने या टहलने जाते हैं, तो उसी समय का आप सदुपयोग ग्रह वाटिका को देकर कर सकते हैं। क्योंकि ग्रह वाटिका में क्या होता है, पौधे को हमें पानी देना या सिंचाई करना है। अगर उसमें जो दूसरे पौधे या खरपतवार उग गए हैं तो उनकी निराई गुड़ाई करना है, उनको निकालना है। और जो कीट वगैरह या आपके कोई रोग लग जाता है तो उनके लिए आपको जैविक दवाइयों का उपयोग करना

0: अगर उसमें जो दूसरे पौधे या खरपतवार उग गए हैं तो उनकी निराई गुड़ाई करना है, उनको निकालना है, और जो कीट वगैरह या आपके कोई रोग लग जाता है तो उनके लिए आपको जैविक दवाइयों का उपयोग करना है, ये सारी चीजें आपको करना है, तो अतिरिक्त समय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
1: बहुत सुंदर बातचीत। अब थोड़ा सा संक्षेप में ये बता दीजिए कि क्या करना है किसान भाइयों को और क्या नहीं करना है।
0: जी, किसान भाइयों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि गृह वाटिका की जो आपको लगाना है तो उसके कुछ सिद्धांत हैं। जैसे आपको ज्यादा फैलने वाले या बड़े पौधे गृह
1: अच्छा
0: वाटिका में नहीं लगाने,
1: ठीक।
0: क्योंकि अगर अपन ऐसा करेंगे तो आपके जो घर है या ग्रह है उसको भी नुकसान
1: दिक्कत
0: हो
1: हो
0: सकता है।
1: सही
0: और
1: कहा।
0: दूसरा दूसरी जो फसलें अपन लगाते हैं या सब्जियां लगाते हैं उसकी छाया से उनको उनके ऊपर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो किसान भाइयों को ये सारी चीजों का ध्यान रखना है, और उनको साथ में ध्यान रखना है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो फसल को निरंतर मिलता रहे, हवा का आवागमन निरंतर हो,
1: जी
0: ये सारी चीजें किसान भाइयों को ध्यान रखना है। और लास्ट में अंत
1: जी
0: में मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ कि किसान भाइयों, अगर आप गृह वाटिका लगाते हैं
1: जी
0: जिसको कि आजकल पोषण वाटिका के नाम
1: वाटिका
0: से
1: जी
0: भी जाना जाता है, पोषण वाटिका इसलिए कहते हैं क्योंकि फल और सब्जियों से हमें पोषण मिलता है,
1: जी हाँ जी
0: तो हमें गृह वाटिका को इसलिए लगाना चाहिए कि इससे हमारा स्वास्थ्य को भी लाभ होगा, रसायन मुक्त हमें फल सब्जियां मिलेंगी,
1: बिल्कुल
0: मनोरंजन भी होगा हमारा, जो हमारे घर का आसपास का वातावरण है
1: जी
0: वो भी शुद्ध रहेगा, शांतिपूर्ण रहेगा, और पर्यावरण को भी जैव विविधता जो
1: जी
0: इस छोटे लेवल पर जैव विविधता है वो भी विकसित होगी।
1: और सेहत तो बनेगी ही बनेगी
0: जी बिल्कुल,
1: है ना।
0: सेहत तो बनेगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी हमारे किसान भाइयों के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी हमारे किसानों के लिए उपयोगी साबित होगी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
2: हमारे किसान भाइयों ने सुना डॉक्टर जितेंद्र वर्मा साहब को, आप बता रहे थे कि किस तरह से आप गृह वाटिका लगाकर अपने घर में अपने जहाँ भी खाली जमीन हो वहाँ पर फायदा ले सकते हैं, और शुद्ध जो हम बोलते हैं ना कि बाजार में शुद्ध सब्जियां और ये सब भी मिलती, तो आप इसका खुद ही लगा के उपयोग कर सकते हैं। आइए सुनते हैं ये लोक भजन आदर्श रामन मंडल नाहिया की टीम द्वारा।

0: मामा, 9 तारीख को जा रही हूँ ना अपनी जांच के लिए।
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: किसान भाइयों, जब भी हम धान की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो आता है बासमती का आता है। इसके अलावा धान की दूसरी सुगंधित किस्मों की लंबी लिस्ट है। वैसे आपको मालूम होगा कि पूसा बासमती, पूसा सुगंध, पूसा

H60, बासमती 370 और कस्तूरी। अब कस्तूरी तो देखिए नाम में ही महक है। ये जो हमने बात बताई ये लंबे दाने वाली किस्म है चावल की, जैसे पुलाव और इसमें हम उपयोग में लाते हैं। ऐसे ही छोटे दानों की बात करें तो इनमें काला नमक हो गया है ना, ये उन्नत रूप से पूसा नरेंद्र KNI है, और गोविंदो भोग मुख्य तौर पर पश्चिम बंगाल में ज़्यादा पाई जाती है। जीरा साल हो गया, तमिलनाडु दक्षिण भारत की जो बात करें है ना, ये प्रमुख किस्में हैं धान की। राजेंद्र कस्तूरी और बिहार के क्षेत्रों में ये बहुत प्रचलित है, राजेंद्र कस्तूरी। एक और जो है जोहा चावल के नाम से काफ़ी पसंद किया जाता है। ये कुछ किस्मों की बात करी हमने बासमती चावल को लेके, और आपके ध्यान में कोई और किस्में हों तो हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए अब आज के बाजार भाव पर एक नज़र डालते हैं। सोयाबीन 6,000 रुपये न्यूनतम रहा, अधिकतम 6,926 रुपये। सरसों 6,500 रुपये, अधिकतम 7,600 रुपये। गेहूँ 2,300 रुपये, अधिकतम 2,600 रुपये। मक्का 1,450 रुपये, अधिकतम 1,850 रुपये। चना 4,800 रुपये, अधिकतम 5,460 रुपये। मसूर 6,500 रुपये से 8,500 रुपये। और बाजरा 2,100 रुपये से 2,385 रुपये। ये थे आज के बाजार भाव। अब वक्त हो रहा है आज की ग्राम सभा से आपसे अनुमति लेने का, तो अपने दोस्त दिलीप सिकरवार को दीजिए अनुमति। जय राम जी की, जय जवान जय किसान।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे किसान भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम सभा। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। रात्रि के ठीक 8 बजे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। कार्यक्रम सुन रहे तमाम श्रोताओं का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, और कार्यक्रम में हम आपसे करेंगे कुछ बातें और सुनवाएंगे गीत। तो कार्यक्रम में पहले सुनते हैं फिल्म किक का ये नगमा।

0: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। दोस्तों, हम में से कोई भी बीमार नहीं पड़ना चाहता। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें बहुत परेशानी होती है, ऊपर से इसका खर्चा भी उठाना पड़ता है। हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, ना हम स्कूल जा पाते हैं, ना ही

की जगह पर। पैसा कमाना तो दूर, हम घर वालों की मदद तक नहीं कर सकते। उल्टा शायद उन्हें बीमारी में हमारी देखभाल करनी पड़ती हो, और तो और कई बार इलाज करवाने और दवाइयाँ खरीदने के लिए भी बहुत से पैसे लग जाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि इलाज करवाने से बेहतर है कि हम एहतियात बरतें ताकि हम बीमार ही ना हो। माना कि कई बीमारियों से हम बच नहीं सकते, लेकिन हम कुछ ऐसे कदम उठा जरूर सकते हैं जिन्हें अपनाने से बीमारी होने का खतरा कम हो जाता है, और कई मामलों में तो शायद हमें बीमारी हो ही नहीं। आइए, ऐसी ही कुछ बातों पर आज आप तक हम जानकारी पहुंचा रहे हैं। कार्यक्रम में हम बात करेंगे साफ सफाई की, और उससे पहले सुनते हैं ये गीत।

0: 9 तारीख को जा रही हूँ ना अपनी जांच के लिए।
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: दोस्तों, साफ सफाई का ख्याल रखिए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का भी मानना है कि बीमारी से बचने और उसे फैलने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है अपने हाथ धोना। गंदे हाथों पर कीटाणु होते हैं और जब हम गंदे हाथों से नाक पोंछते हैं या आंखें मलते हैं तो सर्दी, जुकाम और फ्लू जैसी बीमारियां आसानी से फैल जाती हैं। ऐसी बीमारियों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है समय समय पर अपने हाथ धोते रहना। अगर हम साफ सफाई का अच्छा ध्यान रखते हैं तो हम निमोनिया और दस्त जैसी गंभीर बीमारियों से भी बच सकते हैं।

0: 9 तारीख को जा रही हूँ ना अपनी जांच के लिए।
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 9 तारीख को नजदीकी

0: सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: दोस्तों, अच्छी सेहत के लिए साफ पानी का इस्तेमाल करना भी आवश्यक है। कई देशों में साफ पानी आसानी से नहीं मिलता, इसलिए लोगों को हर रोज अपने परिवार के लिए साफ पानी का इंतजाम करना पड़ता है। लेकिन जिन देशों में यह समस्या नहीं है, वहाँ भी बाढ़, आंधी, तूफान, पानी की पाइप टूटने या किसी दूसरी वजह से साफ पानी मिलना मुश्किल हो सकता है। अगर पानी साफ जगह से नहीं आ रहा है या अच्छे से नहीं रखा गया है, तो इससे हमारे पेट में कीड़े पड़ सकते हैं और हमें हैजा, जानलेवा दस्त, टाइफाइड, हेपेटाइटिस और दूसरी बीमारियां हो सकती है। दोस्तों, हम कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जिससे हमारी सेहत सुधर सकती है और कई मामले में तो शायद काफ़ी समय तक हमें बीमारियां हो ही नहीं। हैजा आमतौर पर ऐसे पानी या खाने से फैलता है जो हैजे से पीड़ित व्यक्ति के मल से दूषित हो। पानी से आम तौर पर फैलने वाली या किसी बाढ़ भूकंप के बाद फैलने वाली बीमारियों में से बचने के लिए आप इन उपायों का अपना सकते हैं और आप सभी से अपील करते हैं कि साफ़ सुथरा और उबला हुआ पानी ही इस्तेमाल करें।

0: दोस्तों, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपने खान पान का भी ध्यान रखना आवश्यक है। अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है कि आप पौष्टिक खाना खाएं। इस बात का ध्यान रखें कि आपके खाने में नमक, चिकनाई और मीठा सही मात्रा में हो, और आप ज़रूरत से ज़्यादा खाना ना खाएं। तरह तरह की फल और सब्जियां खाएं। ब्रेड, अनाज, नूडल्स और चावल जैसी चीज़ें खरीदते वक्त उनके पैकेट पर दी गई जानकारी पर ध्यान दें। दोस्तों, छिलकेदार अनाज सेहत के लिए मैदे से बनी चीज़ों से बेहतर हो सकता है। तो इस तरह आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखिए। और अब इसी के साथ कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत से दीजिए अपने रेडियो दोस्त संदेश खड़तकर को इजाजत। नमस्कार। FM वेव 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। लीजिए पेश कार्यक्रम हमारा बैतूल। इस कार्यक्रम में आप सुनने जा रहे हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून पर जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप पाटिल से सुमन की चर्चा।
1: हमारा बैतूल।
2: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम हमारा बैतूल में आप सभी का स्वागत है। कल यानी रविवार 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस था, यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। अब इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य दूषित भोजन और पानी से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। सची है दोस्तों, दुनिया भर से मिले आंकड़े बताते हैं कि असुरक्षित या दूषित भोजन के कारण हर साल लाखों लोग बीमार पड़ते हैं। तो अब खेत से लेकर थाली तक भोजन को और पानी को शुद्ध रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसी खाद्य का विषय पर केंद्रित है हमारा आज का ये प्रोग्राम हमारा बैतूल, जिस पर जानकारी के लिए आज हमने हमारे स्टूडियोज में आमंत्रित किया है जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री संदीप पाटिल जी को। संदीप पाटिल जी, आज के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब सबसे पहले आपसे हम सुरक्षित खाद्य पदार्थ हमारे जीवन में क्यों जरूरी है इस विषय पर जानना चाहेंगे।
3: सुरक्षित खाद्य पदार्थ हमारे जीवन में इसलिए जरूरी है क्योंकि सुरक्षित खाद्य पदार्थ से ही हमारा शरीर बनता है। हम किस प्रकार विकसित होंगे, हमारा माइंडसेट क्या होगा, ये अच्छे भोजन पर निर्भर करता है। जितना अच्छा भोजन हम लेंगे, उसमें जितने अच्छे विटामिन्स, प्रोटीन्स ये सब आपको मिलेंगे, उतना अच्छा आपका विकास होगा।
2: अब ये बताते चलिए कि खाद्य जनित बीमारियों का खतरा क्यों और कैसे बढ़ता है और इससे निपटने के लिए क्या क्या किया जा सकता है।
3: खाद्य जनित जो बीमारियां होती हैं उसमें बहुत सारे कारक होते हैं, जैसे दूषित भोजन का जैविक संदूषण हो सकता है, बैक्टीरिया वगैरह के कारण वो खराब हो सकती है, कभी कभी रासायनिक संदूषण भी होता है कि उसमें कोई केमिकल्स मिल गए, इस कारण भी रखरखाव के अभाव में वो खराब हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ व्यक्तियों को किसी विशेष खाद्य पदार्थ से एलर्जी होती है, तो ऐसे खाद्य पदार्थ खाने के कारण भी हम बीमार।
2: अच्छा, कई कारण है। ये बताइए कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम है ये क्या है।
3: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, जिसे हम FSSAI के भी नाम से जानते हैं, भारत में खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण का विनियमन करने के लिए बनाया गया, ताकि आम व्यक्ति को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराया जा सके।
2: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसे आप FSSAI कहते हैं, ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक निकाय है ना।
3: हाँ, ये बात सही है।
2: इसकी जवाबदारी होती है कि ये खाद्य पदार्थों की सुरक्षा की निगरानी करे। तो कैसे किया जाता है ये?
3: जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम है उसका बड़ा विस्तृत अधिनियम है, और इसका मूल उद्देश्य है विज्ञान आधारित मानक तैयार करना। मानकों को तैयार किया जाता है कि किस खाद्य पदार्थ

0: में किस तरीके के मानक होने चाहिए। जैसे हम गाय का दूध लेते हैं तो उसके मानक तय किए गए हैं कि 3.5 फैट से कम नहीं होना चाहिए।
1: अच्छा।
0: और जो SNF है वो 8 से कम नहीं होना चाहिए।
1: अच्छा।
0: तो इस प्रकार एक वैज्ञानिक आधारित मानक तैयार किए जाते हैं। पहले भारत में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 आने के पहले बहुत सारे कानून थे। ये जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम आया है इसने सारे कानूनों को एकत्रित कर दिया।
1: अच्छा।
0: अब भारत में सुरक्षित भोजन के लिए सिर्फ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम है और इस अधिनियम के साथ जन स्वास्थ्य की रक्षा भी जुड़ा हुआ है कि आम आदमी तक सुरक्षित भोजन कैसे पहुंचाया जाए।
1: तो खाद्य सुरक्षा की दिशा में सरकार द्वारा किस तरह के प्रयास हो रहे हैं?
0: हर जिले में एक अभित अधिकारी होता है, उसके नीचे खाद्य सुरक्षा अधिकारी काम करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य हमारा ये होता है कि हम बाजार में सुरक्षित भोजन उपलब्ध करा सके।
1: अच्छा।
0: इसके लिए हम लगातार नमूना संग्रहित करते हैं, नमूनों की जांच कराते हैं, चलित खाद्य प्रयोगशाला के माध्यम से नमूने लिए जाते हैं, कुछ नमूने हमारे द्वारा एकत्रित करके राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे जाते हैं और अगर नमूनों में कुछ कमी पाई जाती है, मानकों में कुछ कमी पाई जाती है तो प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर बाकी की कार्रवाई की जाए।
1: अब आपने इस मुद्दे पर बात की तो बाहर का खाना यानी स्ट्रीट फूड लेते समय किन चीजों का ध्यान आम लोगों को रखना चाहिए और इनकी स्वच्छता को बनाए रखने के लिए किस तरह से सरकारी नियम और गाइडलाइंस है?
0: बाहर से जब हम भोजन लेते हैं तो हमको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला तो ये देखना चाहिए कि जिस खाद्य कारोबारकर्ता से हम भोजन ले रहे हैं उसकी दुकान में FSSAI का लाइसेंस लगा है। अगर उसकी दुकान में FSSAI का लाइसेंस लगा होगा तो उसको पता होगा कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए भोजन तैयार करते समय, क्योंकि वो लाइसेंस लेता है तो उसको उसके नियमों का भी पालन करना होता है। जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं या किसी होटल में जाते हैं तो ये जरूर देख लें कि उसमें FSSAI का लाइसेंस है या नहीं। दूसरा काम, जो चीजें बहुत चटकदार रंगों में होती है, जैसे हम कई बार जाते हैं फास्ट फूड की दुकान पे जाते हैं, कुछ दुकान पे देखते हैं कि जो पकवान है वो थोड़े फीके हैं, कुछ दुकानों पे देखते हैं कि बहुत चटकदार हैं, तो ये जो चटकदार खाद्य पदार्थ हैं इससे हमको बचना चाहिए, क्योंकि रंगों में कोई स्वाद नहीं होता है, सिर्फ वो हमको भ्रमित करते हैं कि वो अच्छे हैं।
1: इसी बात पर ये बताते चलिए कि खाद्य अपमिश्रण क्या है और इसे कैसे रोका जा सकता है।
0: खाद्य अपमिश्रण जो खाद्य पदार्थ है उसमें कुछ मिलावटखोर अपने फायदे के लिए सस्ते और दूषित खाद्य पदार्थ मिला देते हैं, यही एक प्रकार का खाद्य अपमिश्रण है। कई बार ऐसा होता है कि खाद्य पदार्थ की डेट निकल जाती है उसके बाद भी उनको बेचा जाता है। कोई भी खाद्य पदार्थ हो जब हम उसको लेकर आते हैं तो उसकी एक सेल्फ लाइफ होती है। सेल्फ लाइफ के बाद प्रोटीन्स विटामिन्स वगैरह की जिस मात्रा की हमको आवश्यकता है वो नहीं बचती है।
1: बिल्कुल।
0: तो ऐसे खाद्य पदार्थ भी अपमिश्रण की श्रेणी में आते हैं।
1: अगर किसी के द्वारा या कहीं खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया जाता है तो किस तरह की कार्रवाई हो सकती है या किस तरह की कार्रवाई का प्रावधान है?
0: खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के अंतर्गत अलग अलग धाराओं में अलग अलग सजा के प्रावधान है। जैसे मान लीजिए कि किसी ने अवमानक खाद्य पदार्थ, अवमानक खाद्य पदार्थ मतलब जिस क्वालिटी का उसको होना चाहिए उससे थोड़ी सी निम्न क्वालिटी का, ऐसा खाद्य पदार्थ अवमानक खाद्य पदार्थ के लिए।
1: अच्छा।
0: इसके लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में 5,00,000 तक के जुर्माने का दंड है।
1: अच्छा।
0: अगर कोई मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ बेचता है तो उसमें 3,00,000 रुपए तक का दंड है और कोई अगर ऐसा खाद्य पदार्थ बेचता है जिसको खाकर किसी को क्षति हो सकती है, बहुत ज्यादा बीमार हो सकता है, तो इस प्रकार का खाद्य पदार्थ बेचने पे उसको 6 माह से लेके आजीवन कारावास हो सकता है।
1: अच्छा।
0: और जुर्माना भी हो सकता है जो 10,00,000 रुपए से कम नहीं होता।
1: अच्छा। अब कुछ घरेलू सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि बाजार में मिलने वाले फल सब्जियों में केमिकल या मिलावट की पहचान आम आदमी कैसे करे?
0: देखिए, जो फल नेचुरली पकता है, जो प्राकृतिक रूप से फल पकता है उसकी सुगंध बहुत मीठी होती है। आपने देखा होगा कि हमारे पूर्वज जब बाजार जाते थे तो फल को थोड़ा सा सूंघ कर देखते थे। जिस फल में बहुत अच्छी मीठी गंध आती है वो फल बहुत अच्छा होता है। साथ में हमको ये भी देखना चाहिए कि जो फल हम ले रहे हैं वो जब प्राकृतिक रूप से पकता है तो एक समान पकता है, जो फल अप्राकृतिक रूप से पकाया जाता है वो एक तरफ से बहुत ज्यादा पक जाएगा, दूसरे तरफ से बहुत कच्चा रहेगा। कई बार आपने सुना होगा कि तरबूज में इंजेक्शन लगाकर उसको लाल कर दिया जाता है।
1: बिल्कुल।
0: इसमें भी ऐसा होता है कि अगर आप फल को काट कर देखेंगे जिस जगह से हम इंजेक्शन लगाते हैं उस जगह से वो थोड़ा सा नरम सा हो जाएगा,
1: अच्छा,
0: उसकी जो लाल गुदा होता है वो भी असामान्य रूप से लाल होगा, कहीं ज्यादा लाल होगा कहीं कम लाल होगा।
1: अच्छा,
0: और अगर प्राकृतिक रूप से पकाए तो एक समान लाल होगा। तो इस तरीके से हम उसकी पहचान कर सकते।
1: क्या बैतूल के बाजारों में या बैतूल जिले में ऐसी कोई समस्या सुनने या देखने को मिलती है?
0: बैतूल जिले में एक आदिवासी बहुल्य जिला है हमारा, और सबसे अच्छी बात है कि बैतूल जिले में जो सब्जियां आती है वो थोड़ी थोड़ी लोग लेकर आते हैं। आप साप्ताहिक बाजारों में देखेंगे तो बहुत सारे ग्रामीण अच्छी सब्जियां लेकर आते हैं, तो इस प्रकार की समस्या बैतूल में तो देखने को नहीं मिली।
1: बैतूल में खाद्य सुरक्षा से जुड़े मुद्दे किस तरह से सामने आते हैं?
0: आपने अभी बार बार सुना होगा कि एनालॉग पनीर है, पनीर लोग खाने से डरने लगे हैं। एनालॉग पनीर ऐसा पनीर होता है जिसमें से जो मिल्क फैट, जिसको हम घी के रूप में जानते हैं, उसको निकाल लिया जाता है।
1: अच्छा,
0: और उसकी जगह कोई सस्ता फैट उसमें मिला दिया जाता है, जैसे पाम ऑयल या सोयाबीन ऑयल या इसी प्रकार का कोई तेल मिलाकर फिर उसको फाड़कर उसका पनीर बनाया जाता है।
1: अच्छा,
0: इसलिए पनीर को एनालॉग पनीर कहते हैं।
1: अच्छा,
0: हमने बैतूल में लगभग 40 नमूने भेजे हैं, ये इसी साल की बात बता रहा हूँ मैं, जनवरी से लेके अब तक हम बैतूल में लगभग 30 से 40 पनीर के सैंपल भेज चुके हैं, जिसमें से 20 से ज्यादा की रिपोर्ट हमको प्राप्त हो गई है, लेकिन किसी में भी एनालॉग पनीर नहीं आया।
1: अच्छा,
0: बैतूल जिले में दूध का उत्पादन काफी ज्यादा है, हमारे मुलताई क्षेत्र में काफी दूध होता है, भैंसदेही क्षेत्र में भी काफी दूध है, तो बैतूल में इस प्रकार की शिकायत नहीं देखने को मिलती।
1: अच्छा, चलिए ये बताते चलिए कि क्या फ्रिज में रखा पका हुआ भोजन लंबे समय तक रखना उचित है?
0: नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है। हर खाद्य पदार्थ की एक सेल्फ लाइफ होती है। साथ में फ्रिज में जब हम भोजन रखते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम बाजार से सब्जियां लाते हैं और उसको उसी जिस रूप में हम लेकर आए उसी रूप में उसको फ्रिज में रख दिया जाता है, तो उन सब्जियों के साथ भी कई बार बैक्टीरिया होते हैं। फ्रिज में रखने से बैक्टीरिया कभी मरता नहीं, वो थोड़ा सा सुस्त हो जाता, ठंडक के कारण वो अपने ग्रोथ को कम कर लेता है। तो अगर हम क्या करते हैं, लंबे समय तक कोई खाद्य पदार्थ फ्रिज में रखते हैं तो उसमें धीरे धीरे बैक्टीरिया का कंटेमिनेशन बढ़ते जाएगा।
1: अच्छा,
0: और ऐसा खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रख कर खाने से हमारी मृत्यु भी हो सकती
1: है। अच्छा,
0: तो नहीं करना चाहिए।
1: तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बैक्टीरिया की बात आपने की, घर पर भोजन को बैक्टीरिया से बचाने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं?
0: घर पर भोजन को बैक्टीरिया से बचाने के लिए सबसे अच्छा उपाय तो ये है कि जब हम भोजन पका रहे हैं उसको पकाने के 1.5 से 2 घंटे के बीच में हमको उसको कंज्यूम कर लेना चाहिए। जब हम किसी भी खाद्य पदार्थ को 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उबालते हैं तो उसमें बैक्टीरिया लगभग खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे ही खत्म हो जाते, इतने स्तर पर आ जाते हैं कि प्रतिरोधक क्षमता जो हमारे शरीर की है वो उनसे लड़ सके। लेकिन अगर हमने उसको लंबे समय तक स्टोर करके रखा तो फिर से धीरे धीरे अपनी ग्रोथ करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि शादियों में खाना खाने से कई लोग बीमार हो जाते हैं, उल्टी दस्त हो जाती है। तो ये ऐसा इसलिए होता है कि भोजन बहुत पहले बन जाता है, उसको काफी समय तक स्टोर करके रखा जाता है, बैक्टीरिया को फिर से ग्रो होने का मौका मिलता है और फूड पॉइजनिंग हो जाती है।
1: अक्सर प्लास्टिक या पन्नी में गर्म खाना पैक करवा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, अब ये कितना सही है?
0: ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बहुत अनुचित है। जब भी आप प्लास्टिक में गर्म कोई भी खाद्य पदार्थ डालते हैं तो प्लास्टिक में कई कैंसर कारक तत्व होते हैं जो आपके खाद्य पदार्थ में मिल जाते हैं। जो कैंसर हो रहा है उसका सबसे मुख्य कारण यही है कि हम गर्म खाद्य पदार्थ को प्लास्टिक की चीजों में डाला जाता है। हम बार बार लोगों को जागरूक करते हैं, बार बार समझाइश देते हैं, और मेरा सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि वो आज से प्लास्टिक की चीजें का इस्तेमाल ना करें, कोई भी गर्म खाद्य पदार्थ का उपयोग ना करें।
1: दूषित भोजन से होने वाली बीमारियों को हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं, अब इनसे बचाव के लिए हम किन बुनियादी बातों का ध्यान रखें?
0: सबसे पहले तो हमको अच्छे से अपने हाथ धोकर भोजन तैयार करना चाहिए। तो कई बार हमको हाथ धोने होते हैं, हाथ तो बहुत अच्छे से धोकर आते हैं और उसको पोछने के लिए जो कपड़ा यूज करते हैं वो कई बार दूषित होता है।
1: बिल्कुल,
0: है ना। तो ये चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए। सारी सब्जियां जो कुछ भी आप बना रहे हैं उसको पहले अच्छे से 1-2 बार पानी से धोएं, पका हुआ भोजन 2-3 घंटों के अंदर इस्तेमाल कर लें, और अगर कुछ बच जाता है तो उसको बहुत अच्छे से ढककर थोड़े समय के लिए आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उसको उपयोग करने से पहले फिर से कम 3 मिनट के लिए आप उसको 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लेकर जाए।
1: अच्छा, गर्म कर ले।
0: गर्म कर ले, उसके बाद ही उसका उपयोग करें तो वो हमारे लिए सुरक्षित हो सके।
1: अच्छा, स्थानीय स्तर पर बाजारों में खाद्य सुरक्षा मानकों को कैसे अपनाया जाता है?
0: हम लगातार प्रयत्न करते हैं, हमारी चलित खाद्य प्रयोगशाला आती है महीने में एक बार, हर माह के

0: संस्था के बीच में बैतूल आती है।
1: अच्छा,
0: तो हम उसके माध्यम से भी मौके पर जांच करते हैं, लोगों को चलित खाद प्रयोगशाला के माध्यम से उनको सिखाया जाता है कि आप किस तरीके से घर पर खाद्य पदार्थों की जांच कर सकते हैं। हम व्यापारियों को भी सिखाते हैं कि वो जो खाद्य पदार्थ बेच रहे हैं वो लोगों के लिए सुरक्षित, और ऐसा नहीं करने पर कहीं हमको उल्लंघन पाया जाता है तो हम संबंधित के विरुद्ध प्रकरण बनाकर माननीय न्यायालय में पेश करते हैं, जहाँ से उनको जुर्माना भी होता है, सजा भी होती है।
1: बैतूल में क्या स्थिति है?
0: बैतूल में अभी तक हमको असुरक्षित खाद्य पदार्थ तो नहीं मिलते हैं, कोई इस प्रकार के खाद्य पदार्थ नहीं बेच रहा है कि जिसको खाने से किसी को मृत्यु हो जाए। हाँ, कुछ अवमानक खाद्य पदार्थ जरूर मिलते हैं जिनके विरुद्ध हम प्रकरण बनाकर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं।
1: अच्छा,
0: इस वर्ष लगभग हमने 12 से अधिक प्रकरण बनाकर प्रस्तुत किए हैं माननीय न्यायालय में।
1: अच्छा संदीप जी, एक बात बताइए कि ईट राइट इंडिया क्या है, ये नागरिकों में सही खान पान की आदतों को कैसे बढ़ावा दे रहा है?
0: ईट राइट इंडिया भारत शासन की एक बहुत अच्छी पहल थी, जिसमें आम जनों को किस प्रकार से सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके, उनमें खाद्य सुरक्षा के प्रति उनकी आदतें बदल सके। ईट राइट इंडिया में एक चैलेंज के रूप में भारत शासन ने इसको चालू किया अलग अलग जिलों के लिए। इसमें कई प्रकार की चीजें उन्होंने रखी कि जैसे क्लीन स्ट्रीट फूड हब बनाना, क्लीन वेजिटेबल मार्केट बनाना। ये बड़े खुशी के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि 2023 में जब ईट राइट इंडिया का द्वितीय चरण था, तब बैतूल राष्ट्रीय स्तर पर ईट राइट इंडिया में नंबर वन था।
1: वाह भाई।
0: और 2024 का जब उसका तीसरा चरण था, तब हम तीसरे नंबर पर रहे राष्ट्रीय स्तर। तो लगातार बैतूल के लिए खाद्य सुरक्षा प्रशासन काफी अच्छा प्रयास कर रहा है आम जनता को बहुत अच्छा खाद्य पदार्थ मिल सके।
1: कुपोषण की समस्या बैतूल में नहीं है?
0: कुपोषण की समस्या बैतूल में कुछ जगह है। कुपोषण का सबसे बड़ा कारण है कि हम जब बच्चों को खाना देते हैं हमारे यहाँ, तो हम उसको एक साथ बहुत सारा खाना खिलाना चाहते, जबकि बच्चों के साथ ऐसा होना चाहिए कि उनको हर एक एक दो दो घंटे में आप कुछ थोड़ा थोड़ा खिलाते रहें, उनको एक्टिविटी करवाते रहें। अगर आप इस तरीके से अपने बच्चों को कुछ देते हैं तो उसका विकास बहुत अच्छा होता है। जैसे आपने सुना होगा कि नकली चावल, प्लास्टिक के चावल के बारे में आपने कई बार सुना होगा, हम सभी पढ़े लिखे हैं, हमको पता है कि प्लास्टिक 300 रुपए किलो है, तो कोई 300 रुपए किलो की चीज बाजार में 60 रुपए में क्यों बेचे?
1: बिल्कुल।
0: कुछ चावल प्लास्टिक जैसे दिखते हैं, जिनको हम फोर्टिफाइड राइस कहते हैं।
1: अच्छा।
0: भारत शासन ने कुपोषण मिटाने के लिए जो चावल है उसको फोर्टिफाइड किया। फोर्टिफाइड कैसे किया? चावल को पहले पीसा, उसमें आयरन फोलिक एसिड और विटामिन मिलाए।
1: अच्छा।
0: फिर उसको चावल की शक्ल दी और चावल के साथ उसको मिक्स करके अभी पीडीएस में आ रहा है। कई जगह मार्केट में भी फोर्टिफाइड राइस उपलब्ध है। आजकल मार्केट में फोर्टिफाइड मिल्क है, फोर्टिफाइड ऑयल है, फोर्टिफाइड नमक है। तो इनको खाने से हमारी जो दैनिक जरूरतें हैं विटामिन, प्रोटीन की और आयरन की, हमारे यहाँ जो कुपोषण एनीमिया का जो मुख्य कारण है, रक्त की जो मात्रा है वो कम है, तो ये इस तरीके के फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ लेने से कम हो सकती है।
1: अच्छा, तो इसलिए फोर्टिफाइड चीजों का इस्तेमाल किया जाने लगा है खाद्य पदार्थों में, ताकि पोषक तत्व आसानी से शरीर तक पहुंचाई जा सके। अगर कहीं भी मिलावटी खाद्य पदार्थों से जुड़े विषय की शिकायत करनी हो तो क्या करें?
0: आप 181 डायल कर सकते हैं, साथ में फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप है भारत शासन का, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप में।
1: अच्छा।
0: अगर आप अपनी शिकायत फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप में दर्ज कराते हैं तो ना आपका नाम आता है ना पता आता है। अगर जब तक आप नहीं चाहेंगे जानकारी, अगर आप नहीं देना चाहेंगे, आप किसी की शिकायत बेनामी करना चाहते हैं, तो शिकायत दर्ज हो जाती है और उसको आपको फॉलो अप भी ऐप पर मिल जाता है।
1: खाद्य सुरक्षा मुद्दे पर हमारे श्रोताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
0: खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर मैं यही सारे श्रोताओं से अपील करना चाहूंगा कि लाइसेंसी विक्रेता से ही खाद्य पदार्थ खरीदें, चटक रंगों से बचें। मिठाई जो भी आप खरीद कर लाते हैं या जो भी दूध या दूध से बने खाद्य पदार्थ खरीद के लाते हैं, उनको 24 घंटे के अंदर इस्तेमाल कर लें। फास्ट फूड खाने से बचें। फास्ट फूड खराब नहीं है, लेकिन अधिक मात्रा में उसमें कोई पोषक तत्व नहीं होते हैं, तो फास्ट फूड का उपयोग कम करें। और हमारी फूड सेफ्टी FSSAI की एक

0: वेबसाइट है fssai.gov.in, उस पे बच्चों के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपीज बनाकर लोगों से साझा की है FSSAI ने।
1: अच्छा,
0: इस प्रकार से रेसिपी बनाकर अपने बच्चों को देंगे तो उनको जो फास्ट फूड की कार्विंग है, उनकी इच्छा है वो भी खत्म होगी और उनको अच्छा सेहतमंद भोजन उपलब्ध हो पाएगा।
1: बिल्कुल, घर की बनी हुई चीजों का अपना महत्व होता है। तो खाद्य सुरक्षा विषय पर आज जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री संदीप पाटिल जी ने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर केंद्रित ये था हमारा इस हफ्ते का प्रोग्राम हमारा बैतूल। अगले हफ्ते किसी और विषय के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। हमारा बैतूल।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारा बैतूल और इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप पाटिल से सुमन चटर्जी की चर्चा। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। समाचार संध्या कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
3: प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। सूचना समाप्त हुई।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में

0: ने इसराइल और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
1: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम करने में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस के कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया था। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
2: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य के बाहर रहते हों।
3: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया। 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतारना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका

0: सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य के बाहर रहते हों।
2: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया, 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतरना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
1: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आज एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2,00,000 रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5,500,000 रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 2,00,000 रूपये और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1,00,000 रूपये देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के अंतर्गत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जल जनित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खरूजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा, देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर में जहाज एंटी मैरीवैक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
2: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योग

0: औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
1: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या fcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
4: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अवशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
3: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
5: हमने जो पौधा लगाया उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उन्हें खाद पानी देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
3: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम

0: आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
1: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM, अब डिजिटल स्ट्रीमिंग। हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग, रोग पर टिकाऊ खेती की ओर एक महत्वपूर्ण पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुनहरी धड़कन।

0: आप सुन रहे थे सुमन कल्याण पर गौ फिल्म थी दिल ही तो है सही लुधियाने के मूल थे रोशन का संगीत था
1: हाय
0: गम का फस

फिल्म का गीत आपने सुना है किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी की बोल थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसी बजा ये गाना।
1: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
1: और बीच में गैप था लिटरली। जो आप कह रही आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाए तो मर जाए। गाते गाते आप इस दीवार से जाती है, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉर्ट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोताओं नमस्कार। आज बात एक ऐसी अदाकारा की जो अपने अंदाज से जितना लुभाती है उससे ज्यादा भाती है उनके फिटनेस की चमक। अपनी मौजूदगी से ही वो कर देती है पॉजिटिविटी की बौछार और दिल ये कह उठता है। जी हाँ, आज बात 3 दशकों से फिल्म दुनिया में अपनी मुस्कान का जादू बिखेरती शिल्पा शेट्टी की।

शिल्पा शेट्टी, जिन्हें दुनिया भर में उनकी फिटनेस से तो पहचान मिली ही, साथ ही वो कई अलग अलग सामाजिक मुद्दों से भी जुड़ी हुई हैं। वो न सिर्फ एक अभिनेत्री हैं, बल्कि फिटनेस गुरु, बिजनेस वुमन, सामाजिक कार्यों की बुलंद आवाज, एक बेहतरीन माँ और पत्नी हैं। शिल्पा जिस अंदाज में घर और बाहर के कामों में संतुलन रखती हैं, वो कई महिलाओं के लिए प्रेरणा हैं। फिटनेस का आलम ये है कि उम्र के 5 दशक पार कर चुकी शिल्पा अपनी उम्र को मात देती नजर आती है।

जून 1975 को कर्नाटक के मैंगलोर में जन्मी अश्विनी शेट्टी, जिन्हें आज हम शिल्पा शेट्टी के नाम से जानते हैं। उनके पिता सुरेंद्र शेट्टी एक बिजनेसमैन थे और माँ सुनंदा शेट्टी अपने समय की मशहूर मॉडल। अब आप ये सोचें कि शिल्पा को यहीं से फिल्म में जाने की प्रेरणा मिली, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुंबई में पढ़ाई कर रही शिल्पा तो अपने पिता के बिजनेस को संभालने की तैयारी में थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।

स्कूल के दिनों में शिल्पा अपनी खूबसूरती को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो एक रफ एंड टफ लड़की मानी जाती। अपने स्कूल की वॉलीबॉल टीम की कैप्टन शिल्पा शेट्टी खेल में खोई रहती। खेल के कारण फिटनेस का सिलसिला बचपन से ही साथ रहा। वही भरतनाट्यम में पारंगत हुई तो वो शुरू से ही डांस में भी अच्छी थी और इसके साथ ही शिल्पा कराटे में ब्लैक बेल्ट है। वैसे ध्यान दें तो ये सारी क्वालिटी एक फिल्मी हीरो की छवि दिखाती है। शायद यही कारण है कि शिल्पा भी अपनी अनुशासन से भरी लाइफ के चलते कई लोगों के लिए हीरो ही है।

शिल्पा खुद को हीरोइन की तरह नहीं देख रही थी, लेकिन 10वीं पास करते ही मॉडलिंग करने लगी थी। वो कई कमर्शियल्स में भी नजर आती हैं और इस तरह उन्हें मिली उनकी पहली फिल्म गाता रहे मेरा दिल, जो कभी भी दर्शकों के सामने आई ही नहीं, बल्कि पहली बार शिल्पा बड़े पर्दे पर नजर आई शाहरुख खान के साथ। 1993 की ये फिल्म थी बाजीगर।

बाजीगर में शिल्पा के काम को सराहा गया, उन्हें काम भी मिलने लगा, लेकिन बाजीगर जैसी सफलता के लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा। इस दौरान आई उनकी बहुचर्चित फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ शिल्पा की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया।

मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म में शिल्पा ने एक डांसर की भूमिका निभाई थी और उनके इस किरदार और उनके इस डांस ने उन्हें एक अलग पहचान दी। शिल्पा के करियर में उन्हें ऐसे कई किरदार और गीत मिले जिनमें उन्हें डांस करते देखा गया और ये गीत हिट भी हुए। कुछ फिल्मों में तो शिल्पा सिर्फ एक गाने के लिए भी आई क्योंकि वो डांस उनके ऊपर ही जचता है। फिर वो शूल का गीत हो या दोस्ताना का अंदाज, शिल्पा को आज भी उनके इन

शिल्पा ने एक्टिंग के गुर सेट पर ही अपने अलग अलग किरदारों को निभाते हुए सीखे, पर एक समय के बाद शिल्पा एक ही तरह के किरदार करते हुए थक चुकी थी। वो कुछ अलग करना चाहती थी। शिल्पा जो चाहती थी वो उन्होंने कर भी दिखाया। फिल्म जानवर में जब शिल्पा ने ममता ओबेरॉय के रूप में एक माँ के अपने बच्चे से बिछड़ने का दुख बयां किया तो दर्शकों की आंखों में आंसू और आलोचकों के मुंह से वाहवाही साथ ही

इसी फिल्म में शिल्पा का मछुआरन का किरदार उनके डायलॉग्स के अंदाज और कॉमिक टाइमिंग से एक अलग रंगत में ढल गया। वैसे शिल्पा इससे पहले ही अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी थी। साल 2000 में आई उनकी फिल्म धड़कन। इस फिल्म में जिस तरह बेबसी, लाचारी, प्यार, जुनून जैसे भावों को शिल्पा ने अपने अभिनय से दर्शकों तक पहुँचाया, लोगों को पर्दे पर शिल्पा नहीं नजर आई तो सिर्फ

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी अपना नाम कमा रही थी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ फिल्मों में उनके काम को सराहा गया। वैसे यहाँ ये बताते चलें कि शिल्पा 6 भाषाओं का ज्ञान रखती हैं। वो हिंदी, अंग्रेजी के अलावा मराठी, गुजराती, तेलुगु और तमिल भी बोल लेती हैं। उनके अभिनय की भाषा दर्शकों के दिलों तक पहुँचती है।

कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनकी बात करना जरूरी है। साल 2004 में आई शिल्पा की वो फिल्म जिसे आज तक देश विदेश में सराहा जाता है, ये फिल्म थी फिर मिलेंगे। शिल्पा ने तमन्ना साहनी के किरदार के जरिए एक HIV पॉजिटिव लड़की के जीवन को लोगों के सामने रखा। ये फिल्म नहीं बल्कि लोगों को एड्स पीड़ितों की परेशानियों और एक समाज के तौर पर हमारे कर्तव्यों को उजागर करने की पहल थी। इस फिल्म से मिली सारी रकम शिल्पा ने HIV पॉजिटिव पीड़ितों के लिए दान दे दी। फिर मिलेंगे को शिल्पा अपनी बेहतरीन फिल्मों में से एक मानती है।

अभिनय लगातार निखर रहा था। वो खुद को एक एक्टर के तौर पर पसंद करने लगी थी। कन्नड़ फिल्म ऑटो शंकर में शिल्पा ने नेगेटिव किरदार यूं निभाया कि उन्हें साउथ के गब्बर सिंह की उपाधि मिल गई। शिल्पा की बेहतरीन एक्टिंग का एक और नजारा मिला। फिल्म थी लाइव इन अ मेट्रो। शिल्पा को शिखा घोष के किरदार में देख न जाने कितनी महिलाओं ने उसमें अपनी कहानी देख ली।

की माँ सुनिंदा द्वारा निर्मित इंडियन चाइनीज फिल्म द डिजायर में भी एक रोमांचक भूमिका निभाई। वैसे शिल्पा शेट्टी टीवी में आने वाली शुरुआती फिल्म सितारों में शामिल हैं। वहीं उन्होंने यूट्यूब ऐप डीवीडी वगैरह की ओर भी पहले कदम बढ़ाया। इसी तरह का एक और जोखिम भरा काम उन्होंने किया जब साल 2007 में वो ब्रिटिश रियलिटी शो बिग ब्रदर में एक कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल हुई। पूरे समय कैमरों के सामने रहना आसान नहीं होता। शिल्पा के सामने कई तरह की परेशानियां भी आईं, लेकिन वो डटी रही। विनम्रता, सहनशीलता और दृढ़ता को उन्होंने अपना साथी बना लिया और इस शो की विनर बनी।

इस गाने में शिल्पा थिरकती नजर आईं और फिल्म के स्टार्स से ज्यादा शिल्पा की चर्चा हुई। शिल्पा अपने फिल्मी पर्दे से निकलकर टीवी की दुनिया में छाने लगी। वो कई रियलिटी शोज का हिस्सा बन रही थी, फिल्मों से दूरी सी बनती जा रही थी और यही वो समय था जब शिल्पा ने लंबे समय से दोस्त रहे राज कुंद्रा से शादी कर ली। शादी के 3 साल बाद साल 2012 में शिल्पा पहली बार माँ बनी। उनके बेटे वियान भी अपनी माँ की तरह ही फिटनेस और मार्शल आर्ट के दीवाने हैं। साल 2020 में शिल्पा सरोगेसी के जरिए दोबारा माँ बनी अपनी बेटी समीशा की। शिल्पा अपने बच्चों को हर त्योहार का आनंद दिलाती है। एक माँ के तौर पर उनका ये अंदाज भी फैंस को पसंद।

लंबे समय तक फिल्मी पर्दे से गायब रहने के बाद शिल्पा ने बतौर निर्माता डिस्क्याओ फिल्म से वापसी की और अभिनेत्री की तरह नजर आई फिल्म निकम्मा और सुखी में। इन फिल्मों में शिल्पा ने कुछ हट के किरदार निभाए। रोहित शेट्टी की OTT सीरीज पुलिस फोर्स में भी शिल्पा के किरदार तारा शेट्टी को सराहना मिली, लेकिन हंगामा 2 में शिल्पा का वही अंदाज देखने मिला जो उनकी फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी में दिखा था। यहाँ भी शिल्पा एक बार फिर अपने उसी सुपरहिट गाने पर झूमती नजर आई।

वहीं शिल्पा को स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया और यहां उन्होंने चैंपियंस ऑफ चेंज का अवार्ड अपने नाम किया। शिल्पा अपने ग्लैमरस अंदाज, कातिलाना मुस्कान और फिटनेस के लिए जानी जाती हैं। इन बातों के लिए भी उन्हें कई बार अलग अलग लिस्ट में टॉप पे रखा।

करना ही होगा कि शिल्पा के एक्टिंग और किरदारों से ज्यादा उनके फिटनेस, ध्यान और योग की बातें चर्चा में रहती हैं। उनका मानना है कि योग और ध्यान के बल पर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। शिल्पा शेट्टी का मूल मंत्र ही फिटनेस है और ये बात उनकी दिनचर्या का भी हिस्सा है। पॉजिटिविटी, परिवार का साथ, योग, ध्यान, संस्कृति से जुड़ाव, जीवन को सरल रखना जैसे कई ऐसे गुण शिल्पा शेट्टी में नजर आते हैं जो उनके फैंस भी अपने जीवन में लाना चाहते हैं। ये बातें उन्हें एक रोल मॉडल तो बनाती ही है, साथ ही लोग खुद को उनसे जुड़ा महसूस करते हैं। शिल्पा इसी तरह सरल और सहज बनी रहें और आने वाले कई दशकों तक लोगों को

के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था तीन दशकों से फिल्म दुनिया में अपनी मुस्कान का जादू बिखेरती शिल्पा शेट्टी पर। शोध आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के फनकार।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। श्रोताओं, रात्रि के ठीक 10 बजे हैं और अब वक्त हो चला है कार्यक्रम आपके मीत ये गीत का। श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और इस फरमाइशी कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं आपके लिखे इन व्हाट्सएप मैसेज और पत्रों को। तो पहला व्हाट्सएप मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से लिखते हैं संतोष खड़से, विनोद खड़से और इनका पूरा परिवार। साथ ही डेयरी आमढाना ब्राह्मणवाड़ा से लिखते हैं संजू गंजाम, मुकेश, विक्रम सिंह कुमरे, आनंद कुमरे और इनका पूरा परिवार। और आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म आपकी कसम से ये गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार ने, बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत राहुल देव बर्मन का। तो पेश है आप सभी की पसंद पर ये नगमा।

आपकी कसम, इस फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना जिसे गाया था किशोर कुमार ने, बोल आनंद बख्शी के थे और संगीत राहुल देव बर्मन का। श्रोताओं, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया 103.1 MHz और आप अपने रेडियो दोस्त संदेश खड़तकर के साथ सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी मीत ये गीत। और कार्यक्रम में अब अगली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं। इस गीत के लिए जो हमें फरमाइश भेजी है वो है ग्राम जीन जिला बैतूल से। लिखते हैं देवेंद्र, पीहू, शुभ, आस्था, योगेश, नीरज, विकास, देविका, सविता और इनके सभी साथी। साथ ही हमें एक व्हाट्सएप मैसेज मिला है जो है मजनू का टीला से। लिखते हैं कमला बलूजा, मधु, सागर बलूजा और सतना मध्य प्रदेश से। लिखते हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक और इनके सभी साथी। साथ ही केरपानी जिला बैतूल से लिखते हैं संतोष पात्री, शकुन, नीलू, अंजलि, नितिक्षा, कृष्णकांत पात्री, पप्पू, सुमित पात्री, जय, जयदीप पात्री, दीपक बघेल, प्रदीप बघेल, लच्छू यादव, अर्जुन शिवनकर और इनके सभी साथी। और एक और व्हाट्सएप मैसेज हमें मिला है जो है रामनगर बैतूल से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं कन्हैया लाल चौकीकर, धनराज धाकड़, योगेश धाकड़, राजू मिश्रा, राजवीर जाकिर, हुसैन वार्ड बैतूल से ये हैं। और आप सभी ने सुनना चाहा है यशुदास का गाया ये गीत फिल्म सावन को।

आने दो से। तो पेश है आप सभी की फरमाइश पर राजकमल का लिखा, राजकमल का संगीतबद्ध किया गया ये गीत, जिसे लिखा है फैक जैमी ने।

सावन को आने दो। इस फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना जिसे गाया था यशुदास ने। फैक जामी के बोल थे और संगीत राजकमल का था। और श्रोताओं, कार्यक्रम आपके मीत ये गीत में अब अगली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं। इसके लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज मिला है। लिखने वाले हैं आसिफ अली खान, मुस्कान आसिफ, सादिक अली खान, सारिक अली खान और इनके सभी साथी। ये लिखते हैं कस्बा अग्रवाल मंडी टटरी बगावत से। और साथी इसी के लिए हमें पत्र लिखा है जो है सारणी जिला बैतूल से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं अमित खातरकर, निहारिका, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारस मणिबाग, पंजाब राव निम्बाड़कर, संदीप पाटिल और इनके सभी साथी। और एक और व्हाट्सएप मैसेज हमें मिला है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेगी से। द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा और इनके सभी साथी। और इसी गीत के लिए हमें एक और फरमाइश हम मिली है जो है लेवई से। लिखते हैं गुलाब दास मानिकपुरी, लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू, रिंगनी से दिनेश वर्मा, भिलाई से मुकेश शर्मा, दतरेगी से भागवत वर्मा और इनके सभी साथी। तो पेश है आप सभी की पसंद पर ये गीत।

फिल्म आलाप से ये गीत अभी आपने सुना, जिसे संगीत से संवारा था जयदेव ने। बोल डॉक्टर हरबरंसी बच्चन के थे और इस गीत को गाया था यशुदास ने। श्रोताओं, कार्यक्रम आपके मीत ये गीत आप सुन रहे हैं आपके रेडियो दोस्त संदेश के साथ। और यदि आप भी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का कोई भी गीत, तो हमें व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7141234722। और कार्यक्रम में अब अगली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं। इस गीत के लिए जो हमें व्हाट्सएप मैसेज मिला है वो है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से। लिखते हैं राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी और इनके सभी साथी। साथ ही लिखते हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ये लिखते हैं। और एक और व्हाट्सएप मैसेज हमें मिला है जो है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून और इनके सभी साथी। और इसी के लिए हमें लिखा है पत्र अमरपुर पौंडरा से। लिखते हैं दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता, सुरुचि, दिशा और इनका पूरा परिवार। साथ ही शिवाजी चौक राजिन छत्तीसगढ़ से लिखते हैं अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। तो पेश है आप सभी की पसंद पर फिल्म आनंद से ये गीत, जिसे गाया है मन्ना डे ने। बोल योगेश के हैं और संगीत सलील चौधरी का।

0: रहा था जिसमें इंटरनेशनल प्राइसेस क्या है, डोमेस्टिक प्राइसेस क्या है, उसमें इन्फ्लेशन कितना है, उसका डिमांड सप्लाई सब कुछ देखा जाता था। आज भी वही फैक्टर जरूर है, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया 2018 में कि एमएसपी जो होगा वो मिनिमम 50% प्रॉफिट बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा। और 2018 से पहले आप देख लीजिए, बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे जो लोग बताते थे कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा गवर्नमेंट फिक्स कर ही नहीं सकता
1: जी,
0: क्योंकि पूरा बोझ सरकार के ऊपर आएगा, सरकार को खरीदना पड़ेगा। लेकिन 2018 में जब लिया, आज देख लीजिए पॉसिबल है, सबके सामने 8 साल हो गया, सरकार हर साल मिनिमम 50% एंश्योर करके एमएसपी डिक्लेयर कर रही है। शुरुआत में जरूर जो मार्केट प्राइस था थोड़ा सा ज्यादा एमएसपी से नीचे बिका, लेकिन आज जो देखिएगा ये खरीफ और रबी सीजन गया है, इसमें जो एमएसपी से नीचे बिक भी रहा है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले तो 30% तक शुरुआत में थी, क्योंकि मार्केट प्राइस को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन आज मार्केट प्राइस भी एडजस्ट हो चुका है, फार्मर को बेटर प्राइस मिला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ कुछ चीजों में एमएसपी नहीं मिल रहा है, ज्यादातर इस साल की बात करूं तो कई सारे फसल में एमएसपी से ऊपर मिला है। और मस्टर्ड का देख लीजिए, अभी मस्टर्ड का सीजन है, एमएसपी से ऊपर है। चना का देख लीजिए, चना ऊपर है। व्हीट का तो सरकार खुद ही 40-45% प्रोक्योरमेंट कर रही है एमएसपी पे, तो मार्केट प्राइस हमेशा ऊपर रहता है। इस साल कुछ कुछ स्टेट में थोड़ा थोड़ा मतलब 50-100 रुपए नीचे बिकने की रिपोर्ट आई थी, लेकिन आज वहां पे भी ऊपर आ गया है प्राइस, मार्केट प्राइस। तो लगभग सारे जो रबी क्रॉप्स है वो एमएसपी से ऊपर है या एमएसपी के बराबर के पोजीशन में है,
1: तो एक फेयर प्राइस मिल रहा है फार्मर्स को।
0: बिल्कुल, बढ़ोतरी हुई है, काफी अच्छी बढ़ोतरी, क्योंकि 50% जब A2 प्लस FL के आधार पे दिए हैं वो एक बहुत बड़ा कदम था उस समय की देखा जाएगा तो जी। और उसके अलावा जो मैं गिनाऊंगा तो इन्होंने फसल बीमा योजना शुरू की है, इन्होंने अभी 2 साल पहले एडिबल ऑयल मिशन लॉन्च किया, पल्सेस मिशन लॉन्च किए, और बहुत सारे चीजें इन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश की है। एक रिफॉर्म जरूर है कि इन्होंने कोशिश किए थे, जो थी 3 फार्म लॉज लेके आए थे कृषि कानून, जो कहीं ना कहीं वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने उस टाइम भी फार्मर को साथ लेते हुए, ऐसा नहीं है कि हम ले आए तो उसको करना है, फार्मर ने प्रोटेस्ट किया, नहीं माने तो फार्मर जबरदस्ती थोप नहीं दिया। जो भी चीजें हैं फार्मर जो चीज यस करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सक्सेस तभी होगा जब आप फार्मर को साथ लेके चलेंगे
1: जी,
0: कोई भी स्कीम हो।
1: मिस्टर विनोद आनंद, कमिंग टू यू, आप जिस कमिटी के मेंबर हैं सरकार की, उसमें एमएसपी पर फैसले होते हैं, उस पर बातचीत होती है, तो आप हमें बता सकते हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो टूल है सरकार के पास, इसका ज्यादा से ज्यादा यूज जो किया गया है, और इन 12 वर्षों में किस तरह से आर्थिक रूप से सशक्त किया गया है किसानों को एमएसपी के माध्यम से, और बाकी भी जो आर्थिक सशक्तिकरण के जो पहलू है उन पर भी हम आपका विचार चाहेंगे।
2: जी देखिए, 3.5 गुना वृद्धि हुई है टोटल एमएसपी वैल्यू में, अर्थात मेरे कहने का अर्थ यह है कि जहां 2004 से 14 तक 7.4 लाख करोड़ रुपए खर्च होते थे, 2014-26 तक वो 26.3 लाख करोड़ रुपए हो गए। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि 10 वर्षों में जो 2014 के पहले जहां 7.4 लाख करोड़ हुए थे, 26.3 यानी कि लगभग 3.5 गुना जो है वो खर्च सरकार ने एमएसपी के ऊपर किया है। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि ये खर्च हुआ कहां, किस तरफ हुआ है। प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हम स्वस्थ नेशन बने, न्यूट्रिएंट हमारा अच्छा हो, एनवायरमेंटल चैलेंजेज हैं उसको हम मीट कर पाए, इसलिए जैसे मैं आप मोटा अनाज जो है जैसे ज्वार है और बाजरा है, आपको जान के आश्चर्य होगा 163% यानी 163% 1530 रुपए जो ज्वार की एमएसपी थी अब वो 4023 रुपए हो गई। ये दुनिया के किसी भी कोने में इस प्रकार से वृद्धि नहीं हुई है। सोयाबीन के ऊपर भी 123%, मतलब आप जिसमें भी देखेंगे अमूनन 5 से 10 फसलें ऐसी है जो खरीफ के मार्केटिंग सीजन में जिसमें 100% से भी ज्यादा खर्च हुआ है, 100% से ज्यादा वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि अपने आप में दर्शाती है कि एमएसपी को लेकर के और किसानों को समर्थन देने में और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की सिर्फ बात नहीं की जा रही, बल्कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहीं कहीं पे 179% बढ़ाया गया जिससे वो उन फसलों के प्रति जा सके। आपको यह जान के आश्चर्य होगा इसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशन

0: स्ट्रक्चर की बात की थी, किसानों के लिए जो सबसे बड़ा इंफ्रा होता है वो उनकी क्रेडिट की व्यवस्था होती है
1: जी।
0: क्रेडिट की व्यवस्था में केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के जो अकाउंट्स थे वो 6.4 करोड़ थे, लगभग 6.5 लाख करोड़ के आसपास किसानों के पास केसीसी अकाउंट है। आज की तारीख में ये 10.2 लाख करोड़ है, यानी कि लगभग 2 गुना हो गया, लगभग 90% इसमें इजाफा हुआ है। तो ये अपने आप में कल्टीवेशन एक्सपेंसेस में, खास करके पोस्ट हार्वेस्ट रिक्वायरमेंट और मार्केटिंग में, इसमें अमूलचूल परिवर्तन हुई है। और जहां तक कृषि की बजट की बात है कि जितना बजट पहले हुआ करता था उतना तो आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी किसानों को डीबीटी कर देते हैं, हमारे पास डीबीटी का बजट ही 70,000 करोड़ रुपए का है। तो कृषि में जो ये इन्वेस्टमेंट हुआ है इससे दर्शाता है कि ये सरकार पूरी की पूरी विलेज लेड और फार्मर सेंट्रिक डेवलपमेंट के लिए ही बनी थी और इसी आधार पे ये सारा कुछ हो रहा है। और उसके साथ साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेज हुए, खास करके कोऑपरेशन मिनिस्ट्री को बनने के बाद और उसमें जो पंचायतों में 2.5 लाख वेयर हाउसेज बनाने की बात, आज तक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में वेयर हाउसिंग में कहीं भी किसी भी समय में भी कभी नहीं हुआ जितना अभी हो रहा है। तो सारे पैक्सों को वेयर हाउस में कन्वर्ट करना और वेयर हाउस वो नीली छत और पीली दीवार वाले नहीं होकर के स्मार्ट वेयर हाउसेस कैसे हो जो ब्लॉकचेन से लिंक्ड हैं, एवरी ग्रेन इज ट्रेसेबल, ऐसा सिस्टम बनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो फूड सिक्योरिटी के जो ऑब्जेक्टिव थे वो तो पूरे के पूरे हो रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है उसको। हाँ। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल रिजिलियंस एग्रीकल्चर के लिए और खास करके जो मार्केट एक्सेस जो पहले नहीं था, एमएसपी को कैसे ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव बनाई जाए, इसके लिए 26 लोगों की कमेटी बनाई गई जिसका मैं भी सदस्य हूं, जो 5 इसमें सचिव महोदय भी इसके सदस्य हैं। तो इतनी बड़ी कमेटी के द्वारा जो कुछ भी रिकमेंडेशन पिछले 4 वर्षों से जा रहा है उसका अक्षरशः पालन किया जा रहा है और आप अमूलचूल परिवर्तन देख रहे हैं कि किस प्रकार से ना सिर्फ केसीसी अकाउंट और प्रोक्यूरमेंट में और एमएसपी में एक गुणोत्तर वृद्धि में, बल्कि जो सबसे ज्यादा सुविधाएं लोगों को मिल रही है वो डीबीटी हो या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, इन सब में एक आमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है। और खास करके हम बड़े सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारा किसान सिर्फ बीज बोना और उगाना नहीं जानता था
1: जी।
0: बल्कि वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर की जो पूरी एक वैल्यू चेन थी उस पूरे मूल्य श्रृंखला में किसान किस प्रकार से कहां खड़ा है और कैसे वो किसान उसका हिस्सेदार हो, प्रत्येक मूल्य श्रृंखला के हर भाग में ऐसी नीति बनाई जा रही है और उसको एग्जीक्यूट भी किया जा रहा है।
1: सो मिस्टर प्रसाद, जैसा कि मिस्टर प्रधान ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया कि जो एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन है उसके हर कदम पर जो सरकार है वो समर्थन प्रोवाइड कर रही है, एक कोलैबोरेटिव वे में जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो हमारे फार्मर्स हैं उनको सशक्त किया जा रहा है। डीबीटी की उन्होंने बात की, ये दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा डीबीटी इनिशिएटिव यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनिशिएटिव माना जा रहा है किसानों के लिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके बारे में बता सकते हैं कि इसका जो शुरुआत होती है जब एक क्रॉप साइकिल की, क्या इसका महत्व है किसानों के लिए और जिस लेवल पर इसका जो यूज हो रहा है, 9.44 करोड़ फैमिलीज से ज्यादा बेनिफिट करे हैं इसमें और 4.2 लाख करोड़ रुपीस से ज्यादा डिसबर्स किए जा चुके हैं 22 इंस्टॉलमेंट्स में, इसका जमीनी तौर पर जो किसान है उनके लिए क्या महत्व है?
2: सुन जी, हम सब जानते हैं कि भारत में किसान जब भी परेशान रहे हैं और उनकी दिक्कतें बड़ी हैं, तो एक चीज जो सरकार के अलग अलग स्टडीज ने बताया है कि खर्चा सिर्फ किसान और कृषि के काम के लिए नहीं, उनके घर के खर्चे के लिए भी काफी कुछ उनके समस्याएं आती है। तो वो पारंपरिक तरीके है, गैर पारंपरिक तरीके से वो क्रेडिट पाते थे यानी कि पैसा लेते थे ब्याज पे, तो काफी परेशानी ज्यादा बढ़ जाती थी। तो छोटा सा इसके लिए एक मदद के लिए कि जैसे आपने साल में 6,000 मिलते हैं, 2,000 के डीबीटी यानी कि सीधा पैसा का हस्तांतरण बैंक अकाउंट में होता है, तो इसमें सबसे बड़ा है कि छोटे खर्चे के लिए किसान को इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, उसके खाते में पैसे हैं, अपने रोजमर्रा जिंदगी में छोटी मोटी जो उनके खर्चे हैं वो निकल जाते हैं। तो एक उनको तसल्ली होती है, हर आदमी को मतलब एक सुरक्षा महसूस होता है कि भाई हाँ मेरे खाते में पैसे हैं, कभी जरूरत हो तो मैं उसको। और जैसे आंकड़े आपने बताए हैं, जिस तरह से 2026 तक जब भी बात हुई है तो 9.44 करोड़ किसान परिवार को मिला और इसमें 25% से ज्यादा महिलाओं को सीधा साथ इसका बेनिफिट मिल रहा है, तो इसका तो ये एक जिसे कहते हैं छोटा कदम है लेकिन महत्वपूर्ण कदम है।
1: और इसी कड़ी में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है या जो किसान क्रेडिट कार्ड्स है, ये सभी जो आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक कड़ी है पूरे जो एक साइकिल होती है एग्रीकल्चरल साइकिल। अगर आपको कहीं भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो पहले ये था कि आपको मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता था जो बहुत ही डिफिकल्ट टर्म्स पे आपको हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको देते थे और ये सब जानते हैं कि किस तरह से वो उसके चंगुल में फंस

0: थे, तो ये जो सारी सुविधाएं प्राप्त हुई, आपको लगता है ये एक तरह से फ्रीडम प्राप्त हुई है फार्मर्स को और उनके सशक्तिकरण के लिए, चाहे वो फसल बीमा योजना हो जिसमें इवन वाइल्ड एनिमल्स अगर आपकी क्रॉप को खराब करते हैं तो उसके लिए भी आपको मुआवजा मिलता है? ये सभी बहुत छोटे दिखने वाले लेकिन अगर हम इनको मिलाकर देखें तो बहुत बड़े कदम है आर्थिक सशक्तिकरण के लिए।
1: जी सुनिए, सबसे बड़ी बात है ये दिखाता है सरकार कितना संवेदनशील है कि अलग अलग जो समस्याएं किसानों को आती हैं उस पर ध्यान उनका गया ही नहीं, उसके निवारण के लिए अलग अलग काम किए हैं। जैसे आपने कहा पशुओं का, खासकर जो जंगली जानवर है वो खेत में घुस के खड़ी फसल को खराब कर देते, तो अब उसमें किसान की तो कोई गलती नहीं है, बाहर लगाया भी होगा लेकिन रात भर निगरानी भी रखे होंगे, लेकिन कभी ना कभी कुछ इस तरह के आकस्मिक कोई घटना घटती है या जैसे हम जानते हैं कि बेमौसम बरसात आए या बेमौसम आंधी तूफान आए तो उनको नुकसान होता है। अभी हाल फिलहाल दिल्ली के आसपास जो बारिश हुई है उसमें कई खड़ी फसल में नुकसान हुआ है, तो ऐसे में किसान बीमा योजना जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये काफी सारा व्यापक है और इसमें सरकार की जो इसके पीछे सोच है वन नेशन वन क्रॉप वन प्रीमियम, यानी कि एक ही जैसा आप बीमा कंपनी को अपना प्रीमियम राशि जमा करें और उसके बदले में आकस्मिक कोई घटना घटती है आपका जो बीमा कंपनी है उनकी तरफ से आपको मुआवजा दिया जाएगा। तो आंकड़े बताते हैं कि 2016-17 से तो करीब करीब 93 करोड़ या 92.5 करोड़ कृषक इस तरह के और करीब 2 लाख करोड़ रुपए तक लोगों ने दिसंबर 25 तक इसमें फायदा उठाया है। सोनू जी
0: जी बिल्कुल, एंड मिस्टर आनंद कमिंग टू यू, यू नो द काइंड ऑफ एक्सपेंशन 2.5 times इंक्रीज इन द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड्स व्हिच हैज टेकन प्लेस, इज इट नॉट ओनली द क्वांटिटी द क्वालिटी आल्सो, द फिशरीज द एलाइड सेक्टर्स दे हैव आल्सो बीन इंक्लूडेड एंड इनफैक्ट फॉर द एलाइड सेक्टर्स दिस गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड अ स्पेशल मिनिस्ट्री एंड देयर इज अ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, सो यू थिंक दैट एनहांसिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स दीज एलाइड सेक्टर्स आर प्लेइंग अ वेरी मेजर रोल?
2: देखिए जो फूड प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ और फूड सिक्योरिटी, इसके बीच में जो कुछ भी समस्याएं होती थी और उसका कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री से बहुत लेना देना था, तो सबसे पहले सरकार ने अपनी मंशा क्लियर कर दी कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे। मैं फिर से बताता हूँ ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है। ये शब्द स्वयं बहुत कुछ बयां करती है सरकार की नीयत के बारे में, नीतियां तो बाद में बनती है और एग्जीक्यूट होती है, तो सरकार की नीति बहुत क्लियर है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे और सारे कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स उसके तहत लेके आएंगे जो किसानों के भले के लिए हो। तो सबसे पहले कि कोऑपरेटिव का डेटाबेस आज तक हमारे पास नहीं था कि कितने पैक्स हैं, कहाँ हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें कौन अच्छा काम कर रहे हैं, किनको बहुत कुछ अच्छा करना है, किनको हम बहुत लिक्विडेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहला काम तो ये किया गया कि ये अपेक्स टू पैक्स का अप्रोच कोऑपरेशन में नहीं रहा, ये
0: तो पैक्स जो कह रहे हैं प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज
2: जी बिल्कुल, तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से ऊपर हम लेके जा रहे हैं अपेक्स तक, जो एनसीडीसी और नाफेड और जो आप बड़े बड़े जो कोऑपरेटिव मल्टीस्टेट हैं उसकी तरफ। 25 बिजनेस एक्टिविटीज पैक्स अपने आप में कैसे रिसोर्सेज जनरेट कर पाए, जो इनपुट का बिजनेस है उसमें कैसे भागीदारी ले पाए, इसके लिए उनको 25 बिजनेस एक्टिविटीज से उनको जोड़ा गया, यहाँ तक कि आपको पेट्रोल पंप, एलपीजी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप, जन औषधि केंद्र, इस प्रकार से जो प्रॉफिटेबल बिजनेसेज हैं वो भी कोऑपरेटिव को पैक्स को दिए गए। 79,630 यानी कि लगभग 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइज किया गया 31 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में। 61,886 पैक्स को ऑनबोर्ड किया गया ईआरपी के माध्यम से, यानी कि हर समय शाम के 5 बजे तक एक क्लिक में अब ये कंप्यूटराइज हो गई, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि आप एक क्लिक में वहां पे क्या एक्टिविटी हो रही है उसकी मॉनिटरिंग यहाँ की जा सकती है। वो रजिस्टर पे एंट्री सारी बंद हो चुकी है जिसमें बहुत बड़ी समस्याएं थी, तो कहां 1947 से हम बातचीत तो कर रहे थे लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में उसमें जो ट्रांसपेरेंसी लानी थी उससे हम कहीं दूर, बहुत दूर बैठे थे। तो एक तो ये सबसे पहला सुधार किया गया। आपके माध्यम से मैं कुछ और बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पहले ये कहा गया था कि पीडीएस में बहुत सारे लीकेजेस होते हैं, सभी लोग 15% और 100% की बातचीत कहते हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया था। हमारे यहाँ है वन नेशन वन राशन कार्ड और भी डिजिटाइज्ड है, यानी कि अगर मैं बिहार का किसान हूँ और दिल्ली में किसी कारणवश रह रहा हूँ तो मैं दिल्ली के फेयर प्राइस से अपना अनाज जो भी एलोकेट है मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। तो ऐसा डेटाबेस करना, ऐसा बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना, ये अपने आप में एक बड़ा मील का पत्थर है। अब मैं आता हूँ आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्ट्रेंथन किए गए वो फार्म गेट से मार्केट तक कैसे जाए, यानी कि किसान के खेत से बाजार

0: तक वो जो जाने वाली बात है उसमें किसान का भाग कैसे हो, उसके बीच में जो व्यापारी वर्ग है सिर्फ वही फायदा ना ले जाए बल्कि व्यापारियों के साथ हमारे किसान कैसे काम कर सके और मूल्य श्रृंखला में कैसे अपनी बात कह पाए। तो जैसे कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ईनाम की बात मैंने आपसे पहले बताई थी, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जो पहले नहीं थी, आज की तारीख में 1.8 लाख ऐसे केंद्र बनाए गए जहाँ पे इनपुट और वन स्टॉप सेंटर है इनपुट और एडवाइजरी सर्विसेज के। तो एक्सटेंशन के लिए एक नया एक पूरा ओपन मार्केट सिस्टम बन गया जहाँ से ये सारी चीजें हो रही है। मेगा फास्ट फूड पार्क स्कीम जहाँ किताबों में थी सिर्फ गाइडलाइंस में थी, आज सैकड़ों मेगा फूड पार्क बनाए जा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को फूड प्रोसेसिंग के साथ जोड़ करके और इस पूरे मूल्य श्रृंखला में किस प्रकार से किसानों के पास आ पाए, लगभग 11,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च किए गए और वो फार्मर्स के माध्यम से खर्च किए गए, ना कि बीच में जो लोग होते हैं उनके माध्यम से खर्च किया जाए।
1: तो आप
0: कुछ ऐसे चैलेंजिंग प्लेसेज हैं जहाँ पे जैसे मान के चलिए 100 जिले थे, तो उन 100 जिलों को आइडेंटिफाई

0: करोड़ रुपए उसमें खर्च किए गए और वो फार्मर्स के माध्यम से खर्च किए गए, ना कि बीच में जो लोग होते हैं उनके माध्यम से खर्च किया जाए।
1: तो आप
0: कुछ ऐसे चैलेंजिंग प्लेसेज हैं जहां पे, जैसे मान के चलिए 100 जिले थे, तो उन 100 जिलों को आइडेंटिफाई किया गया कि यहां पे क्या कारण है। भाई 75 साल हो गए जहां एक जिले में प्रोडक्शन एक्स हो रहा है, इन जिलों में एक्स बटा 8 हो रहा है, आखिर क्या कारण है। उनको लेकर के और उन जिलों के लिए अलग से स्कीमें बनाई गई, उसके ऊपर सरकार की अलग ओवरसाइट है, एडिशनल सीक्रेट रैंक ऑफिसर उसकी मंथली देखरेख करते हैं और उन अमुक जिलों में कैसे प्रोडक्शन बढ़े इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, इसके ऊपर एक पूरी नायाब नीति बनाई जा रही है। तो मुझे लगता है सारा जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जा रहा है और इस प्रकार से जो प्रधानमंत्री का विशेष ध्यान है एलाइड एक्टिविटीज पे, खास करके फिशरीज में, और जो डेयरी में आज आप देख रहे हैं लद्दाख में भी एनडीडीबी ने जाकर के वहां का भी एक डेयरी शुरू किया है, जिस प्रकार से दिल्ली में मदर डेयरी है तो लद्दाख की मदर डेयरी कैसे शुरू हो, या जम्मू कश्मीर में डेयरी से फार्मर्स कैसे जुड़े, या वहां के जो लोकल जो हमारा ह्यूमन रेजिलियंस है उसको कैसे हम इंटीग्रेट कर पाए एग्रीकल्चर के साथ में, तो एक बड़ा बदलाव लाइव स्टॉक डेयरी के सेक्टर में हो रहा है। चौथी बात मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि जो बायो इथेनॉल में और जो सीबीजी में सरकार का ध्यान है कंप्रेस बायोगैस में, और कंप्रेस बायोगैस का बड़ा बाजार जो पूरी दुनिया में निकल रहा था एविएशन टर्बाइन फ्यूल, यानी कि सस्टेनेबल एविएशन टर्बाइन फ्यूल के माध्यम से, उसमें गांव की हिस्सेदारी कैसे बढ़े, उसके लिए सैकड़ों सीबीजी प्लांट लगाए जा रहे हैं, कंप्रेस बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं, और तेल की कंपनियां उसको खरीद करके और एविएशन टर्बाइन फ्यूल में मिला करके और उसको वो बेच रही है, तो ये इसका सीधा सीधा डिविडेंड जो है वो फार्मर्स के पास जा रहा है। तो इन सारी स्कीमों में फार्मर सेंट्रिसिटी की बात यह है कि अगर मान के चलिए कोई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव व्यापार करती है तो उसका प्राइस तो किसानों को मिलता है क्योंकि रॉ मटेरियल उनसे वो प्रोक्योर कर रहे हैं, इसके साथ साथ में जो फायदा होता है उसका डिविडेंड किसानों के पास कैसे जाए, ये फार्मर सेंट्रिक एग्रीकल्चर सिस्टम जो डाइवर्सिफाइड है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, वो बनाई जा रही है। तो ये अपने आप में एक मील का पत्थर है, पिछले 12 वर्षों में हम जहां तक चल के आ पाए, हमें ऐसा लगता है कि 2047 तक एग्रीकल्चर के वैल्यू चेन में फार्मर्स की जो भागीदारी बढ़ेगी और उससे एक असमानता कमेगी, ऐसा प्रधानमंत्री जी का ध्यान है और पूरा देश उस ओर अग्रसर है।
1: मिस्टर मिश्रा, आपके पास आते हैं, आप बताएं हमें, एक जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन 2021 में बनाई गई, अलग से एक सहकारिता मंत्रालय बनाया गया, और जिस तरह से कोऑपरेशन जो मॉडल है उसका सक्सेस कृषि क्षेत्र में देखा गया है, अगर हम दूध जो सेक्टर है उसकी बात करें, और ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई है 10,000, ये कैसे कोऑपरेटिव मॉडल को यूज करके ये कैसे फार्मर्स को लाभान्वित करती है, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं इस मंत्रालय के के बारे में कृषि क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो बनाई गई हैं, ये खासकर छोटे और सीमांत किसान हैं, उनके लिए इनका क्या महत्व है?
2: ये जो एफपीओ का कंसेप्ट लेके आए, पहले भी एफपीओ बनते थे लेकिन सरकार ने जब अनाउंस किया कि 10,000 हम एफपीओ बनाएंगे विद इन ए डेडलाइन, वो डेडलाइन से पहले ही बन गए 10,000। उन्होंने बनवाए क्या, उन्होंने फैसिलिटेट किया, उसमें उन्होंने स्कीम लेके आए कि हम आपको 50% इक्विटी पार्टिसिपेशन देंगे। कोई भी कंपनी वो जो एफपीओ है उसमें या तो आप कोऑपरेटिव बना सकते हैं या एक प्राइवेट कंपनी बना के आप एफपीओ का जो स्ट्रक्चर है उसके तहत आप काम कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए किसी भी कंपनी में जब 50% इक्विटी कोई देता है उसका वोटिंग राइट होता है, वो डिसीजन लेता है, वहाँ पे उस क्षमता में रहता है, डिसीजन वही डिसाइड करे। लेकिन इस मॉडल में सरकार ने बोला कि हम इक्विटी जरूर देंगे आपको 50% ग्रांट के तहत, लेकिन डिसीजन आपकी होगी, कोई हमारा इंटरफियरेंस नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक जो बोलते हैं कि स्वयं शासित कर देना, कि आप खुद ही गवर्न करो एफपीओ को और गाइड करते रहना कि भाई आप ऐसे करोगे, उसमें हेल्प करना। हर बृहस्पतिवार को एक वेबिनार होती है जिसमें सारे एफपीओ जोड़ते हैं और दो दो कंपनीज को बुलाते हैं गवर्नमेंट, और ये कई चीज जो लाइमलाइट में नहीं आती है उसमें, लेकिन एफपीओ का जरूर फायदा हुआ है, कई एफपीओ करोड़पति बन गए हैं, और गवर्नमेंट का प्लान है कि 2030 तक शायद 10,000 में से 5,000 को करोड़पति में ले आएंगे।
1: तो किस तरह के निर्णय लेते हैं मिलकर जो एफपीओ होते हैं, किस किस क्षेत्र में?
2: इन्होंने पूरी फ्रीडम दे रखी है एफपीओ को, जो चाहे वो कर सकते हैं एज ए बिजनेस एंटिटी, उनको बिजनेस बढ़ाना है। और कृषि के आसपास जितने भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने इनपुट बेच रहा है तो वो डायरेक्टली कंपनी से सोर्स करते हैं।

0: अपने फार्मर के अलावा जो आसपास के लोग हैं उनको देते हैं सब्सिडाइज नहीं, चीपर रेट पे, क्योंकि वो डायरेक्टली सोर्स करते हैं। गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करता है, किसी एफपीओ को मान लीजिए पता नहीं है कहाँ से सोर्स करना है, क्या सोर्स करना है, उसमें गवर्नमेंट उनको मदद करता है, बताता है कि इस कंपनी से आप जुड़ सकते हैं। तो ऐसे जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है उससे कई एफपीओ को बहुत फायदा हुआ है।
1: तो इनपुट्स उनकी कॉस्ट कम होती है और उनको जो प्राइसेस है वो बेटर मिलती है और उनका जो है प्रॉफिट बढ़ता है।
0: बिल्कुल, जो बीच में जितने भी मिडिल मैन इन्वॉल्व होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। तो वो जो भी कंपनी जो उनको कॉस्ट में देती है, सप्लाई करती है, वो थोड़ा सा मुनाफा करके प्रॉफिट रख के वो बेचते हैं। और अपने फार्मर को कई एफपीओ तो ऐसे हैं जो कॉस्ट जितने लाते हैं उतने में अपने मेंबर को दे देते हैं, तो जो कहीं नहीं मिलेगा उस प्राइस पे आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम हो जाता है किसी फार्मर का तो उसका प्रॉफिट भी तो बढ़ता है जब मार्केट प्राइस दूसरे फार्मर के कंपैरिजन में।
1: सो दैट कलेक्टिव पावर इज देयर। एंड मिस्टर मिश्रा, वी वुड आल्सो लाइक योर व्यूज एंड इफ यू कुड टेल अस दैट हाउ गवर्नमेंट इज रियली एम्पावरिंग द फार्मर्स बाय प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ फर्टिलाइजर्स। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट, द फर्टिलाइजर्स। सो दिस एस्पेक्ट हाउ इट हैज बीन टेकन केयर ऑफ एट द पॉलिसी लेवल इन दीज 12 इयर्स, कैन यू टेल अस अबाउट दिस एम्पावरमेंट एस्पेक्ट फॉर फार्मर्स?
0: सी, fertilizer in India is considered the cheapest in the world when you talk about urea particularly. Why? Because government has not raised the price for past 2 decades or so, and urea currently is available at 267 rupees per bag of 45 kg. Last international price at which India bought urea was $954 per ton. So roughly, if you take $1,000, it comes to around 95,000 per ton. 95,000 means 9500 per quintal. It is a big amount. So when farmers are sold at 267 rupees, just imagine how much money the government is subsidizing. The result is farmers are getting the product fertilizer at the very cheap rate, so that their cost of production is also limited within certain range, and it is also reflected in the end price which they are selling their produce. If you raise the input cost, the product will also be costlier for the consumers. So it is based on this theory that you subsidize the input to some extent, so that the end product also becomes cheaper for the consumers, and our inflation is also remain under control.
1: Mr. Anand, Mr. Prasad, Mr. Mishra, thank you so much for this insightful discussion on the various aspects of how the farmers and the agriculture sector has been empowered in the last 12 years.
2: Thank you.
3: Thank you very much.
0: Thank you very much.
4: In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government, initiatives for empowering farmers and achievements in agriculture sector. Participants were Vinod Anand, member of the High Power Committee on MSP and Agricultural Reforms, Government of India, K.V. Prasad and Prabhudat Mishra, senior journalists. Moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the New Services Division of Akashwani.
5: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल, किसानों के सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र के उत्थान के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत सरकार में एमएसपी और कृषि सुधारों पर उच्च स्तरीय समिति के सदस्य विनोद आनंद और वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद व प्रभु दत्त मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
6: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सरकार के 12 वर्ष, विज्ञान सशक्तिकरण, आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित विशेष श्रृंखला पर ये कार्यक्रम। रात्रि के 11 बजने को है। हिंदी में समाचार अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम स्वनिधि जैसी प्रमुख योजनाओं का व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी पात्र लाभार्थियों तक इनका लाभ पहुंच सके। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
1: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
0: उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है।
2: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई थी। ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में आज हुए एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम संयंत्र में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में रेडियो जॉकी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक की आयोजना की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए जन जागरूकता अभियान को मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुधार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। कल की प्रसारण सभा में सुबह 5:55 पर हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। अब आज्ञा दीजिए, शुभ रात्रि, जय हिंद।